मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

भक्तों की प्रार्थना सुनकर माँ संकटों का नाश कर देती हैं। सच्चे मन की पुकार माँ को अवश्य स्वीकार होती है। सुनते हैं लखबीर सिंह के स्वर में ये भजन।

तन की सुंदरता से अधिक मन की स्वच्छता और निर्मलता का महत्व होता है। आइए इन्हीं विचारों को सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में।

वंदना, अभी आप भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रकाश किरण, स्वर है दामोदर शास्त्री का।

दुनिया में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अपने सत्कर्मों व सद्गुणों के कारण प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने दुष्कर्मों के कारण निंदा व अपयश के भागी होते हैं। सद्गुणों व सत्पुरुषों का सभी जगह आदर होता है और दुर्गुणों व दुर्जनों की सब जगह निंदा। सत्पुरुषों के संसर्ग में आकर जहां व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, वहां दुर्जनों के संसर्ग से अशांति। इसीलिए सत्पुरुषों की संगति का महत्व शास्त्रों में जगह जगह गाया गया है। महान नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है, संसार कटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितंच सुस्वादु संगति सुजने जने। इस संसार रूपी वृक्ष में सभी फल कड़वे होते हैं, किंतु दो ही फल उसमें ऐसे लगते हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक तो मीठी वाणी और दूसरा सत्पुरुषों की संगति। वास्तव में सत्पुरुष चलते फिरते सज्ञान की पाठशाला है। उनके संसर्ग में जो भी आता है उसमें सद्गुणों का विकास स्वतः प्रारंभ हो जाता है। जैनाचार्य रविशयन ने पद्म पुराण में सत्संगति का महात्म्य इस प्रकार बताया है, साधो संगमनालोके न किंचित दुर्लभम भवेत बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधिर्येनाधिगम्यते। अर्थात सत्पुरुषों की संगति से दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो सके, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को भी सत्पुरुषों की संगति से सज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिसके आधार पर वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है।

0: महामनीषी भर्तृहरि ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से सत्संगति के लाभों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, सत्य बोलने का गुण विकसित होता है, पाप से दूर रहने का भाव दृढ़ होता है, कीर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और मन की प्रसन्नता सदा बनी रहती है। भला बताओ ऐसा कौन सा लाभ बचा है जो सत्संगति से प्राप्त नहीं होता। दुर्जनों की संगति के बारे में महान नीतिज्ञ भर्तृहरि ने कहा, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषित सर्पः किमसौ न भयंकरः। सर्प के मस्तक पर बहुमूल्य मणि भी होती है तब भी लोग उससे भय खाते हैं और उसके समीप नहीं जाते। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विद्वान होते हुए भी यदि दुर्जन हो तो उसकी संगति से लोग दूर रहते हैं और दूर रहना भी चाहिए। महाभारत में महात्मा विदुर जी ने दुर्जन संगति से होने वाली हानि के विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। असंत्यागात पापकृताम अपापान तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावात शुष्केणार्द्रम दह्यते मिश्र भावात तस्मात पापै सह संधिम न कुर्यात। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीला ईंधन भी जल जाता है, वैसे ही पापी दुर्जनों की संगति से महात्मा सज्जनों को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए दुर्जनों के साथ मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं। दुर्जनों और सज्जनों की पहचान हम कैसे करें, इस संबंध में चाणक्य ने एक सूत्र बताया है, मनस्यन्यद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। अर्थात दुर्जन की पहचान यह है कि मन में कुछ होता है और वाणी में और कर्म में कुछ और। सज्जन व महात्मा पुरुषों के मन वाणी कर्म में एकता होती है, वे जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं।
1: अभी प्रकाश किरण का प्रसारण किया जा रहा था, स्वर था दामोदर शास्त्री का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर है अनूप जलोटा का, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ

मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का गायन सुन रहे थे। स्वर था अनूप जलोटा का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौक गोट।
1: फसल होय से बांगा, झोर का जे बांगा, तरवा का जे बांगा, और फिर सुखलो ने आमट का जे बांगा, असन गुण बीती साग फसल चो दखा रखा बोले खूब जरूरी होय से। बांगा जे चो वैज्ञानिक नाम होय से मिलोनन जीना, और फिर ये सोलनेसी कुल चो बूटा होय से। बांगा ने खरीफ मौसम बल्लो ने बरसा दाए कई प्रकार चो कीड़ी और रोग मन दखा पड़े से, जसन की खंद और पाना के काना कर तो बीती कीड़ी मन, पाना मोड़ तो बीती कीड़ी मन, एफिड थ्रीट्स आरु हड्डा बिटल असन कीड़ी मन होय सोत। आर फिर असने रोग मन ने आर्द गलन रोग, फोमोटिसस ब्लाइट रोग, असन रोग चो लक्षण दखा पड़े से। बांगा चो कीड़ी आरु हुनके थेबा तो वाट आरु हुनके गुजा तो वाट मन के मसांगे से, जसन की ये खंद आरु पाना के काना करतो कीड़ी मन चो जो लार्वा रह से, आ नहाले हुनके सुंडी बोले बोलुआत हुन मन हल्का लाल गुलाबी रंग चो दखा दे से, आरु ये मन खंद आरु पाना मन के काना करुन भाती बांगा बूटा मन के नुकसान अमराय सोत। ये चोले खंद मन सुकलो असन आरु घसरतो असन दखा दे से, आरु ये कीड़ी मन फसल के 60% तक नुकसान अमराव सकुआत। आरु ये कीड़ी मन के थेबा तो काजे, मरला तो काजे, कीड़ी धरलो खंद आरु फर मन के बेड़ा ने गोटकी जगह जुहाउन भाती खोदरा बनाउन, फिर हुता बूटा मन के डारुन भाती माटी पाटुन देतो रहे। नहाले साइपर मेथ्रीन नावचो दवाई चो 0.01% चो घोर बनाउन भाती फूल धरतो बेरा नहाले हुंचो 15 दिन पाछे छिड़काव करुन देतो रहे। असनी गोटो कीड़ी होय से पाना मोड़क कीड़ी बोलवाते के, आरु ये कीड़ी चो जो लार्वा रह से हुन पाना के खड़े खड़े काय के मोड़ून दे से, और ये कीड़ी के थेबा तो काजे डिक्लोरोबोस नाचो कीटनाशक दवाई खच्चो 0.1% चो दवाई के छिड़काव करतो रहे। और असने गोटो कीड़ी होय से एपिलेबना बीटल बोलवाते के, ये लाल रंग चो ढीप का असन दखा देतो बत्ती कीड़ी आए, ये चो सुंडी जो नाय हरदया रंग चो और रोआदार असन रह से जोन पाना मन के खाते जाए से। ये कीड़ी के मरला तो काजे कार्बोरिल नाचो दवाई के 20-25 किलो 2.5 एकड़ हिसाब ने भुरकाव करुन देतो रहे। असने होय से बांगा चो रोग मन बले, आरु ये बांगा चो रोग आरु हुनके थेबा तो काजे हमके कहीं कहीं वार्ड बले करतो रहे। असने जसन की गोटक रोग होय से आर्द गलन रोग, ये रोग पिथियस फाइटोपथोरा नाचो फफून ले होय से, आरु ए चो कारण बूटा चो खाले चो खंद गलुक मुरियाए से। आर फिर ए बीमारी के थेबा तो काजे भूई के केप्टान फाइटोलान नहाले ब्रासिकल नाचो ओखचो 0.1% चो घोर ले भूई के उपचार करतो रहे। आरु बीज लगा तो पहिल कापर नाचो फफून नासी जोन कीड़ी रह से दवाई रह से हुंचो 2 ग्राम 1 किलो बीज हिसाब ले उपचार करतो रहे। आरु खरीफ मौसम बोलो ने बरसा दाए, खरीफ मौसम ने कियारी मन के भूई ले 10-15 सेंटीमीटर ढेंग बनातो रहे, आर फिर जल निकास चो व्यवस्था बोले अच्छा संगातो रहे। असनी गोटक बीमारी होय से बांगा ने धरतो बीती फोमोटिसर ब्लाइट बोलवाते की, आरु ये बीमारी चो जोन कारण ने बूटा मन चो सफाई बाटे धमसया लाम असन दाग धप्पा महा दखा दे से। ये बीमारी के थे बातो काजे बीज के लगातो पहिल हुनके 50°C तक गरम पानी ने 1/2 घंटा काजे डोबुन संगाउन देतो रहे। असन दखा रखा करुन भाती बांगा चो कमाने के आमी बढ़ाउक सकू आरु हुंचो लाभ बले धरुक सक।
0: अभी आप कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। प्रस्तुत है हुलहुली। इसमें हम सुनवा रहे हैं भीमसन देव पाड़।

0: हुलहुली में हम सुनवा रहे हैं पाड़, कलाकार हैं रामवती और साथी।
1: चो लोगो के वे संग को बुले सो।

চানা বলে দেশত মনে যে ইয়া বসা বলুন বলে সত মনে যে সপা।

राजे बोले करनी झवा फुरला चौरी तुझो काजे बोले करनी झवा फुरला चूड़ी किकटी बकटी रानी पयाड़ी आने दे सराप सरानी रानी लुगा घेनु नाने दे।

가라니 란두나 카세제 선저 줄라 줄어세라니 룹저 덜나 덜어세

हुलहुली में अभी आप पाड़ सुन रहे थे। कलाकार थी रामवती और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज की सभाओं में प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 6:30 से इंग्लैंड के ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आंखों देखा हाल आप मीडियम वेव पर सुन सकेंगे मैच समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

6:30 पर FM बैंड और मोबाइल ऐप पर आप गोंडी समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। आज प्रातः 7:05 से होगा, 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा लोक मंजरी, इसमें आप सुन सकेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। प्रातः 9:00 बालवाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म गीत, कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, इसमें हम सुनवाएंगे फिल्म आन मिलो सजना के कुछ गीत।

प्रातः 10 बजे गुलशन में सुनिएगा नए तराने। 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 11:30 पर गुड़दुम में आप सुन सकेंगे हल्बी लोकगीत। दिन में 12 बजे रुसरुसा में आप सुन सकेंगे लोक गाथा आंधा राजा, गायिका होंगी सुबरी बाई। दिन में 12:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 1:05 पर कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण सुना जा सकेगा।

1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम कला आओ कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा में 6:05 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:10 पर होगी युवा मित्रों की युववाणी। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:00 FM बैंड और मोबाइल ऐप पर आप बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन सकेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा आमचो गांव। 8:00 बालीपुर में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, कलाकार होंगे गेलमणि देवी और साथी। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम होगा पिलामन काजे गोट हल्बी बोली में। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा गीत पुरानी फिल्मों से।

कार्यक्रम भी FM बैंड और मोबाइल ऐप पर आप सुन सकेंगे और रात्रि 10 बजे दोनों में सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honourable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
2: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
3: हम सब
2: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी
4: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें योग, रहें निरोग। इसी विचार के साथ प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन। श्रोताओं, योग अभ्यास सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य, शारीरिक बल और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप इस विषय पर कायम हैं? क्या आप निरंतर योग करते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को योग और ध्यान के प्रथम गुरु माना जाता है? इस दिन एक खास बात और भी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। चलिए बहरहाल बातें करते हैं योग के विषय में। अक्सर कहा जाता है कि हमारा शरीर एक कारखाने की तरह है और सारे अंग उसके अलग अलग विभागीय कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान और हमारी आदतों से हमारी ये कर्मचारी नाराज हो जाएं और अगर आपस में ये बातें करें, हमसे शिकायत करें, तो किस तरह इनकी बातें होंगी? हमारे शरीर के विभिन्न अंग यानी लीवर, किडनी, फेफड़े इत्यादि क्या कहेंगे? शायद ऐसा कुछ होगा कि यारों, हमारे मालिक ने तेल मसालेदार भोजन किया, कभी भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं पिया, कभी भी प्रातः शुद्ध वायु में योग अभ्यास और व्यायाम नहीं किया और अब उल्टे हमें ही कड़वी दवाइयां खिला रहा है। शायद इस तरह की शिकायतें हमारे शरीर अवश्य करता होगा। योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास आज की अनियमित दिनचर्या के लिए एक औषधि का कार्य करता है। शरीर इससे न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि आपका मस्तिष्क भी तरोताजा रहता है। श्रोताओं, योग का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसी विषय को ध्यान में रखकर लगभग सभी देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया। तो चलिए, आप सभी भी उठें, जागें, मेहनत करें और तब तक न रुकें जब तक स्वस्थ ना हो जाएं। आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं।

0: चांदनी चौक टू चाइना, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
5: पवन के ठंडे झोंके के साथ
4: हिलोरे लेगी
5: आकाश की वाणी।

0: आकाशवाणी।
1: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
6: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं वार्ता हमारा बस्तर। वार्ताकार हैं आशा रानी पटनायक।
7: विशाल बस्तर मंडल जो महाकांतर, चक्रकोट, दंडकारण्य क्षेत्र जैसे अनेक नामों से संज्ञापित है, यह अपने रत्न गर्भा पृथ्वी के भीतर अनेकानेक संपदाओं से विभूषित है। बस्तर अनेक ऐतिहासिक खंड में चमकता सूर्य सा है, क्योंकि यह 3 प्रांत ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच एक द्वीप सा बन गया है। ऐतिहासिक, पौराणिक, रहस्यमय भारत के आदिवासी क्षेत्रों के अंतिम छोर में से एक प्रदूषण मुक्त एवं शांत बस्तर में एक नए विश्व की खोज की है। बस्तर एक ऐसी खोज है जो आपकी इंद्रियों को जागृत कर देगी, मस्तिष्क को प्रेरित करेगी और आपकी आत्मा व शरीर को तरोताजा कर देगी। यहाँ एक अद्भुत अनुभव है। बस्तर प्राचीनता एवं आधुनिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का सुंदर समन्वय है। यह एक ऐसी अनुभूत पहेली है जिसे हल करना शेष है। बस्तर स्वयं इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुकुट पर चमकते मणि के समान बस्तर की सीमाएं ओडिशा, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश की सीमाओं को छूती हैं। बस्तर का लगभग 60% हिस्सा हरे भरे जंगलों, पश्चिमोत्तर भाग ऐतिहासिक अबूझमाड़ी, आदिवासी पहाड़ियों व दक्षिणी हिस्सा बैलाडीला की खनिज खदानों से घिरा हुआ है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान का फैला हुआ घना एवं भयानक जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्राचीन एवं रहस्यमयी गुफाएं, सुंदर जलप्रपात एवं नदियां, जैव वैज्ञानिक रोमांचक खेलों के शौकीन व कलाकारों के लिए स्वर्ग समान है। माँ दंतेश्वरी बस्तर के राजघराने की देवी है। कहा जाता है कि देवी इन पहाड़ी जंगलों में राजा की रक्षा करते हुए उनका मार्गदर्शन करती है। बस्तर दशहरा का सबसे बड़ा भव्य व सुंदर प्रमुख त्यौहार है, मगर इसका श्रीराम अथवा उनके अयोध्या लौटने से कोई संबंध नहीं है। यह पर्व दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है। बस्तर पिकनिक, चित्रकारी, रोमांचकारी यात्राओं के लिए सबसे आकर्षित एवं उपयुक्त स्थान है। बस्तर की जनसंख्या में लगभग 3/4 लोग जनजातियों के हैं, जिनमें से हर एक की अपनी मौलिक संस्कृति, मान्यताएं, बोलियां, रीति रिवाज एवं खान पान की आदतें हैं। बस्तर की जनजातियों में गोंड जैसे मारिया, मुड़िया, अबुजमाड़ी और धुरवा शामिल हैं। साथ ही अन्य समूह जो कि गोंड नहीं हैं, जैसे भत्रा और हलवा शामिल हैं। बस्तर जिले में कहीं भी घूम रहे हों, हाट स्थानीय बाजार की ओर जाते हुए जनजातीय लोगों को उनकी वेशभूषा में पूर्ण रूप से सजे धजे देख सकते हैं। भारी बोझ संभाले, कमर में बच्चा और सिर पर टोकना लिए एक कतार में समान कदम ताल से चलती औरतें, बूढ़ी महिलाओं के गोदने और चमकीले कपड़ों में सजी युवा आदिवासी बालाएं, यह दृश्य मन मोह लेता है। गोंड जाति की सबसे महत्वपूर्ण उप जनजाति अबुजमाड़ी शर्मिले व संकोची होते हैं। एकांतवास करते हुए वे घने जंगलों में शिकार करते हैं और अन्य वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। नृत्य महोत्सव के दौरान सींगों से सजे मुकुट पहनने के लिए जाने जाने वाली जनजाति माढ़िया सामाजिक होती है। उत्तरी बस्तर की खेती किसानी करने वाली मुरिया जनजाति सबसे अधिक व्यवस्थित होती है और घोटुल के कारण जानी जाती है। यह युवा एवं कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए एक विशेष स्थान होता है, जहां वे अपने बड़ों से दूर आपस में मिल सकते हैं। यहां उनकी सामाजिक शिक्षा की खास व्यवस्था होती है, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत आदि भी शामिल होते हैं। यह प्रथा मुरिया समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बस्तर के त्यौहार आदिवासियों की प्राचीन एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। बदलती हुई रीतियों में होने वाली प्राचीनतम उत्सवों के आदिवासी नृत्य एवं संगीत से प्रकृति निखर उठती है। दंतेश्वरी तात्कालीन राजा के राज्य की देवी है। आदिवासी अपने देवी देवताओं और पवित्र आत्माओं की पूजा करते हैं, जिनका संबंध प्रकृति के असंख्य रूपों से होता है। भारत के अधिकांश भागों में दशहरा श्री राम की अयोध्या वापसी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह बस्तर में मुख्य रूप से माँ दंतेश्वरी देवी पर केंद्रित होता है। यह त्यौहार पूर्ण रूप से स्थानीय धार्मिक मान्यताओं एवं आदिवासी प्रथाओं का मिश्रण है। अनेक पारंपरिक जनजाति, स्थानीय एवं हिंदू धर्म के देवी देवता दंतेश्वरी देवी के मंदिर में एकत्रित होते हैं, जो कि पर्व का केंद्र बिंदु होता है। दंतेवाड़ा का फागुन मड़ई, सुकमा का रामाराम मेला और नारायणपुर मंडई बस्तर की कुछ रंगारंग गतिविधियों में से एक है। बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं साधारण एवं जटिल कलाकृतियों को चिन्हित करती हैं। इन कलाकृतियों को आकार देने वाले कारीगर प्राकृतिक संसार से प्रेरित होते हैं। बस्तर की सुंदरता कला की प्राचीनता एवं आधुनिकता के सम्मिश्रण में निहित है। कला पारखियों में बस्तर कला की लोकप्रियता बढ़ने के कारण इनमें हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव है। कोंडागांव, नारायणपुर एवं जगदलपुर टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे घंटियों से सजे हुए हाथी, सजावटी बर्तन एवं मेज पर रखी जाने वाली आकर्षक वस्तुएं। जगदलपुर कोसा सिल्क बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल मेटल एवं रॉ आयरन की कारीगरी कोंडागांव और जगदलपुर की विशेषता है। लकड़ी एवं बांस का सर्वश्रेष्ठ कार्य नारायणपुर और जगदलपुर में

0: देखा जा सकता है। बस्तर की सबसे पुरानी हस्तकलाओं में स्मृति चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नक्काशीदार पत्थर भी शामिल हैं। इन लोक कलाओं में मुख्य रूप से आयरन के लैंप व अन्य वस्तुएं, देवी देवताओं के चित्रों से अलंकृत लकड़ी व धातु के कंघे, टेराकोटा से बने जानवर व आकृतियां, बेल मेटल की वस्तुएं एवं हाथकरघा वस्त्र लोकप्रिय हैं। जगदलपुर की स्थानीय जेल में कैदियों द्वारा हाथ से बनाई गई कृतियां उपलब्ध हैं। बस्तर के वास्तविक स्थानीय स्वरूप को समझने के लिए साप्ताहिक बाजार, जो कि पूरे बस्तर में लगभग 300 हैं, यहाँ पर आदिवासी जंगल में एकत्रित की गई वस्तुओं के स्थान पर नमक, तंबाकू, कपड़े एवं अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं। बस्तर कलाकृतियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने भारत के 5 सितारा होटलों की लाबियों एवं बड़े शहरों के उच्च वर्गीय शोरूम में स्थान प्राप्त है। बस्तर के कुछ प्रतिभावान कारीगरों को फेस्टिवल ऑफ इंडिया सीरीज जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। धान के विस्तृत खेत, पगडंडीहीन वनों के मनोरम दृश्य, पशु पक्षियों के अद्भुत प्रजातियां, नदियां, झरने एवं प्राचीन गुफाएं बस्तर को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाती हैं और साथ ही छुट्टियां मनाने के लिए इस ग्रह के सबसे अधिक जैविक विविधता वाले पर्यावरण यात्रा का विकल्प प्रस्तुत करती हैं। पर्यटनों के लिए यह दुर्गम दुर्लभ भूमि एक सुखद आश्चर्य है। उच्च प्रजाति के वृक्षों जैसे सागौन, साल, सिरसा, गोंद, आंवला व महुआ जैसे अन्य अनेक भागों में विभक्त होती हैं। यह वन संरक्षित जंगली भैंसे, शेर, तेंदुआ, मगरमच्छ, उल्लू और भांति भांति के पक्षियों जैसे लुप्त प्राय बस्तरिया, पहाड़ी मैना आदि के लिए घर है। किसी भी जैव विज्ञानी के लिए कांगेर वैली नेशनल पार्क एक शोध का विषय है। इन दुर्गम वनों के अनोखे पर्यावरण के संरक्षण के लिए संरक्षित स्थान का प्रस्ताव है। यह घाटी सुंदर एवं मनमोहक दृश्यों, आकर्षक जलप्रपातों, नदियों आदि एवं प्राचीन गुफाओं के लिए जानी जाती हैं। उनके लिए जो भय प्रकृति का आनंद लेते हैं और रोमांचक गतिविधियों से आह्लादित होते हैं, पदयात्रा, पर्वतारोहण, अदम्य गुफाओं की खोज जैसे अनेक आकर्षण आकर्षित करते हैं। कुटुम्बसर, कैलाश एवं दंडक गुफाओं में चूने के स्तंभ आकर्षण का केंद्र है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरते तीरथगढ़ जलप्रपात का पारदर्शी बहाव पिकनिक मनाने वालों का ध्यान आकर्षित करता है। जलप्रपात में डुबकी लगाने के बाद कुछ श्रद्धालु निकटतम शिव मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु जाते हैं। इंद्रावती नदी से निर्मित चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा की याद दिलाता है। देवी देवताओं पर आस्था रखने वालों को जहां दंतेवाड़ा स्थित माई दंतेश्वरी का देवालय सुकून और शांति प्रदान करता है, वहीं प्राचीन और पुरातत्व के प्रेमियों के लिए बारसूर का गणेश मंदिर, मामा भांजा मंदिर, नारायणपुर का विष्णु मंदिर, भद्रकाली का मंदिर तथा पुजारी कांकेर के धर्मराज का मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। पुरातत्व के शोधकर्ताओं के लिए जगदलपुर के निकट कालीपुर, एर्राकोट आदि ग्रामों में अटूट पुरातात्विक संपदा बिना उत्खनन के पड़ी है। ग्राम भोंगापाल और गढ़घनौरा के प्राचीन टीलों की भांति अनेक अज्ञात टीले अन्वेषणकर्ताओं के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। प्रतिपल जीवन नौ कोणों में विकसित होता जाए, प्रतिपल जीवन नौ कोणों में विकसित होता जाए, धन्य हे ईश्वर पावन स्वर्ग धरा पर लाए।
1: हमारा बस्तर, इसमें आप सुन रहे थे आदिम जनजातियों का गढ़ बस्तर। इस विषय पर आशा रानी पटनायक से वार्ता। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ, तो रो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।

0: से तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी समाचार बुलेटिन।
1: जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं शांति नाग। पहल आजिचो मूर खबर, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने आज देश भर संगे छत्तीसगढ़ ने बले सामूहिक योग अभ्यास चो कार्यक्रम आयोजित करते हो। केंद्र सरकार चना, मूसरी और सरसों चो न्यूनतम समर्थन मूल्य ने खरीदी चो समय 15 दिन बढ़ा ली। ज्ञान भारतम मिशन भित्री छत्तीसगढ़ ने 11,808 दुर्लभ पांडुलिपि मन चो दस्तावेजीकरण करतर होली। छत्तीसगढ़ चो सफाई ग्राम पंचायत मन ने 24 जून के करतर हो दे ग्राम सभा मन चो आयोजन। अदाय खबर सरसराले। पूरा संसार ने आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनातर होए से। देश भर संगे छत्तीसगढ़ ने बले योग दिवस ने सामूहिक योगाभ्यास चो कार्यक्रम मन होए से। राज्यपाल रमन डेका रायपुर और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरगुजा ने आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम ने शामिल होए सोत होता है। दूसर जिला मुख्यालय मन ने होतो बीती कार्यक्रम मन ने राज्य सरकार चो मंत्री सांसद और विधायक शामिल हो सोत। ए बरक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चो थीम स्वस्थ आयु के लिए योग संगालोरा से। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बल्ला से कि प्रदेश ने सुघर छत्तीसगढ़ अभियान मूर करतर हो से। ए अभियान भीतरे सरकार चो जन कल्याणकारी योजना मन चो लाभ हरेक पात्र हितग्राही तक अमरातोर लक्ष्य संगालोरा से। मुख्यमंत्री सांगला की नियत ने लनार योजना चो सफलता के पूरे नेते रायपुर बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग चो 23 जिला मन ने 31 योजना मन चो पूरा करतो सुनिश्चित करतर हो दी। हुनमन बल्ला की तकनीकी बीती रियल टाइम मॉनिटरिंग विभाग मन चो तालमेल और जवाबदेही व्यवस्था ले लोग मन के नगद सेवा मन देतर हो दी। मुख्यमंत्री बल्ला की हर एक परिवार तक शासन चो योजना मन अमरले ची विकसित छत्तीसगढ़ चो सपना साकार हो दी। केंद्र सरकार रबी विपणन बरक 2026-27 काजे चना, मूसरी और सरसों चो न्यूनतम समर्थन मूल्य ने खरीदी चो समया ने 15 दिन चो बाढ़ती कर ली से। ए निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भित्रे धरलोरा से। कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रदेश चो किसान मन ले बाढ़लो समय चो लाभ धरतोर और लगे चो सरकारी समिति ने जाऊन आपलो उपजन के बिकतो गुहार करला से। हुनमन बल्ला की एचोले किसान हाट बाजार चो चेक उतर ले बाचुक सक दे और हुनमन के फसल चो नगद कीमत मिरे दे। केंद्र सरकार वित्त बरक 2026-27 ने गांव-गांव मन ने 26,000 किलोमीटर ले आगर सड़क बनाए दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय चो हिसाब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हुंचे असन ग्रामीण संपर्क पहल मन भीतरे गांव बाटे सड़क बनातो काजे 18,900 करोड़ रुपया ले आगर राशि आवंटित कर ली से। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय चो ज्ञान भारतम मिशन भीतरे छत्तीसगढ़ ने 15 मार्च ले 15 जून तक चलालो बीती विशेष सर्वेक्षण ने 11,808 दुर्लभ पांडुलिपि मन चो दस्तावेजीकरण करलो रासे। संस्कृति विभाग चो सहायता ले करलो ए सर्वेक्षण ने खुदे रुंडालो मंदिर मन और आश्रम मन ले ताड़ पत्र और कागज ने लिखलो पांडुलिपि मन मिरली से। अभियान भीतरे महासमुंद जिला ने सबले आगर 3,498 पांडुलिपि मन मिरली से होता है। रायपुर जिला ने 1,770 और बस्तर जिला ने 1,610 पांडुलिपि मन मिरली से। ज्ञान भारतम मिशन चो राज्य नोडल अधिकारी प्रभात सिंह सांगला की ए पांडुलिपि मन ने धर्म आयुर्वेद दर्शन और इतिहास ले जुड़लो महत्वपूर्ण जानकारी मन आसे। ए मन ने उड़िया ब्रज अवधि और देवनागिरी लिपि चो उपयोग दखुक मिरली से जोन छत्तीसगढ़ चो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दखाए से। प्रदेश ने कुपोषण चो समस्या के दूर करतो काजे महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सुपोषण वृक्ष मुनगा रोपतो के जन आंदोलन चो रूप देतो गुहार करला से। श्रीमती राजवाड़े सपा जन प्रतिनिधि मन ले बरसादाय पानी कटा कटा ग्राम पंचायत परिसर मन ने सार्वजनिक ठान मन ने और हितग्राही मन चो घर मन ने मुनगा बुटा रोपतो गुहार करला से। छत्तीसगढ़ चो सपा ग्राम पंचायत मन ने 24 जून के ग्राम सभा मन लगातार होए दे। ग्राम सभा मन ने आवास प्लस 2.0 चो स्थायी प्रतीक्षा सूची संगे कैक विषय मन ने गोट बात करतर होए दे। इच संगे ची विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी चो बारे ने बोले लोग मन के जानकारी देतर हो दी। ग्राम सभा ने गेलो बसका मन ने पारित प्रस्ताव मंचो समीक्षा, पंचायत मंचो आय व्यय चो अनुमोदन, कैक बाढ़ती काम मंचो बाढ़ती और पंचायत संपत्ति मंचो प्रबंधन जसन विषय मन ने गोठ बात हो दी। छत्तीसगढ़ ने नुआ शैक्षणिक सत्र संगे उच्च शिक्षा व्यवस्था ने सुधार चो तैयारी करतर हो सी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा सपाय महाविद्यालय मन के शैक्षणिक कैलेंडर चो कढ़ाई ले पालन करतो निर्देश दिलासी। हनुमान बल्ला की परीक्षा मन और परिणाम बल्लो ने रिजल्ट समय ने जारी करतर हो दे। पड़तो लेका लेकी मंच समस्या मंचो तुरते समाधान काजे कॉलेज मन ने हेल्प डेस्क बनातर हो दे। श्री वर्मा पड़तो पिला मन ले समय ने भर्ती होतोर और नुआ शिक्षा नीति चो हिसाब ने पढ़ाई मूर करतो अपील करला से। पीएम सेतु योजना भीतरे प्रदेश चो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मन आईटीआई के आधुनिक और उद्योग हिसाब ने बनातर हो से। योजना भीतरे पड़तो पिला मन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसा नुआ तकनीक मंचो प्रशिक्षण देतर हो दे। संगे ची जूना पुराना मशीन मंचो ठान ने आधुनिक मशीन डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम चो सुविधा मन देतर हो दे। मुख्य सचिव विकासशील चो अध्यक्षता ने मंत्रालय ने आयोजित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति चो बसका ने पीएम सेतु योजना चो बाढ़ती चो समीक्षा करला। मुख्य सचिव विकासशील प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना चो समीक्षा करते प्रदेश चो सपाय शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल मन ने कक्षा पहली ले आठवीं तक चो पिला मन के तपलो खाना और पूरक पोषण रोजे देतो निर्देश दिला। मुख्य सचिव शहरी और आलीपाली चो स्कूल मन ने सेंट्रल किचन ले खाना देतो व्यवस्था बाढ़ती करतो काजे बल्ला से। हनुमान बल्ला की महिला स्व सहायता समूह मन के साग भाजी और मसाला उपजन काजे बढ़ावा देतो हो। नई दिल्ली चो द्वारका ने रलो बीती छत्तीसगढ़ चो ट्राइबल यूथ हॉस्टल चो 13 जन अभ्यर्थी मन यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 ने सफलता पाउन प्रदेश चो मान बढ़ाला से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सफल अभ्यर्थी मन के बधाई देते एक जुआन शक्ति चो सफलता सांगला से। हनुमान बल्ला की ट्राइबल यूथ हॉस्टल ने सीट मन चो संख्या 50 ले बढ़ाऊ 200 करतोर नगद परिणाम पूरे इली से। ये हॉस्टल ने पढ़तो पिला मन के निःशुल्क आवास, खाना, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षा मन काजे मार्गदर्शन देतर हो से। जुआन मन और सादा लोग मन के नशा चो दुष्प्रभाव ले जागरूक करतो काजे छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग बाटले 17 जून ले प्रदेश ने नशा मुक्ति भारत सप्ताह चो आयोजन करतर हो से। समाज कल्याण विभाग चो प्रमुख सचिव सहला निगार सांगला की ए बरक नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम ने हफ्ता भर कई गतिविधि मंचो आयोजन करतर हो दे। 26 जून तक चलते बीती नशा मुक्त भारत सप्ताह दाए स्कूल मन, कॉलेज मन और दूसर शैक्षणिक संस्थान मन ने सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली मन और संवाद कार्यक्रम मन करतर हो से। समाज कल्याण विभाग चो प्रमुख सचिव सहला निगार चो अध्यक्षता ने गेलो 18 जून के मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान काजे बनालो राज्य स्तरीय समिति चो बसका होली। बसका ने 5 जिला मन सुकमा, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, बेमेतरा और कोरबा ने नुआ नशा मुक्ति केंद्र खोलतोर निर्णय धरलो रासे। केंद्रीय गृह मंत्रालय बस्तर रेंज चो पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी के राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने IG नियुक्त करला से। सुंदर राज पी गेलो लमसम 8 बरक ले बस्तर ने पदस्थ रला से। हुनमन कैक नक्सल विरोधी अभियान मंचो सफल नेतृत्व करला से। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ने महत्वपूर्ण बाढ़ती होली से। गेलो 17 जून के रावघाट रेल खंड ने नियंत्रित गति और सीमित भार संगे तकनीकी ट्रायल मूर करतर होली से। ये दाए 58 रेक चो उपयोग करतोर होली। 95 किलोमीटर जसन लाम ए परियोजना के बनातो काम भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे चो सहायता ले करतोर हो से। अधिकारी मंचो हिसाब ने ट्रायल पाछे सुरक्षा स्वीकृति मिरलो ने यात्री ट्रेन सेवा मूर हो दी। ये चोले बस्तर क्षेत्र ने आना जाना रोजगार और बाढ़ती चो मौका बाड़े दे। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप गेलो 16 जून के नारायणपुर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चो नुआ शाखा भवन चो लोकार्पण करला। समारोह के संबोधित करते श्री कश्यप बल्ला की नुआ शाखा मूर होलो ने किसान मन और सादा लोग मन के खूबे दूरिया बाटे जाओ निपड़े दे। ये समय ने श्री कश्यप बैंक परिसर चो नोडल कार्यक्रम भवन बसका हाल ने शेड और शौचालय बनातोर घोषणा करला। कार्यक्रम ने 15 जन किसान मन के क्रेडिट कार्ड बोले बांटला। खेत बचाओ अभियान भित्रे नारायणपुर ने गेलो 16 जून के प्राकृतिक खेती ने कार्यशाला और कृषि प्रदर्शनी चो आयोजन करतोर होली। कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर और कृषि विभाग चो संयुक्त तत्वाधान ने आयोजित एक कार्यशाला ने किसान, कृषि वैज्ञानिक, जन प्रतिनिधि और गौरिया शामिल होला। ये मौका ने वन मंत्री केदार कश्यप, किसान मन के हरदी चो उन्नत किस्म चो प्रकंद, मंडिया बीज और प्राकृतिक खेती ने उपयोग होतो बीती सामान मन बांटला। संगे ची प्रगतिशील किसान मन के सम्मानित बले करला। श्री कश्यप किसान मन ले प्राकृतिक और जैविक खेती के अपना तो गुहार बले करला। सुकमा नगर पालिका परिषद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चो पहल चरण भित्रे पैसा मिलो पाछे बले घर बना तो काम मूर नी करतोर और आधा छाड़ तो बिता हितग्राही मंचो खिलाफ कार्रवाई करतो चेतावनी दिली से। नगर पालिका बाटले असन हितग्राही मन के तय समय सीमा भित्रे बना तो काम पूरा करतोर निर्देश दिलो रासे। नगर पालिका साफ स्पष्ट कर ली से कि सरकारी पैसा चो दुरुपयोग चो मामला मन के गंभीरता ले धरतोर हो दे। असन प्रकरण मन ने संबंधित हितग्राही मंचो खिलाफ धोखाधड़ी चो मामला दर्ज करून FIR करातोर हो दे। समाज चो मुख्य धारा ने आपस इलो हुन पुनर्वासित माओवादी जे मंचो प्रतिबंधित संगठन मन बाटले जबरदस्ती नसबंदी करालो रहे हुन मन काजे जगदलपुर चो महारानी अस्पताल ने निःशुल्क रिवर्स नसबंदी शिविर आयोजित करतोर होइसी। ये शिविर मंचो उद्देश्य पुनर्वासित माओवादी मन के माय बाप बनतो मौका देतो राय। ये शिविर बस्तर जिला प्रशासन, बस्तर पुलिस और यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चो संयुक्त कोशिश ले आयोजित करतोर होइसी। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चो अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुकरेजा सांगला की ए अभियान चो पहल चरण ने 33 और दूसरे चरण ने 40 झान माओवादी मंचो सफल सर्जरी कर लो रासे। दंतेवाड़ा जिला जेल ने 16 जून के ब्रेन हेल्थ क्लिनिक और मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग शिविर चो आयोजन करतोर होली। शिविर दाए 76 झान बंदी मंचो मानसिक स्वास्थ्य बीती जाँच और स्क्रीनिंग करतोर होली। जांच दाए 20 ले अधिक बंदी मन ने नींद बीती समस्या मिरली। असने कोटक बंदी ने गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या चो चिनाबाना मिरली। एके छाड़ून 53 जान बंदी मन के सामान्य स्वास्थ्य जांच और जरूरी डॉक्टर सलाह देतर होली। बस्तर वन मंडल बाटले भानपुरी वन परिक्षेत्र चो बनिया गांव और पिपलावंड चो संवेदनशील क्षेत्र ने गेलो 18 जून के वन मंडल स्तरीय मॉक ड्रिल चो आयोजन करतर होली। ए दाए वन विभाग चो टीम बनिया गांव और पिपलावंड चो रान मन ने गश्त अभियान चलाउन मॉक ड्रिल करते वन अपराध मन चो मामला मन के दर्ज कर ली। टीम गौरिया मन और ट्रैक्टर चलातो ड्राइवर मन के रान मन के नुकसान करतोर और अवैध प्रतिक्रमण चो गंभीर कानूनी और व्यवहारिक दुष्परिणाम मन चो बारे ने समझाला। संगे ची हुन मन के रान मन के बचातो काजे जागरूक बले करला बलो ने चेताला। ए मॉक ड्रिल चो उद्देश्य अडनाप समिया ने रान अमला चो तुरते कार्रवाई क्षमता के परक्तोर और हुनमन चो काम बुता के और अधिक प्रभावी बनातोर रहे। बस्तर जिला चो बिजली पारा विधि निस्तार क्षेत्र और मरघट ठान ने गेलो 16 जून के सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति और हुतारतो जुआन मन श्रमदान करला। ए चो भित्रे क्षेत्र ने झपके हो तो बीती लाटा बुटा के साफ करतोर होली। लाटा बुटा घास गुचालो पाछे जोन हुई खाली होली से हुन बाटे बाउंस, फनस, लाल सिंदूर और दूसर कैक उपयोगी और फर बीती बुटा मन के रोपतर हो दी। ए पहले ए बाटे हरित आवरण चो बाढ़ती करतो संगे ची जैव विविधता चो संरक्षण दखा रखा बचातो वाट हो दे। सरासरी दाए मूर खबर एक हार फेर। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने आज देश भर संगे छत्तीसगढ़ ने बले सामूहिक योगाभ्यास चो कार्यक्रम आयोजित करतो हो से। केंद्र सरकार चना, मुसरी और सरसून चो न्यूनतम समर्थन मूल्य ने खरीदी चो समय 15 दिन बढ़ा ली। ज्ञान भारतम मिशन भित्रे छत्तीसगढ़ ने 11,808 दुर्लभ पांडुलिपि मंचो दस्तावेजीकरण करतोर होली। छत्तीसगढ़ चो सपा ग्राम पंचायत मन ने 24 जून के करतोर हो दे ग्राम सभा मंचो आयोजन। एचए संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ए अंक इथाय सरे से जुहार।

0: अभी हल्बी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जा रहा था। कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, पेश है आज की मधुरिमा। साथ भीग जाएं बारिश में ये शायद अब मुमकिन नहीं, साथ भीग जाएं बारिश में ये शायद अब मुमकिन नहीं, चलो भीगते हैं यादों की बारिश में।

कभी बरसती है बेपनाह सी, कभी रहती है गुमसुम सी, न जाने क्यों ये बारिश की बूंदें मुझे लगती है तुम सी।

ये दिल लगी अफसाना प्यार का और गुरु फिल्म के गीतों के साथ सजी हुई ये थी मधुरिमा। और इसी के साथ आज नमस्कार जगदलपुर का सफ़र यहीं तक।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व कर रही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए

0: उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
7: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मोज जलडमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप हल्बी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थे त्रिनाथ सिंह क्षत्री और साथी। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कलाकार हैं योगिता सिन्हा और साथी।

लोकमंजरी में अभी आप विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी।

0: बाल बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को भूमिका दीदी का ढेर सारा प्यार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले करते हैं भारत माँ का वंदन। तो बच्चों मेरे साथ मिलकर कहिए जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों आज जानते हैं आज क्या है?
2: योग दिवस।
0: हाँ बच्चों, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसकी शुरुआत भारत से हुई थी। इस प्राचीन भारतीय परंपरा को वैश्विक स्तर पर मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो बच्चों आप सब जानते हैं योग करने के क्या क्या फायदे हैं?
3: स्वस्थ रहना, फिट रहना।
0: हाँ बच्चों, योग सिर्फ शरीर को ही नहीं मन और आत्मा को भी शुद्ध रखता है, उसे स्वस्थ रखता है। कई बार बच्चे पढ़ाई में मानसिक तनाव ले लेते हैं, है ना, और कामकाजी जो रहते हैं उन्हें भी तनाव होता है। तो वैसे में अगर आप योग करेंगे, नियमित रूप से प्रातः उठें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो ये आपको मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करता है और स्वस्थता प्रदान करता है। आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, है ना। आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। आप नियमित उठिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका और शीतली प्राणायाम, ऐसे कई प्राणायाम हैं जिसे करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपकी जो फेफड़े हैं, आते हैं और सांस लेने के लिए जो समस्याएं हैं वो सारी दूर होंगी। अनुलोम विलोम करने के तरीके आप सब बच्चों को पता है। अनुलोम विलोम कैसे करना है आपको ये बताती हूँ। दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लें और दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ें। इसके क्या फायदे हैं? इससे मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, नसों की शुद्धि और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, चिंता, डिप्रेशन और तनाव को राहत दिलाता है। कपालभाति करने से बच्चों, इसमें पेट अंदर की ओर झटके से खींचते हैं और बाहरी सांस छोड़ते हैं। इसको करने से फायदे क्या है? इससे पेट की चर्बी कम होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर से विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वजन नियंत्रित रहता है। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं बच्चों जिसको करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। आप सभी बच्चों के लिए जो आवश्यक है वो है ताड़ासन। इसको करने की विधि है, इसे जमीन पर या योग मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों पैर और एड़िये को आपस में जोड़ लें, हाथों की स्थिति अपने दोनों हाथों को जांघों के बगल में सीधा रखें, उंगलियों को सीधा और तनाव मुक्त रखें, संतुलन बनाए रखें और अपने शरीर का पूरा भाग दोनों पैर पर समान रूप से डालें, हथेलियां ऊपर करें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। अब हथेलियों को बाहर की तरफ पलटें और सिर के ऊपर ले जाएं, खिंचाव लाएं, सांस अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और साथ ही अपनी एड़ियों को भी जमीन से ऊपर उठाएं, पैरों की उंगलियों यानी कि पंजों पर शरीर का संतुलन बनाएं। अंतिम मुद्रा है, इस स्थिति में रहते हुए सामान्य रूप से सांस छोड़ते हुए कुछ सेकेंड यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार इसी मुद्रा में रहें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को जमीन पर लाएं, उंगलियों की जकड़न खोलें और हाथों को वापस जांघों के पास ले आएं। बच्चों इसके सबसे बेहतर फायदे हैं, इससे लंबाई बढ़ती है, यह मांसपेशियों और हड्डियों को स्ट्रेच करता है और बच्चों और युवाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आप सब बच्चे भी ताड़ासन करेंगे ना, तो इससे जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों और भी इसकी सावधानियां भी हैं, जैसे कि जिन लोगों को घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या जिन बच्चों को पैरों में चोट लगी है, वो बच्चे ऐसे आसन ना करें, ठीक है। तो बच्चों योग के फायदे अभी और भी जानेंगे और सुनेंगे आप सभी बच्चों से। इसके पहले सुनते हैं हम सामुदायिक गीत जो कि है कन्नड़ भाषा में। तो आइए बच्चों सुनते हैं सामुदायिक गीत।

0: सामुदायिक गीत के बाद फिर आते हैं बच्चों के बीच और जानते हैं कि योग दिवस पर वो हमें क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुशांत सिंह साहू है।
0: आप क्या सुनाएंगे सुशांत?
1: योग पर कविता
0: सुनाइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुशांत सिंह साहू है। आज मैं योग पर कविता सुनाऊंगा। पहला, आओ आओ योग करे सब, योग सभी को स्वस्थ बनाए, निर्मलता मन से भर जाए, अपने भीतर में उतरे सब, आसन करके तन सुधरेगा, सांसों का यह शुद्ध करेगा, आओ बैठे सांस भरे सब, प्रेम शांति को योग बढ़ाता, भाईचारा यह उप जाता, आओ सुंदर ध्यान धरे सब। दूसरा, योग साधना है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जीवन जीने की कला है, बुढ़ापा से लड़ने की कला है, सत्य को समझने की कला है, विज्ञान है, सही और गलत को समझने की कला है, मन और शरीर में तालमेल करने की कला है। तीसरा, भारतीय तत्व ज्ञान कर रहा है पुकार, योग है मानवीय जीवन का आधार, कर ले योग का स्वीकार, कर ले अपना जीवन साकार, यम नियम का करो अनुष्ठान, हो चंचल मन में संयम का अधिष्ठान, आसन करे शरीर को दुरुस्त, योग करे सेहत को तंदुरुस्त, प्राणायाम से करो वायु का नियमन, संयमित मन से हो प्राण का संतुलन, मन को करो एकाग्र, किसी एक धारणा को का हो निग्रह, संयमित मन से धारणा में समाए, ध्यान की अवस्था में धारणा में खो जाए, आत्मा हो परमात्मा से एक रूप, यह है समाधि का उच्चतम स्वरूप, जाग उठो मानव, जाग उठो मानव, योग ले जा रहा है तुम्हें अंतिम देह की ओर। चौथा, प्रकृति की गोद में कर ध्यान और योग, प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब रोग, जीवन के सब रोग

मिटे आनंद मिलेगा, सकारात्मक उर्जक हो तो हृदय खिलेगा। कवि हो जाता धन्य देख यह दृश्य सुहाना, ऐसे सुख से बढ़कर सुख ना हमने जाना। अब मैं शिव स्तुति सुनाऊंगा। पहला, आशुतोष शशांक से

0: सरज प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा शूल पानी त्रिशूल धारी ओगड़ी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौल्य चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नगवन दिगंबरा हर हर महादेव। धन्यवाद।
1: सुशांत ने अपनी कविता के माध्यम से हमें योग के बारे में बताई और इतनी प्यारी शिव स्तुति सुनाई, तो बच्चों इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
2: आरुषि साहू।
1: क्या सुनाओगे आरुषि?
2: कविता
1: सुनाइए।
2: नमस्कार, मेरा नाम आरुषि साहू है। आज मैं योग दिवस में कविता सुनाऊंगी। पहला, स्वस्थ जीवन की है यह पहचान। स्वस्थ जीवन की है यह पहचान, रोज करे योग सुबह सुबह हर दिन हर स्थान। योग है जीवन की सच्ची राह, तन मन को दे स्वास्थ्यपन की चाह। सांसों में लाए यह नई शक्ति, दूर करे यह दुख और व्यग्रता की भक्ति। मन को शांत शरीर को बलवान, योग सिखाए अनुशासन महान। रोग हटे बड़े आत्मविश्वास, हर दिन की हो फिर नई शुरुआत। योग अपनाए हर इंसान, यही है सुखी जीवन का वरदान। दूसरा, थोड़ा दाएं बाएं घूम, थोड़ा दाएं बाएं घूम, थोड़ा पेट सबसे पहले, कभी खोपड़ी नीचे कर, कभी पैर ऊपर उठा ले, कभी शांत बैठ एकांत बना ले, योगा करके अपनी सेहत बना ले। तीसरा, हिमालय खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल राजो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में, उसको जीने में मर जाने में। चौथा, पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने, जिस पद जाए वीर अनेक। धन्यवाद।
1: छोटी सी आरुषि ने बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। तो आरुषि, आप योग करती हो?
2: हाँ।
1: कौन कौन से योग करते हो और प्राणायाम करते हो बताओ?
2: सूर्य नमस्कार।
1: और आपको आ जाता है पूरा सूर्य नमस्कार?
2: मम्मी के साथ कर।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप इतने स्ट्रांग और हेल्दी हो।
2: हाँ।
1: तो बच्चों, जब आप योगा करते हैं या योगा नहीं भी करते हैं, तो बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, उससे आपकी आंतें खराब होती है। आप बाहर का खाते हो?
2: नहीं।
1: आपको देख के तो नहीं लगता कि आप बाहर का नहीं खाते हो?
2: बस बिस्किट और चॉकलेट।
1: हाँ, ये तो हर कोई खाता है, वो तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना चाहिए। और सड़क किनारे जो गुपचुप मिलते हैं, है ना, मोमोस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो बच्चों, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। तो छोटी सी आरुषि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
3: शशांक महावीर।
1: आप क्या सुनाओगे शशांक?
3: कविता
1: सुनाइए।
3: नमस्कार, मेरा नाम शशांक महावीर है। मैं आज योगा के बारे में कविता सुनाऊंगा।
1: सुनाइए।
3: नित्य जो करता मानव योग, रहे जीवन में सदा निरोग। ऋषि मुनियों का दिया वरदान, कहलाता है योग। चुस्ती फुर्ती वह दिखलाए, आलस उसके पास न आए। तन मन रहता सदा ही स्वस्थ, लगे कभी न कोई रोग। दूसरा, नए वर्ष की पहली किरण संग, आओ रचे जीवन का रंग। स्वस्थ हो हमारा पहला कदम, योग से भरे तन मन उमंग। धन्यवाद।
1: बहुत ही प्यारी कविता सुनाई आपने, बच्चों इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या जोशी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कविताएं सुनाने वाली हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है योग। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग, सबका कल्याण है योग, भारत की जान है योग, संस्कृति की आन है योग, प्रकृति का वरदान है योग, शरीर की फूर्ति है योग, निरोगता का राज है योग, मन की एकाग्रता है योग, संतों की साधना है योग। मेरी अगली कविता है प्यारे बच्चों रोज करो तुम जल्दी उठकर व्यायाम, मन का भी होगा विकास, शक्ति मिलेगी शरीर को, आलस का ना रहेगा नाम, शरीर में आएगी फुर्ती, तंदुरुस्त बन जाओगे तुम, बीमारी नहीं आएगी पास। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बच्चों इनके लिए तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
5: नमस्ते, मेरा नाम भाव्या भूरा है, मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
1: आप क्या सुनाओगे भाव्या?
5: मैं आज पैराग्राफ सुनाने वाली हूँ।
1: सुनाइए।
5: जैसा कि आप सब जानते हैं योग की शुरुआत भारत से हुई है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को घोषित किया, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। आज मैं योग के कुछ आसनों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पहले आसन का नाम है वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, भुजंगासन, बालासन, सेतुभद्रासन इत्यादि। और अब मैं सूर्य नमस्कार के बारे में बताना चाहती हूँ। सूर्य नमस्कार 12 आसन का एक गतिशील योग क्रम है। इसे खाली पेट सूर्य उदय के समय करने से हमारा हार्ट अच्छा होता है और ये हमारे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आसनों के बारे में बताया, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम प्रगति यादव है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
6: मैं कविता सुनाऊंगी। धरती से सीखा है हमने सबका बोझ उठाना, और गन से सीखा हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की डाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबकी पीड़ा हरना, पर्वत से सीखा है हमने दृढ़ संकल्प बनाना, और गगन से सीखा हमने आगे बढ़ते जाना।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, इनके लिए भी ताली हो जाए बच्चों। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम मानवी वर्मा है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
7: मैं कविता सुनाऊंगी।
1: सुनाइए।
7: विनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख के बने महान, हम सब बच्चे हैं नादान, विद्या के दिदो वरदान, सदा सत्य की राह चलो, बंधनों से कभी ना डरो, सही समय पर काम करो, जग में ऊंचा नाम करो।
1: बहुत प्यारी कविता सुनाई आप, तो बच्चों इनके लिए भी तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
8: मान्या महावीर।
1: आप क्या सुनाओगी मान्या?
8: योग पर कविता।
1: सुनाइए।
8: नमस्कार, मेरा नाम मान्या महावीर है, आज मैं योग पर कविता सुनाऊंगी। करोगे योग रहोगे निरोग, भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग, सबका कल्याण है योग, ऋषि मुनियों की देन है योग, संस्कृति की आन है योग, प्रकृति का वरदान है योग, शरीर की सुफूर्ति है योग, वीरों की शक्ति है योग, निरोगता का राजा है योग, मन की एकाग्रता है योग, संतों की साधना है योग, सफलता की कुंजी है योग। दूसरा, भीड़ पार्क में है अब भारी, योग दिवस की है तैयारी, शिक्षक जी आसन सिखलाते, प्राणायाम महत्व बताते, दुनिया भर में योग बनेगा, जगत गुरु यो हिंद बनेगा। योग का महत्व, योग हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, यह हमें स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद करता है, हर उम्र के लोग को योग कर सकते हैं। जब हम योग करते हैं तो हम अपने शरीर को खींचते हैं और गहरी सांस लेते हैं, इससे हमें तरोताज और आसानी से गुस्सा न करने में भी मदद करता है। हर सुबह अगर हम योग करते हैं तो हम पूरे दिन सक्रिय महसूस करते हैं। यह हमें बीमारियों से दूर रखता है और स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। योग करते हैं तो हम शक्ति से बैठना और स्पष्ट रूप सोचना सीखते हैं। यह पढ़ाई के लिए बहुत मददगार है। हमें हर दिन योग करना चाहिए। यह हमारे शरीर को फिट और हमारे दिमाग को शांत रखता है। योग भारत की ओर से दुनिया का एक उपहार है। धन्यवाद।
1: मान्या ने भी बहुत ही प्यारी कविता सुनाई और हमें बताया योग का महत्व। तो बच्चों, आप सब योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। तो आइए बच्चों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद फिर आते हैं बच्चों के बीच। तो बच्चों, अब हमारा समय होने को है समाप्त। अगले रविवार सुबह 9 बजे फिर होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक अपनी दीदी भूमिका को दीजिए विदा। तो बच्चों, मेरे साथ मिलकर कहिए जय हिंद
1: जय हिंद।

बालबाड़ी। अभी आप बच्चों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। शिक्षिका थी भूमिका पांडे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज हम जिस फिल्म के बारे में बातें करने जा रहे हैं वो 1974 में बनी एक रोमांटिक सदाबहार फिल्म थी। निर्देशक थे जे ओम प्रकाश। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार। ये फिल्म थी आपकी कसम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे?

श्रोताओं, इस फिल्म के गीत उस समय उतने ही लोकप्रिय थे और आज भी याद किए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। एक खास बात आपको और बताएं कि उस समय राजेश खन्ना एक बड़े सितारे थे। उनके साथ अभिनीत कलाकारों को ध्यान में रखकर उस समय के गीतकार गीतों को लिखा करते थे। शायद ये भी एक खास कारण है कि उन गीतों की लोकप्रियता आज भी कायम है।

इस फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी वर्मन का। फिल्म के संगीत के लिए आर डी वर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में नामित भी किया गया था। इसके गीतों में आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये फिल्म अपने समय की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शामिल की गई थी।

इस फिल्म में असरानी भी पुक की भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म का अंतिम दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला होता है, जब फिर से मुख्य नायक कई वर्षों के बाद पुनः अपने परिवार से मिलता है। ये फिल्म रोमांटिक इमोशनल फिल्म थी। इसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।

एक ही फिल्म से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: gate.
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब यह सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने ये कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योगाभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के किसानों के खातों में राशि अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसान परिवारों को 490 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी में वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती के लिए जरूरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकभवन रायपुर में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल गोवा और तेलंगाना राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाषा कला और संस्कृति से जुड़ाव देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। कार्यक्रम में तीनों राज्यों की संस्कृति परम्पराओं और विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस के इस शिविर में प्रदेशभर के जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जशपुर वनमंडल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। वनमंडल ने एक दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गुलशन। इसमें हम सुनवा रहे हैं नए तराने। पहला गीत हमने लिया है फिल्म पीके से। आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

फिल्म एयर लिफ्ट से अभी आप ये गीत सुन रहे थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। संगीत था अमान मलिक का। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। स्वर है मोहित चौहान का, गीत नीलेश मिश्रा का और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म दिलवाले से अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था प्रीतम का। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म किक से। स्वर है मोहम्मद इरफान और मयूरपुरी, संगीत हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म राज से। स्वर है अलका याग्निक का, गीत रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

गुलशन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म मन से। आवाजें हैं उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की। गीत है समीर का और संगीत है संजीव दर्शन का।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07।

0: 7822226666 ફોન ઇન કિસાનવાણી આપન મંચો સવાલ આપન મંચો કહાની ખેતીબાડી ચો જુબાની આકાશવાણી જગદલપુર ને
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है कुछ ना कहो। इस फिल्म का ये गीत जिसमें आवाजें हैं शान और साधना सरगम की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीत में सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

लता मंगेशकर और सुरेश की आवाज़ों में अनजान का लिखा हुआ गीत और संगीत है लक्ष्मीकांत पेरेलाल का, जिसे हमने लिया है फिल्म है दो लफ्ज़ों की दास्तान। आइए सुनते हैं ये गीत।

नौकर बीवी का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गाना, बोल अनजान के हैं। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है किशोर कुमार के साथ आशा भोसले ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म याराना से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

लीजिए अब सुनिए बप्पी लहरी और शरण प्रभाकर की आवाजों में फिल्म अरमान का गीत, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

आशा भोसले को सुनिए फिल्म मंजिल मंजिल में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुरदुम में आज प्रस्तुत है हल्बी गीत। गायक कलाकार हैं जलधर और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: आप सुन रहे हैं बस्तर के लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़तुम में हल्बी लोकगीत। स्वर है जलधर और साथियों का।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप जलधर और साथियों का गाया हल्बी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देशभर में आयोजित योग कार्यक्रमों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष का विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित योग कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों ने योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भावना की अभिव्यक्ति है और यह किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सामूहिक योग अभ्यास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा छत्तीसगढ़ सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहा है। वहीं अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को नियमित रूप से योग अपनाकर स्वस्थ संतुलित और निरोग जीवन जीने का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एनसीसी, एनएसएस, पतंजलि योग समिति और युवाओं सहित लगभग

0: 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज भी किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे अभनपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी उपस्थित रहेंगे। 10 दिनों का कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के शिविर में प्रदेश भर के पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है, जिसके असर से राज्य के उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री अधिक है, जिसके कारण रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चार पहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरार 5 मुख्य आरोपियों में एमसीबी और कोरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कल दबिश देकर पकड़ा। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और सबको साथ लाता है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और एनटीए द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ!
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
9: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
10: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
9: अरे यार
10: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
11: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुस रुसा में प्रस्तुत है लोक गाथा आंधा राजा का पांचवां भाग। गायिका हैं सुब्री बाई।

आए प्रभु बाली गौ रागे आए। ई बूट कबाट करेंग तो बीती ई थोम कथा मिंड तो बीती तो धुरला खेल तो बीती प्रभु धुरला खेल तो बीती। एरी सकाजे तो कट कटत एरी सकाजे तो कट कट तो बाली गौ रागे आए प्रभु बाली गौ रागे आए।

सुना प्रभु माचो बातो माना। तुम्हें बोले तो रोलस दादा, तुम्हें बोले तो रोलस दादा, जे मोके काए काजे आनलो दादा, मोके काए काजे मांगलो। बालो पना ने मोके दादा, बालो पना ने मोके दादा, जे माये छाड़ू न गेली प्रभु, माये छाड़ू न गेली। नानी बेरा तो मोके रे दादा, ए नानी बेरा तो मोके रे दादा, हा बापो छाड़ू न गेलो प्रभु, बापो छाड़ू न गेलो।

प्रभु जो मालोगोसो। इनिंद केटा को नो जा सतएवे एनिंद केटा को नो जा सतएवे जे बाली गौरा के आए प्रभु।

बोलू ना जाए प्रभु हरि बोलू ना जाए। ईसोल राती तो आए ये बे ये सोलो राती तो आए ये बे जे नींदो टाकू न जाओ प्रभु नींदो टाकू न जाओ। चौदह जन तो सोर होवत ए चौदह जन तो सोर होवो तो नींदो टाकू न जाओ प्रभु नींदो टाकू न जाओ।

ఒరవు సోరోహము నజావో. ఎనిన కేటాకు నగేలా ఏవే ఎనిన కేటాకు నగేలా.

भवत ये वेजे असि गावन वाटे प्रभु गुजरी वन वाटे अमरुन वाले तो गेला ये बे ये अमरुन आले तो गेला ये बेजे बिजबली कमाने प्रभु बिजवन खमाने एने उन भाती तो उतरा न दिला इने उन भाती तो छाड़ू न दिला जे खटिया संग ने आई प्रभु खटिया संग ने आई इख मन थाने तो छाड़ू न दिला इख मन थाने तो छाड़ू न दिला जे घरे ये ते इला प्रभु घरे ये ते इला।

प्रभु सहुन जाले जाओ बीज बन नख मन थाने ए बीज बह नख मन थाने तो खटिया संगे आसे प्रभु खटिया संगे आसे पीला लोक तो आए ये बे।

वाय प्रभु बाली गाँव रातो वाय हरि हरि तो राम राम ए हरि हरि तो राम राम मैं राम बोलू न जाए प्रभु हरि बोलू न जाए इगो जीवन कमन थाने जीवन कमन थाने तो हुता बोले आसे प्रभु हुता बोले आसे बाली गौरा तो एकलाया से ये बाली गौरा तो एकलाया से जे हुता ये बोले आसे प्रभु हुता बोले आसे।

ऊपर पूरा च सुनला ये बे ए ऊपर पूरा च सुनला ये बे जे ब्रह्मा विष्णु सुनत प्रभु ब्रह्मा विष्णु सुनत।

वात प्रभु विष्णु लगतवात ईसुक च झूलाना आये बे रूप च झूलाना आये बे सोनाया ये जोरा भोरा कुकुर एबे जोरा भोरा कुकुर एबे जे कारी बिलैया तो प्रभु कारी बिलैया तो ईसबु बानी तो होली एबे ईसबु बानी तो होली एबे जे बाली गाँव राके आए प्रभु बाली गाँव राके आए।

वे इमा जी कमाने आसे ये भेजे बाली गाँव राया से प्रभु बाली गाँव राया से बरमा लोग तो जाते गेला बरमा लोग तो जाते गेला जे ऊपर पुराने आए प्रभु ऊपर पुराने आए ही पावो नी पावो बिहान पावली ई पावो नी पावो बिहान पावली उजर होमुन गेली प्रभु उजर होमुन गेली ई मांझी खमाने आसे ये बे ए मांझी खमाने आसे ये बे जे बाली गाँव राया से प्रभु बाली गाँव राया से।

राया से प्रभु बाली गाँव राया से इकी तल दीना तो होली वे इकी तल दीना तो होली वे जे बाली गाँव राया से प्रभु

गोटक राज तो वासे ये वे ही गोटक देशो तो वासे ये वे जे गोटक राज वासे प्रभु गोटक देशो वासे ही उनी देशो ने आसत ये वे ए होनी राजो ने आसत ये वे जे राजा रानी आसत प्रभु राजा रानी आसत।

गावाचो लोग के सांगुरानी ई पराचो लोग के सांगुरानी तो असनी बोलू ना बोलत प्रभु असने बोलू ना बोलत ई बुढ़ा महादेव तो बोलत येवे

गावचो लोगो के हाको देवो ई पराचो लोगो के हाको देवो तो राजा घर ने आई प्रभु राजा घर ने आई इला पी तो डरा भूले इला पी तो

0: प्रभु काये काजे आये। यसनी बोलू न बोलत एवे, यसने बोलू न बोलत एवे, जे पारा चलो गो बोलत प्रभु गाँव चलो गो बोलत। ईसाए साए तो ये वत एवे, ईसाए साए तो ये वत एवे, जे गुद गुद एवत प्रभु गुद गुद एव। ए अमरु नाले तो गेला एवे, ई अमरु नयाले तो गेला एवे, जे राजा घरे तो आय प्रभु राजा घरे तो आय। ई अमरु नयाले तो गेला एवे, ई अमरु नयाले तो गेला एवे, जे राजा घरे तो आय प्रभु राजा घरे तो आय।
1: अभी आप लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में लोक गाथा आंधा राजा का पांचवा भाग सुन रहे थे। गायिका थी सुब्रीबाई। इस लोक गाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर आंगन।

भूखे मायूस नयू सांझ से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इन्हीं सकारात्मक पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन लेकर। तो घर आंगन सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को ऋतु त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। सखियों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारे परिवार या यूं कहिए कि हर महिला के जीवन से जुड़ा हुआ है, और ये विषय है वित्तीय निर्भरता बनाम वित्तीय साक्षरता। सखियों, हम में से बहुत से लोग घर की जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाते हैं, लेकिन पैसों के मामले में पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कई बार तो हम बहनों को ये तक पता नहीं होता कि घर की बचत कितनी है, बैंक खाते कहाँ हैं, बीमा है या नहीं, या हमने निवेश कहाँ किया हुआ है। तो सखियों, ये स्थिति वित्तीय निर्भरता कहलाती है। और वित्तीय निर्भरता केवल पैसों के बारे में जानकारी ना रखना नहीं होता, बल्कि अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ना ले पाने की स्थिति भी वित्तीय निर्भरता कहलाती है। सखियों, जीवन में अचानक आ जाने वाली परिस्थितियाँ जैसे बीमारी, शादी, नौकरी का नुकसान या किसी प्रियजन का साथ छूट जाना, ऐसे समय में आर्थिक जानकारी का अभाव हमको असहाय बना देता है। दूसरी ओर वित्तीय साक्षरता का मतलब पैसों की समझ, पैसों को बचाना, उनको खर्च करना और सही

0: जगह पर सही समय पर निवेश करने की समझ को कहते हैं। सखियों, वित्तीय साक्षरता हमें ये सिखाती है कि बैंक खाता कैसे संचालित करें, बजट कैसे बनाएं, डिजिटल भुगतान कैसे करें और बचत योजनाओं को भविष्य के लिए किस तरह आर्थिक सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें। सखियों, कहने का अर्थ ये है कि वित्तीय साक्षरता हमें अपने पैसों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। सखियों, घर की महिलाएं, युवाओं और बुजुर्गों सभी को परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी होना चाहिए। बच्चों को भी छोटी उम्र से ही बचत और धन प्रबंधन की आदत हमको सिखानी चाहिए। सखियों, आज समय की मांग है कि हम वित्तीय निर्भरता से आगे बढ़कर वित्तीय साक्षरता को अपनाएं, क्योंकि आर्थिक रूप से जागरूक व्यक्ति ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के निर्णय ले सकता है। और सखियों, इसके लिए हम सखियों का अपना बैंक खाता होना चाहिए, जिसे उन्हें स्वयं संचालित करना आना चाहिए। ATM, नेट बैंकिंग, UPI का उपयोग भी जानना बेहद ज़रूरी है। बैंक खाते, बीमा पॉलिसी, निवेश, लोन, कंपनी के कागज़, नामांकन आदि की जानकारी भी परिवार की महिलाओं को आवश्यक रूप से होनी चाहिए। सखियों, केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ राशि निवेश विकल्पों में भी हमको लगानी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा की ढाल हैं, और ये केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि उनका बीमा होना चाहिए। सखियों, इसके साथ ही अपना OTP, पिन, बैंक विवरण और पासवर्ड आदि की जानकारी किसी के साथ साझा न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होना बेहद आवश्यक है। तो सखियों, आर्थिक सशक्तिकरण की सीढ़ी है जानकारी। वित्तीय साक्षरता केवल एक कौशल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की कुंजी है। जानकार और जागरूक रहकर अपनी आत्मनिर्भरता और अपने आत्मसम्मान की ओर सचेत रहें। तो सखियों, इसी कामना के साथ इस चर्चा को देते हैं विराम और सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: तो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे GST लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे GST छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% GST मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: सखियों, आइए अब सुनते हैं फिल्म एयरलिफ्ट का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत अमाल मलिक का है। ये बेकरारी, ये कसक, ये जुनू इश्क है, वो तेरी बाहों का सुकून इश्क है।

0: सखियों, अभी आपने सुना फिल्म एयरलिफ्ट का गीत। सखियों, जब जिंदगी के अनुभवों को कलम का साथ मिल जाता है तो एक खूबसूरत कहानी जन्म लेती है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसका शीर्षक है नई सुबह, और कहानी पाठ कर रही हैं उषा झा।
1: गेट के दरवाजे पर बड़ा सा ताला देख हमारा मन आश्चर्य व निराशा से भर गया। चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। मैंने अपने पति की ओर देखा, वह भी मुझे घबराए नजरों से देख रहे थे। हमारे बच्चे भी स्थिति से भली भांति वाकिफ हो चुके थे। अब क्या होगा, अंधेरा पांव पसारे बढ़ता जा रहा था। अनजाना शहर पहले कभी आना नहीं हुआ। क्या फूफा जी को हमारा पत्र नहीं मिला? मिला होता तो वे यूं गायब हुए होते। सोचा था हमारी बड़ी बिटिया की परीक्षा यहां से रुक कर दिलवाएंगी, सभी सुविधा आसानी से मिल जाएगी। 4-5 दिन यहां रुककर घूमना भी हो जाएगा। अगली सुबह बिटिया का पेपर था। इस अनजान शहर में अब हम कहां जाएं? हमारी आमदनी भी इतनी नहीं कि कहीं और ठहर जाए। एक निजी कंपनी में थोड़ी सी आमदनी के साथ ये काम कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा था। दोनों बेटियों को अच्छे संस्कारों के साथ डॉक्टर बनाने के उद्देश्य से हम दोनों जी तोड़ परिश्रम करते। हमारा रिजर्वेशन 4 दिन बाद का था। टिकट कैंसिल करवाने पर पैसे कट जाने की चिंता थी सो अलग। हम सब हताश निराश सिर पर हाथ धरे गेट के पास ही बैठ गए। हमने सोचा चाहे हमें रात जैसी भी गुजारनी पड़े।

0: बिटिया का पेपर दिलवाकर हम लौट चलें। तभी मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न एक बार पड़ोसी से पूछ लिया जाए, शायद उन्हें कुछ पता हो। राम बिहारी बोस नाम की नेम प्लेट की बगल में लगी कॉल बेल को दबाने पर धोती कुर्ता पहने 75-80 साल के बुजुर्ग सामने आए। आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था। पूछने पर उन्होंने अनमने ढंग से जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने हमारे बच्चों की ओर देखा, उन्हें पिघलते देर नहीं लगी। बोले, बताकर तो नहीं गए, कल सुबह से गए हैं, उनके साथ सामान भी था, शायद शहर से बाहर गए हैं। फिर कुछ ठहर कर उन्होंने हमारे बारे में पूछा। मैंने उन्हें पूरी कथा सुना दी। हमारी गाथा से व्यथित हो उन्होंने कहा, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, हो सकता है आपके फूफा जी एक दो दिन में लौट आए, तब तक आप लोग हमारे साथ रहें। हम दो लोग ही हैं, हमारा नाती पोतों से भरा पूरा परिवार मुंबई में रहता है, हमसे भी अपना यह घर और शहर छूटता नहीं है। उनके इस आमंत्रण से हम चौंक गए। ऐसी आत्मीय संवेदना महानगरों में कहाँ। आज जहाँ चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है, वहाँ इतना अपनापन मन द्रवित हो उठा। आज वहाँ भूले भटके मेहमान को जल्द से जल्द भेजने के फेर में रहते हैं, वहीं ऐसा अपनापन व त्याग। हमने अपना संकोच व्यक्त किया, लेकिन उनका आमंत्रण इतना सहज व आत्मीय था, उसे टालना मुश्किल था। और कहा भी जाता है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हों, विचार अच्छे हों, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। सचमुच राम बिहारी बोस जी उस वक्त हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं थे। हमें अपनी बेटी को परीक्षा से पूर्व एक अच्छा माहौल भी देना था, सो हमने निवेदन स्वीकार कर लिया। मकान छोटा था, पर बोस जी का दिल बहुत बड़ा। अगले दिन बेटी की परीक्षा की भी सारी व्यवस्था बोस जी ने ही की थी, पर्चा भी अच्छा बना। 3 दिनों तक उन्होंने हमारी खूब सेवा की, लगा जैसे उन्हें बेटे बहु नाती पोते के रूप में हम मिल गए। जहां सन्नाटा व वीरानी बहु बेटों की याद में छाई रहती थी, वहां खूब हंसी मजाक किलकारियां छाने लगी। रोज शाम वे हमें घुमाने ले जाते। मैं और मेरे पति से भी जितना बन पड़ता, हम उन्हें अपना समझकर अपना सुख दुख बांटते। एक सुबह कुछ आहट हमने सुना। बोस जी ने कहा, लगता है आपके फूफा जी आ गए हैं, आप चाहो तो उनके पास जा सकते हैं। उनकी आंखें भर आई थी। कृतज्ञ भाव से हमने उनसे विदा ली, अपना सामान समेटकर फूफा जी के द्वार पर दस्तक दे दी। हमें देख वे चौंक गए। अरे तुम कब आए? अंदर आने का संकेत करते हुए हमने कहा, फूफा जी 3 दिन हो गए। 3 दिन? उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। कहाँ थे इतने दिनों? पड़ोस में बोस जी के यहाँ। वे फिर चौके। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था, चेहरे का रंग एकाएक फीका पड़ गया। अब हमारी बातों पर उनका ध्यान नहीं रहा। बुआ जी चाय बनाकर ले आई थी। चाय की चुस्कियों के साथ हमने विस्तार से बताया कि कितने प्रेम और अपनेपन से बोस जी ने हमें रखा, हमारी देखभाल की। बच्चे भी तब तक बुआ जी से घुल मिलकर बातें करने लगे थे। फिर जैसे सन्नाटा छा गया। फिर फूफा जी सामान पास के कमरे में रखवा कर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। हमें लगा जैसे यहाँ आकर हमने बड़ी भूल की हो। अगली सुबह फूफा जी ने हमें चाय की चुस्कियां लेते हुए बोस जी के प्रति इस रूखे व्यवहार का कारण बताते हुए कहा, दरअसल बोस जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। आज से 40 वर्ष पहले हम अच्छे मित्र हुआ करते थे। हमारा काम धंधा भी अच्छा चल रहा था। समय के साथ साथ बड़े हुए, बहुएं आई, बहुएं व्यापार में नुकसान का कारण हमें मानकर आपसी झगड़ों में उलझ गई। नौबत यहाँ तक आ गया कि मामला कोर्ट कचहरी में उलझ गया। बेटे बहू तो दूर देश में बस गए, पर हमारी मित्रता दुश्मनी में बदल गई। वर्षों हो गए, हम में बातचीत बंद है, हम अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोचा, इतना सब होने के बाद भी बोस जी का ऐसा सद्व्यवहार सपने में ही देखने को मिलता है। बच्चे थक कर सो गए थे। गोपाल जी बरामदे में टहल रहे थे। फूफा जी के मुख से सच्चाई जानकर वे बेचैन थे। मैं भी सोच रही थी ऐसे सहृदयी मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार, इसमें दोष फूफा जी या बोस जी का नहीं, हमारी आज की पीढ़ी का है, जो अपने स्वार्थ को चलते संवेदनहीन होती जा रही है, इसलिए रिश्ते नाते बिखरते जा रहे हैं। ऐसे महानगर में दो बुजुर्ग अपनी मनमुटाओं में जीवन गुजारेंगे तो जीवन कितना कष्टप्रद हो जाएगा। इनके बेटे बहू तो अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे हैं। इन दो निर्दोषों की क्या गलती जो इन्हें ऐसी जिंदगी के लिए विवश कर दिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे इनमें दोस्ती फिर से पहले जैसी बनानी होगी। यह सोच मैं बोस जी की तारीफों की पुल फूफा जी के पास और फूफा जी की तारीफ बोस जी के पास करते हुए धीरे धीरे दोनों में सुलह करवाने में सफल हो गई। हमने अपना रिजर्वेशन भी कैंसिल करवा रखा था। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थी जिसका उपयोग हमने इस नेक कार्य में किया और बरसों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। फिर क्या था, जैसे हम ही उनके असली बेटे बहू नाती पोते थे। फिर अगली सुबह बेटी का परीक्षा परिणाम था। उस ईश्वर की कृपा, उन बुजुर्ग का आशीर्वाद रहा, बिटिया का चयन MBBS में हुआ। हम भारी मन से विदा हुए इस वादे के साथ कि हर गर्मी की छुट्टी उनके साथ बिताएंगे। आज वो डॉक्टर है जहां वो प्रेम व त्याग की भावना से दीन दुखियों की सेवा कर रही है।
1: सखियों, अभी आपने सुनी ये कहानी जिसका शीर्षक था नई सुबह और कहानी पाठ कर रही थी उषा झा। सखियों, योग एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। योग करने के लिए दिन की शुरुआत अपने प्राणायाम से करें। योग करने से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। योग करते समय अपने पेट को खाली रखें और योग के साथ साथ ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सखियों, पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार लें और तले हुए भोजन और जंक फूड से दूरी बना लें। मोबाइल स्क्रीन का समय सीमित करें, प्रकृति के करीब रहें और अपने साथ और अपने अपनों के साथ जरूर समय बिताएं। पर्याप्त नींद लें और सखियों, इसके साथ साथ ही अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फेस योगा को भी जरूर करें। चलिए अब सुनते हैं फिल्म अर्थ की ये गजल, जिसे स्वर दिया है जगजीत सिंह ने, कलाम है कैफी आजमी का। तन्हाई में अक्सर वही चेहरे उभर आते हैं, तन्हाई में अक्सर वही चेहरे उभर आते हैं जिन्हें हम भीड़ में कभी भुला नहीं पाते।

सखियों, अभी आपने सुना फिल्म अर्थ का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं फिल्म रोजा का ये गीत, जिसको आवाज दी है बाल सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह ने, संगीत ए आर रहमान का।

सखियों, अभी आपने सुना फिल्म रोजा का ये गीत, जिसको स्वर दिया था एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और चित्रा ने। सखियों, सचमुच वादियां तो हंसी हो गई हैं, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे खुशनुमा मौसम में हमारे दिल की कली तो खिल जाती है, लेकिन त्वचा में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए अपने चेहरे को साफ रखें, बेसन और दही का पैक लगाकर चेहरे को अपना साफ करें, सनस्क्रीन और टोनर का उपयोग जरूर करें। सखियों, हफ्ते में दो बार स्क्रब करें और इसके लिए दही, सूजी, शहद और एलोवेरा जेल का पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। तो चलिए सखियों, चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ खूबसूरत बने रहें, और इसी के साथ ऋतु त्रिवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: घर आंगन। अभी शहरी महिलाओं का ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ

0: सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग

0: ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए।

0: के मसांगे से जसन की ये खान दारू पाना के काना करतो कीड़ी मंचो जो लार्वा रह से आ नहाले हुनके सुंडी बोले बोलुआत हुन मन हल्का लाल गुलाबी रंग चो दखा दे से आरु ये मन खान दारू पाना मन के काना करुन भाती बांगा बूटा मन के नुकसान अमराय सोत ये चोले खान मन सुकलो असन आरु घसरतो असन दखा दे से आरु ये कीड़ी मन फसल के 60% तक नुकसान अमराव सकुआत आरु ये कीड़ी मन के थेवा तो काजे मरला तो काजे कीड़ी धरलो खांद आरु फर मन के बेड़ा ने गोटकी जगह जुहाउन भाती खोदरा बनाउन फिर हुता बूटा मन के डारुन भाती माटी पाटून देतो रहे नहाले साइपर मेथ्रीन नाचो दवाई चो 0.01% चो घोर बनाउन भाती फूल धरतो बेरा नहाले हुंचो 15 दिन पाछे छिड़काव करून देतो रहे असनी गोटो कीड़ी हो से पाना मोड़क कीड़ी बोलवाते के आरु ये कीड़ी चो जो लार्वा रह से हुन पाना के खड़े खड़े काया की मोड़ून देसे अरे ये कीड़ी के थे बातों काजे डिक्लोरोबोस नाचो कीटनाशक दवाईयों खच्चो 0.1% चो दवाई के छिड़काव करतो रहे अरु असने गोटो कीड़ी हो से एपिलेबना बीटल बोलवाते के ये लाल रंग चो ढीप का आसन दखा देतो बत्ती कीड़ी आए ये चो सुंडी जो नाय हरदया रंग चो अरु रोआदार आसन रह से जोन पाना मन के खाते जाए से ये कीड़ी के मरला तो काजे कार्बोरिल नाचो दवाई के 20-25 किलो 2.5 एकड़ हिसाब ने भुरकाव करून देतो रहे अस नहीं होय से बांगाचो रोग मन बले आरु ये बांगाचो रोग आरु हुंके थेबा तो काजे हमके कहीं कहीं वार्ड बले करतो रहे अस नहीं जसन की गोटक रोग होय से आर्दगलन रोग ये रोग पिथियस फाइटोप्थोरा नाचो फफूंद ले होय से आरु एचो कारण बूटाचो खाले चो खंद गलुक मुरिया से आर फिर ए बीमारी के थेबा तो काजे भूई के केप्टान फाइटोलान नहाले ब्रासिकल नाचो ओखचो 0.1% जो घोर ले भूई के उपचार करतो रहे आरु बीज लगा तो पहल कापर नाचो फफूंद नासी जो कीड़ी रह से दवाई रह से हुंचो 2 ग्राम 1 किलो बीज हिसाब ले उपचार करतो रहे आरु खरीफ मौसम बोलो ने बरसा दाए खरीफ मौसम ने कियारी मन के भूई ले 10-15 सेंटीमीटर ढेंग बनातो रहे आर फिर जल निकास चो व्यवस्था बोले अच्छा संगातो रहे असनी गोटक बीमारी होय से बांगा ने धरतो बीती फोमोटीसर ब्लाइट बोलवाते के आरु ये बीमारी चो जोन कारण ने बूटा मंचो सफाई बाटे धमसया लाम असन दाग धप्पा महा दखा दे से ये बीमारी के थे बातों काजे बीज के लगातो पहिल हुनके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम पानी ने 1/2 घंटा काजे डोबून संगाउन देतो रहे असन दखा रखा करुन भाती बांगा चो कमाने के आमी बढ़ाउक सकू आरु हुंचो लाभ बले धरुक सकू
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ चुगूट का पुनः प्रसारण किया गया जे आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0772-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन। संगीत की मधुर सरगम, गीतों की सुरीली महक और श्रोताओं के प्यार से सजा हुआ फरमाइशी पत्रों के कार्यक्रम श्रोता सुमन को लेकर हम एक बार फिर आपकी

0: कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने फिल्म आंदोलन का गीत सुना। गीत रचना थी समीर की, तर्ज बनाई थी नदीम शवन ने और गीत सुनने की फरमाइश आप सबकी थी। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगला बैन शाह और राजेंद्र जी शाह। चंडीगढ़ के ये श्रोता हैं सतीश अनिजा और बिमला अनिजा। देवरी भाडाबारा से गन्नूलाल रचक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शंभुदयाल खटक। आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना खुशी गोस्वामी, जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन। ये सभी श्रोता हैं जवाहर नगर, जवाहरगंज जबलपुर से। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। लालमाता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। कस्बा नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार। ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। आप हैं रामचंद्र डोंडी धोंडीबाला इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा, गौतम नामदेव राव शिंदे पाटिल और विशाल शिंदे के साथ हैं सुनील जबड़े। ये सभी श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता। दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू और मोनू ठोके आप हैं अशोक नगर हिंगोली के श्रोता। हिंगोली जिजमादा से लक्ष्मी उत्तम कामले और आप हैं तहसील हंदगांव तामसा रोड से श्यामराव बेबी बिट्टू पड़घड़े। पोषण बंशोड़, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंशोड़ आप सभी हैं दुर्ग के श्रोता। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बमलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्राजंता, प्रांजलि, सोहम, सदानंद और सुभाष बोरगांवकर। बेमेतरा से हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल और भगवान सिंह राजपूत। कमर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। खपरीकला से हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता किलेश, नेहल पीहू छोटी, दानिश दीक्षा संजय और पूजा रामा पूर्वी। आप हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार और आयुष के साथ नंदिनी जंघेल आर्यनगर कोहका भिलाई की ये श्रोता हैं। आप पुजारीपारा कोंडागांव से हैं सेतु राम चक्रधारी, मंगती नाशीष और अस्तिका चक्रधारी। इसी गीत की फरमाइश रायगढ़ से आई रोहित जयलक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और ऋषभ लक्ष्मी की। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित गगनेजा, विशाल प्रिया और तिशानी। आप हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। बेमित्रा से नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक। इंदौर के श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया। आप बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रियंबिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, ढोंडी भर्री टोला ढोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू प्रियंका और मुरली गौतम। भटेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्र वर्मा और आयुषी के साथ कृष वर्मा। आप हैं ग्राम बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। और इसी गीत की फरमाइश हीरा वाली फजिलका पंजाब से आई थी सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा की। साथ ही बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा भी इस गीत को सुनना चाहते थे। और चंडीगढ़ से शेफाली अरुण कुमार और शेफी हिमांशु सेठी की भी फरमाइश थी।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
0: आप सुन रहे हैं श्रोता सुमन कार्यक्रम। अगली गीत की फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन कमनेकर, धीरज सव्वा सेरे, वरुण जामटी से मुकेश कासलेकर और विशाला बोबड़ी, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, आप सभी पिपरिया के श्रोता हैं। धनोरा जगदलपुर से आप हैं वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर श्रीशु, मास्टर शिवांशु और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा से डी वनिता नायडू, डी कृष्ण राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी सोम शेखर नायडू, डी अक्षय और प्रांचल नायडू, छत्रपति संभाजीनगर के यशोता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, सावरगांव से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर मीनल नारे, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता, अनुपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती वानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वेदही जोशी। आप हैं फरसगांव के श्रोता फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती राधा नामदेव, कामठी नागपुर से अमृता शर्मा, आशीष कुमार, कैलाश प्रसाद और श्रीमती किरण शर्मा, गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा तुलसी राव, भाग्यलक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, श्रवण कुमार राव, नानू राव, श्रुति राव, काव्य और राशि राधिका। गणेशपेट पाथर्डी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और स्वर्णा शिंदे। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र के आप श्रोता हैं। पारुण विश्रामपुरी से प्यारीदास मानिकपुरी, श्री कुमारी खिलेश नमिता और डिम्पी मानिकपुरी, भानभेड़ा मुंगवाल से भारत राम पड़ोती, जयंती पड़ोती, हेमंत उमंग और मोक्ष पड़ोती। आप हैं पलसीकार कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश शहजनवानी, हनी अमिता, जिम्पी दियाना, जियानूर मटाई, भाटापारा दतेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर के श्रोता डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित के साथ बीना आर्य सभी श्रोता गोल बाजार बक्सर से हैं। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा राठौर। आप हैं ग्राम गेंदा टोला, जिला राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता और गजेंद्र गुप्ता, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रामायण श्रीवास, रजन साहू और हेमंत नामदेव। आप सनावद मध्य प्रदेश के श्रोता दिलीप मालाकार, योगेश और सुनीता मालाकार। शिवाजीनगर बडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, सुनैना खोबरखेड़े। डोंगर गांव जिला राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बीबी अनुष्का और तन्मय गजबी है। संबलपुर

फिर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी ईशिका और तेजल यादव, हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र और सुशील, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्य और भाई सुच्चा पाठक अनारकली बाजार चक्राओं के श्रोता हैं। आप हैं डोंडी लोहरा बालोद से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया, किकीर मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा गुरामी डोंडी लोहरा बालो से पीयूष जोहत्री बाई नेताम, जुनवानी दुर्ग से सुरीत रमेश साहू, ग्राम बन बघेरा से जिल आप हैं योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज नीलेश्वर कुमारी, अंजलि सारवा, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, जूनापानी सनावत से कालू सिंह वडोले, साहिल हरिओम, विशाल और सुमन वडोले और भटिंडा रोड डव्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग और मोहित नारंग। केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्का और नियो नौबत यादव। देखा प्यार तुम्हारा, अब आप सबकी चाहत पर पेश है इस फिल्म का नगमा। स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का। नगमा निगार है आनंद बख्शी और मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत की फरमाइश छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, चितन और पायल साहू ने भी की है और बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा भी सुनना चाहती हैं।

ऊपरकोट मोहल्ला चौखनड़ी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बास, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी, चांदनी चौक गंडी पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्के, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन, आप हैं डोंडी लौंडीगुड़ा बस्तर से चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीराम मौर्य, दुखुराम मौर्य, रामधर बघेल, दली राजरा से ललित यादव, श्रीनिवास और सुरेश नागवंशी, दरभा बस्तर से रामधर कश्यप, सोनू राम ठाकुर और भीमा सोड़ी, मेचका नगरी से भूपेंद्र नाथ, पूर्णिमा निखिल और तरुणदीप नाग, आप हैं कस्बा गन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फरिया और ताहिर, सोपान ताइड़े, विजया ताइड़े, अमोल और सरिता ताइड़े, आप हैं मामूलवाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से, जिंगाव नांदूरा से हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू भोजने, सोनू भोजने और निवृत्ति आड़ोकार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर विक, चैतिक विक और मिक्का विक, बचेली के ये श्रोता हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज, पोषण, पंचू और भुवनेश्वर सेन, आप हैं लातूर तालुका से उस्मान शेख फौजी, साइरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नवी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर, सानिया, शाकिल और उनके साथी, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप, हरदेव लालपारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया और रिंकू के साथ सन्नी कोमल यादव, यमुनानगर बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता मौर्य और मून सोलंकी, मेघापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू, पोटियाकला दुर्ग से संजय

साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, बोरागाछी से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, उमरगांव नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई, उमाशंकर और ठामेश्वरी साहू, आप हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता स्वाति, सुशांत चुलबुल रानी और संतोष सिंह, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, आप सभी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता हैं। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारनी मसिया, यहीं से रिजवान खान, आयशा, सभियानस और रेहान। ग्राम मामड़पाल दरभा बस्तर से गणपत बघेल, मनीष बघेल, अनंत बघेल और उनके साथ ही हटोद बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल, आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड के ये श्रोता हैं। बुलंदशहर से हैं पंकज सिंह, चंचल राशि का आकृति और वंशराज सिंह, आप हैं भंडार सिवनी कोंडागांव से सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। ओम रेडियो श्रोता संघ से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया जमशेदपुर के आप श्रोता हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, वीरेंद्र साहू, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कौसर, ये सभी हैं शेरकोट जिला बिजनौर से। मछली गोदाम कैदीमूड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु और ऋषभ सिंह। भाड़ाबारा से हैं विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, योगेश्वरी साहू, कुमकुम साहू और हर्ष साहू, आप हैं खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिडवे, श्रावण अनिता बिडवे, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी झाझोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू झाझोरिया। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल के युगल स्वरों में फिल्म नगीना की गीत आप सभी के अनुरोध पर पेश है, बोल आनंद बख्शी के तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शिवपुरन कॉलोनी खंडवासी वीएस महोपिया कमला महोपिया, रामगंज खंडवासी विजय, कविता संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली और उनके साथी, आप कुंडलवाड़ी नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश, राकेश और रक्षित सावनकर, अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा इंगले अकोला के आप श्रोता हैं, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर खांडे, शंकर सलाम, नरसिंह थापा, छेतराम नेताम, शिवराम जैन, रामधर कश्यप, डोमनलाल कोठारी और ललित नागवंशी, ये सभी श्रोता हैं बस्तर के। जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल, पद्माबाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्वनी, चुड़ीलाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय आप सभी गाजीपुर से हैं, शेरपुरा कला से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर आप सभी खंडवा से हैं, भंवरपुर बसना से हैं राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन, वरुण जोकला से हैं महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे, आप हैं वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे, निधीश सुरोधे और मायरा सुरोशे, डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश यादव, स्मित गोरे और श्रेयांश गोरे, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से हैं सीताराम कांगड़ा, शहडोल मध्य प्रदेश के श्रोता हैं सोनू खान, मोनू खान और गोलू खान, वेद मिड्डा, अलका सुचल और गिफ्टी मिड्डा आप सभी हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं, कालू सिंह वडोले, सीताराम वडोले, हीरालाल वडोले और तेर सिंह

टावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन, आप सभी जुला जुनापानी सनावद मध्य प्रदेश से हैं। कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, विनायक सेन, रीना और पिंकी सेन डबरापारा सोंगा मगरलोड के ये श्रोता हैं। लोरमी चचेड़ी से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ग्राम सोंगा मगरलोड धमतरी से हैं। प्रभाकर जोनले और आरती जोनले हैं नांदेड़ के श्रोता। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और पंच बत्ता ये सभी हैं पटियाला कनेरा मोहल्ला के श्रोता। खरगोन से हैं उस्मान खत्री, रिजवान और अब्दुल गफ्फार खत्री। पलारी से हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, लखनलाल देवांगन और ईशांत देवांगन। आप हैं वासुदेव वोदवड़े, माधुरी वोदवड़े और आकाश कुमार वोदवड़े बुल्ढाना महाराष्ट्र से हैं और संत गागड़े बुल्ढाना से अनीता, रमेश राव और लोकेश कुमार गाठोड़े हैं। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश के ये श्रोता हैं। घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन बाग बहारा भदरसी से हैं। गांव फ्रांसी से हैं राजकुमार डुड्डी, सरचित सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष के योगी के साथ बब्बू टब्बू हैं। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम, आप हैं यमतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। भाडाबारा छत्तीसगढ़ से हैं मोती लाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, योग कुमार झेरिया और गोरपा विलाईकर से हैं देवलाल कर्ष, कामिनी और यशकर्ष। और आप हैं खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार और शीला के साथ गायत्री धनजे। आप सबकी ख्वाहिश पर पेश है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में फिल्म सूरज का गीत। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

उत्तर प्रदेश कांकेर से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। आप सभी भानु प्रतापपुर के श्रोता हैं। नेहरूवाड़ भाड़ापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र और तेजल साहू। मोहनपारा करतला से हैं अकलतरा से हैं अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, घन करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत, आप सभी हैं भटिंडा पंजाब के श्रोता। अमरपुरा पेंड्रा से हैं दीपक कुमार साहू, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दीशो और लभी श्रीवास्तव, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम के आप श्रोता हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर।

वी तन्वी और उनके साथ ही आप सभी हैं हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता। कल्याणौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र, शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, बहादुरा नागपुर के आप श्रोता हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार साहू, करुणा देवी, प्रियंका भागवत वर्मा, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुदाशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से हैं, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, आप हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी, विनोद मुड़त, नेहा, दीपक, मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीशा और कुश मुड़त आप सभी उज्जैन के श्रोता हैं, इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, आप हैं गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कंडला बंदरकस से जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और जीनीश, मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आप सबने पसंद किया है फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। समीर के लिखे गीत की धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आप सभी को विश्व संगीत दिवस की हार्दिक बधाई। और आज का ये संगीत का सफर श्रोता सुमन कार्यक्रम का अब हो रहा है समापन। दीजिए आपके दोस्त मनिंदर सिंह देवगुण को इजाजत। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हैव ए नाइस डे।

0: प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
0: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
4: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
4: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरो मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
7: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा।

0: जुहार जुनकी जुहार
1: जुहार ढोया भाई जुहार। और इसी संगे संगे कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए गांव करे दादी दी मन के कलाकार भाई बहन मन के। मैं झुनकी
0: और मैं ढोया
1: आमी दोनों करूं से
0: जुहार।
1: और नानी नानी पीला मन के आमी दोनों चो बाट ले खुबे खुबे माया। तो ढोया भाई
0: हाँ
1: आमी का है कि बस्तरिया लोग
0: हाँ।
1: और बस्तरिया मन चो जुगे करून पहचान जो है नहीं हुन हो से नाचा डगा
0: नाचा डगा हाँ।
1: कसन बोलो ने आमचो जो नेता चो जो रीति नीति आए परंपरा आए एता आमी आदिवासी भाई बहन मन जुगे करून कोनी बोले तीस तिहार हो नाने कोनी बोले रुसुम हो होता आमी नाचू से
0: हाँ। और असन वैसे ची कि अरे एक दो महीना ने तो हम चो रुसुम जो रीति है उन चले से
1: हुनी हिसाब ने कहा है कि जिधर लाया मैं नाचू से नहीं उधर लाया मैं भूल कुन जाऊं से कि आमी बोलो ने काय पारने नाचू से कसन हाँ। नाचू से हम चो जो लेहरी मारू नाच तो हिसाब और आप लोग जो नामी हम चो जो बोले आमी आप लोग हिसाब ने जो नामी होता दखाऊं से लोग हाँ। मन के हुन दखलो नासन लागे से कि ये मन नहीं हाथ पाले तो नाचे सोचे
0: हाँ।
1: संगे संगे ये मन चो जो थम ना आसे होता बोल नाचा डका जाता
0: हाँ। है कितरो अरिक ने रस होता है और दुकाक बोल नहीं जान
1: दुकाक बोल नहीं जान हो का है सुंदर हासुन हासुन नाच होते हैं बल तो गोटे आए दादी दी मन की कलाकार काजे जोन जोन बल कला हो हुता हुन मन पूरा आपलो मन के लगन भाति ध्यान के लगन भाति उनके करे सो
0: हाँ।
1: ए हिसाब ने काय होसे जिदल दाय मी नाचुस नहीं उदल दाय आमचो मन बले नाचे से आमचो देह पाए मन नाचे से ने संगे हाँ। संगे आमचो बोलू थमना ने आमके देखा दे से कि आमचो आइक ने बल आइक लेवल नाचु से आमचो टोंड बल काय सुंदर मुलकन मुलकन नाचु से ने बोल तो कोटे है कि आमचो नाच के देखुन भाति लोग तो जो नए जैसे बीमार लोग मन बल चंग चंगा
0: हाँ कोके किनी कसन लागे कि कहीं काम बुता कर सो तार उनके अस्कट लाग लिस ने नाचक दुकुन दुकुन उनके बोल मन मन ने नाचे से तो उनके अस्कट बोल नहीं लागे और उन्हें आउर अरे कौन जाए
1: और असने हमें देखो सेवे कोनी कोनी बार तो रोपा बोल चालू कर हाँ। लिसे हुता बोल चिकलान बोल डगन डगन उन रोपा मंडा हाँ।
0: सो ने एक ने कितरो एक ने उन बोलो ऐसे ने
1: तो ये तो होली नाचा डगा से गोट आले हम चो लगे जहला आसे एक बोले सुनो
0: आले सुनो
2: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
9: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुमीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
1: तो रोया भाई
0: हाँ।
1: ये तो होली जाहला
0: हाँ।
1: और जो नाम आज कार्यक्रम के धरुन ये चुनाव है कला और कलाकार और ये कार्यक्रम भीतर नहीं आमी जो ना रोज कोनी ना कोनी कलाकार भाई मंचो बारे ने सांगू से असने आज ही आमी सांगू दे हबीब तनवीर
0: हाँ।
1: हबीब तनवीर बोलो ने नाव ने नीचे जानू खो से कि ये जो नात नहीं खूबे बढ़िया लोक रंगमंच कलाकार रहला और एक नया पहचान दिला से
0: हाँ।
1: ये मंचो जन्म हुन रहे 1 सितंबर 1923 के रायपुर छत्तीसगढ़ ने बल्लो ने आमचो छत्तीसगढ़ ने ची एमन जन्म धनु रहला और ये मंचो बाबा चा नाव रहे हफीज अहमद खान और एमन जो नात नागपुर ले जो नात एमन स्नातक चो डिग्री धनु रहला 1945 ने मुंबई ने आकाशवाणी ने नौकरी ले एमन जो ना आप लोग जो ना आगे चो जो फिल्मी कैरियर जो बनो से हुन मन शुरुआत कर ला और संगे संगे 1954 ने दिल्ली ने उन भारतीय हिंदुस्तानी थिएटर बोलून गोटोका से हुता एमन जुड़ला और एमन चो पहल जो नाटक रहे हुनमन चो नाव रहे आगरा बाजार और हबीब तनवीर जो नात ये 100 लेवल आगर नाटक जो नात एमन बनाला और जोन जो नात लोग ने के खूब पसंद बल करला और ये जितरो बढ़िया अभिनेता रहला निर्देशक रहला संगे संगे नाट्य लेखक बन रहला मतलब नाटक के लिखते रहला ये
0: हाँ।
1: और गीत बल बनावत और संगे संगे कवि बल रहला बल्लो ने सपाय गुण मन लगे
0: रली हाँ।
1: और नई दिल्ली ने नाट्य संस्था गोटोका से नया थिएटर बोलून और गोटोका से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये तो बले स्थापना जो ना हबीब तनवीर जो ना हुन करून रहला और 1983 ने पद्मश्री एमन के मिलून रहे और संगे संगे 2002 ने पद्म भूषण ले एमन के सम्मानित करला और इसी संगे 1990 ने कविदास ले बले एमन के सम्मानित करला और ढोया भाई एमन हाँ। चो जो रचना से केवल सांगून दे से एमन हाँ। चो रचना जसन पराय तो के सांगले जो ना आगरा बाजार
0: हाँ।
1: और संगे संगे चरण दास चोर एमन चो प्रमुख रचना रली और इसी संगे संगे गांधी बोल बलून बल गोटोक नाटक आए जेके लोग मन खूब पसंद करला एमन चो लिखलो राशि असने प्रहार राही फुटपाथ पोंगा पंडित ये सब प्रमुख रचना एमन चो लिखुन लिखलो बीतिया से। तो और एमन चो मृत्यु होन रहे 8 जून 2009 ने।
0: तो कितरो अच्छा बड़े माने रहला ने
1: हाँ, हाँ।
0: और ए मंचो जुन की तानी हाय मंचो जुन एता जुन रंग मंच जुन होली
1: हाँ, हाँ।
0: मंचो नावल को भी आगे ली ने
1: हाँ, हाँ।
0: और असन जुन रला ए मन संग संग कितरी लोग के पूरे बला अंतर होली ने
1: हाँ। और काय आए बोललो ने ढोया भाई रंग मंच गोटोक असन थाना से जोन थाने आमी जोन बले नाटक के करूं से
0: हाँ।
1: दखाऊं से लोग के जसन आमी सिनेमा दखुक जाऊं से
0: हाँ।
1: तू तक आया है कि जिदल दाय शूटिंग होस नहीं
0: हाँ।
1: को तक किंडिक बले काई गलती होली बोलो ने उनके सुधराऊं देसे
0: हाँ।
1: मानता रंग मंच जो जोन कलाकार हो सुत नहीं हुन मन जोन बले आप लोग प्रस्तुति देसो जोन बले लोग चो पूरे दखा सोत हुता हुन सुधार तो हिसाब नो है बोलो ने जो जोन हुता प्रस्तुति कर दे नहीं हुन लोग चो पूरे तुरंत दख तो बीती होए से तो रंगमंच जोन कलाकार आत हुन मन चो जोन बले अभिनय आसे
0: हाँ।
1: हुन अभिनय जो ना जीवता रहे से और हुन मन जो नाव जो ना है हुन गुला संसार ने लोग जाने सोत एक आजे हबी तनवीर जो नात एमन चो जो रंगमंच के जो ने पहचान दिला से एक आजे गुला संसार ने मंचो नाव हो
0: ऐसे हाँ।
1: तो ये तो होली हबीब तनवीर के बारे ने गोट
0: हाँ।
1: और मैं बोलते रहे कि हम चला के गीत गोविंद बल बला से
0: हाँ।
1: देखे बोले ढीलते जाऊं
0: हाले
1: हाले सुनो तो ये गीत के
0: हाले

0: हाँ तोड़ है भाई।
1: हाँ
0: ये गीत के तो सुन लू।
1: हाँ
0: और गाओ तो लोग चीतालीस का।
1: हाँ ये गीत के गाऊ लोग मन रहो लोकनाथ वैष्णव और उनमच संगवारी।
0: हाँ पक्की चीतालीस।
1: हाँ,
0: तो बोलते रहे समय ता से।
1: हाँ
0: और गोटो गीत के सुना दियो।
1: हाले
0: हाले।

0: हाँ तो ढोए भाई, गीत तो खूब बढ़िया रहे।
1: हाँ
0: नहीं आके गाते रहला
1: राजेंद्र कश्यप और रुनमंच संगवारी
0: हाँ, तो गीत गोविंद आमी सुनाऊ से संगे संगे कलाकार भाई बहन मन चबारे बोल सांगू से।
1: हाँ,
0: नहीं
1: हाँ,
0: अरे गीत कोरिया मन बोल तो कलाकार है,
1: कलाकार ची
0: है कि
1: हाँ,
0: नहीं।
1: हाँ,
0: तो असने आम चला गया और बोले कलाकार गीत कोरिया भाई आ, तो ये मन के बोले हम राउंड गीत के
1: हाले हम
0: आले सुनू ये
1: सुन
0: गीत के
1: सुन।

0: हाँ तो है भाई
1: हाँ
0: काय सुंदर गीत रहने
1: हाँ
0: और के गावते रहला शिवराम नाग और मंचो संगवारी मान तो काय है कि आमी नहीं रोजे दिन आसन समय ने उमरू से
1: हाँ।
0: नहीं जैसा नेबे उमर लोग कला और कलाकार कार्यक्रम के तरुण बाती असन ने फिर समय ने संज बेरा फिर उमर मा
1: हाँ।
0: तो समय ने गेलन तो उमर मा
1: हाँ समय ने गेलन समय ने उबलो है जने हाँ, हाँ।
0: तो मैं बोलते रहे विदा धरलो ने होती
1: होती हाँ।
0: तो विदा धरू
1: हाले तो जातोपुरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाए कलाकार दादा दीदी मन के मैडो या
0: और रेडो भी चल रहे मैं झुनकी
1: हम दोनों करुण से
0: जुहार।

कला और कलाकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारा प्रसारण संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जाने आज के कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 396.82 मीटर पर संध्या 6:30 पर इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल एवं रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी। संध्या 7 बजे कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। संध्या 7:20 पर हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम आमचो गांव। कार्यक्रम बालीफूल में आज रात 8 बजे सुनिएगा गेलमणि देवी और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कार्यक्रम पीलामन का जे गोट रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम

पुरानी फिल्मों से। रात्रि 10 बजे दौना कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आएंगे कनेश्वरी जैन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानें कल के कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। कार्यक्रम चिंतन प्रातः 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा ब्रह्म कुमारी मंजूषा का। श्री रामचरित मानस का गायन प्रातः 6:25 पर। कृषि सामिकी कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चुगोट प्रातः 6:35 पर एवं दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में कल प्रातः 6:40 पर गुडरू भैरम पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर प्रातः 7:05 पर। आकर्षण होगा चर्चा एवं आज के अतिथि और होगी सुमधुर गीतों से सजी मधुरिमा। लोकमंजरी कार्यक्रम प्रातः 8:30 पर। लोक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मोचो माटी प्रातः 9:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से प्रातः 9:30 पर। केंद्रित होगा प्यार झुकता नहीं फिल्म पर। गुलशन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा प्रातः 10:00। कार्यक्रम गुड़दुम में कल प्रातः 10:30 पर मासो और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। प्रातः 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक एवं संगीतकार एचडी बर्मन पर। कार्यक्रम पाठक केंजा में कल प्रातः 11:30 पर जयलाल और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। दोपहर 12:00 कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 2:30 पर। कल संध्या 5:05 पर कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। संध्या 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी। कल संध्या 6:30 पर दसरू और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम बस्तर के स्वर संध्या 7:00। ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव संध्या 7:20 पर। कल रात 8:00 नानोली कार्यक्रम में लक्ष्मण और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम पीलामन काजे गोट रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: आज के इस खूबसूरत शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, जिसमें मैं हूँ आपकी कंपेयर साथी चेतना यादव
1: और साथ ही मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त सिद्धार्थ जोशी। एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ नए बातें, कुछ नए एहसास और ढेर सारी मुस्कुराहटें। उम्मीद है आपका दिन शानदार रहा होगा। अगले कुछ पलों तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह मुलाकात होगी खास और यादगार।
0: सिद्धार्थ, आज के युवा काफी मजबूत और जोश से भरे हुए है ना?
1: बिल्कुल चेतना, आज पूरे देश के युवाओं के मन में कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं।
0: हाँ, इसलिए तो कहा जाता है सिद्धार्थ कि हमारे युवा देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे।
1: हाँ दोस्तों, ऐसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं जो देश के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा है, राजनीति में युवाओं की भागीदारी।
0: हाँ, आजकल हर दूसरा युवा राजनीति की बात करता दिखाई देता है। लगता है अब सिर्फ क्रिकेट और फिल्मों से काम नहीं चलने वाला।
1: बिल्कुल, अब युवाओं को समझ में आ रहा है कि देश का भविष्य सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं बदलता, बल्कि कभी कभी वोट और विचार भी जरूरी होते हैं।
0: सिद्धार्थ, पहले मैं सोचती थी राजनीति सिर्फ नेताओं का काम है, फिर समझ आया मुझे कि नेता चुनने वाले भी तो हम ही हैं।
1: हाँ चेतना, तुमने सही कहा। अगर युवा चुप रहेंगे तो फैसले दूसरे करेंगे, बाद में हम ही कहेंगे ये कैसे हुआ।
0: बिल्कुल, वैसे युवाओं में जोश बहुत होता है, बस उसे सही दिशा मिल जाए तो कमाल हो सकता है।
1: हाँ चेतना, लेकिन राजनीति का नाम सुनते ही कुछ लोग मुंह बना लेते हैं, जैसे किसी ने गणित से जुड़ी सवाल कर लिया हो।
0: हाँ वो तो है, मगर राजनीति से दूर रह भी कैसे सकते हैं? राजनीति से बचा नहीं जा सकता।
1: हाँ,
0: जैसे आप ही सोचिए, सड़क, शिक्षा, रोजगार, ये सभी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं।
1: हाँ, और कई युवा तो ऑनलाइन अभियानों से लेकर जनहित के मुद्दों तक आवाज उठा रहे हैं।
0: सोचो, अगर संसद में युवाओं की संख्या ज्यादा हो जाए तो शायद मीटिंग में चाय के साथ साथ वाईफाई की भी चर्चा हो।
1: हाँ, और तकनीकी स्टार्टअप और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। और तो और, युवाओं के पास हर मसलों के समाधान ही होते हैं।
0: सिद्धार्थ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि देश बदलना है तो युवाओं को आगे बढ़कर आना ही होगा, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि युवाओं से ही राजनीति सक्रिय होगी और नीतियों और फैसलों में युवाओं की नई सोच होगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, वो आज की ताकत और कल के नेतृत्वकर्ता भी हैं।
1: तो राजनीति से दूरी नहीं, समझदारी जरूरी है, और युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और भी मजबूत बनता है।
0: सही कहा, जागरूक युवा, मजबूत लोकतंत्र और बेहतर भारत, यही है असली युवा पावर।
1: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: चेतना,
0: हाँ,
1: अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बताते हैं कि हम उनके लिए आज क्या क्या लेकर आए हैं।
0: हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली गैर फिल्मी प्यारे प्यारे गीत और चुनिंदा गजल, जिसमें होगी शायरी की मिठास, संगीत की नरमी और गायकी की गहराई।
1: दोस्तों साथ ही जानेंगे विज्ञान पत्रिका में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी, साथ ही होगी सामान्य ज्ञान की बातें और झलकी।
0: वाह सिद्धार्थ, क्या बात है, आज तो काफी कुछ है हमारे प्यारे दोस्तों के लिए।
1: हाँ चेतना बिल्कुल, तो हमारे प्यारे दोस्तों को और ना इंतजार कराते हुए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला गीत, जिसे लिखा है शबाब आलम और मोहम्मद इस्लाम ने, संगीत से पिरोया है तबीश अली और नैला नवाज ने, मधुर स्वर दिए हैं मोहम्मद दानिश ने।

0: दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में कई ऐसे रोचक तत्व हैं जिसे हमें जानने की इच्छा होती है या उनमें से कई चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है। तो दोस्तों, अभी हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक तत्वों के बारे में बताते हैं कार्यक्रम सामान्य ज्ञान के जरिए।
1: सामान्य ज्ञान है भारत की प्राचीन भाषा के बारे में। संस्कृत को भारत की सबसे पुरानी, सबसे वैज्ञानिक और सबसे समृद्ध भाषा माना जाता है। इसे देववाणी यानी देवताओं की भाषा भी कहा गया है। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है।
0: अगला सामान्य ज्ञान है भारत में कुंभ मेले की विशालता। भारत का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और मानव समागम है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह मेला चार पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में 10 से 50 करोड़ तक श्रद्धालु शामिल।

0: होते हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन धर्म का प्रतीक है।
1: अगला सामान्य ज्ञान है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। यह नदी के साधु वेट नामक द्वीप पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध के पास बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है।
0: अगला सामान्य ज्ञान है अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई। अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण ना होने से उनकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव हट जाता है, जिससे हड्डियां और उनके बीच की स्कल स्प्रिंग की सतह फैल जाती है। आमतौर पर उनकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच तक वृद्धि हो जाती है।
1: अगला सामान्य ज्ञान है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से सुरहा ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक धनुषाकार झील और महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। इसे विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के 100वें रामसर स्थल का गौरव प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही। आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है वंदना खंडेलवाल ने और अपने मधुर स्वर दिए हैं राहुल जैन ने। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में गीतों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अभी हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की ओर, बताते हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी के बारे में। दोस्तों, पहली विज्ञान पत्रिका है, वैज्ञानिकों ने काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्टर मौत की खोज की।
1: दोस्तों, पुणे स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व से वन पतंगे की नई प्रजाति की खोज की।
0: इस प्रजाति का नाम मी म्यूशेमिया काली कलावते और लास्ट जलो 2026 रखा गया और ये लगभग 30 वर्षों में मी म्यूशेमिया वंश में शामिल होने वाली पहली नई प्रजाति है।
1: दोस्तों, अगली विज्ञान पत्रिका है, इसरो ने 200 दिनों के चंद्र मिशन के लिए चंद्र लैंडर विकसित किया।
0: दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सहयोग से एक नया चंद्र लैंडर विकसित कर रहा है।
1: इस परियोजना का उद्देश्य चंद्रयान 3 में 14 दिनों से बढ़ाकर 100 से 200 दिनों तक चंद्रमा पर लैंडर के संचालन को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, आज के विज्ञान पत्रिका में बस इतना ही। आपको फिर से ले चलते हैं कार्यक्रम तरन्नुम की ओर, सुनवाते हैं ये गजल जिसे अपने मधुर स्वर दिए हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

दोस्तों, तरन्नुम का ये सुरीला सफर आगे भी जारी रहेगा और हम आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे। अभी आपको ले चलते हैं कार्यक्रम झलकी की ओर। सुनवाते हैं झलकी। शीर्षक है कैमरे की आंख, लेखक है अजय श्रीवास्तव और निर्देशक है के परेश।

0: लगता है कांस तोड़ दिया है। छंगू, अबे ओ छंगू, मर गया क्या? जब से पुकार रहा हूं इतनी पुकार में तो मुर्दा भी कब्र से बाहर आ जाता है।
1: लो, आ गया, मुर्दा बाहर आ गया।
0: जो पूछा है उसका जवाब दो, ये हॉरर फिल्म की एक्टिंग मत दिखाओ।
2: आपने मुझसे थोड़ा ही पूछा, आपने तो छंगू से पूछा।
0: तो तुम्हारा नाम छंगू नहीं है क्या बेवकूफ?
2: था, पर आपके यहाँ जब से स्टूडियो में लगा हूँ ना, बदल दिया।
0: क्यों?
2: प्रोफेशन के अनुसार। पहले मैं एक संगीतकार के यहाँ काम करता था, तब मेरा नाम था तानपुरा। फिर मैं गायक श्री कुमार जी के यहाँ काम करने लगा, वो मुझे प्यार से सुरीला कहकर पुकारते थे। फिर मैं एक फिल्म में हीरोइन के यहाँ काम करने लगा, वो मुझे प्यार से इलू इलू कहकर पुकारती थी।
0: अब आप हमारे स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो मैं आपको क्या कहकर पुकारूं?
2: जैसा आपने अपना नाम मिस्टर फ्लैश रखा हुआ है ना, वैसे ही आप मेरे को मिस्टर स्टैन कहकर पुकारिए। देखिए फिर किस तरह लोग मेरा नाम पुकारते ही समझ जाएंगे कि आप मुझ जैसे महान व्यक्ति के अदना से मालिक हैं।
0: मिस्टर स्टैन, मिस्टर फ्लैश, वाह क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। पर इतने लोगों ने तुझे काम पर रखकर निकाल क्यों दिया?
2: कॉम्पिटिशन। उन सारे लोगों को ये लगता था कि छंगू, मेरा मतलब कि मैं उनकी जगह छीन लूंगा। बस यही टैलेंट मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है।
0: अब तुम्हें यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा मतलब है ठोकर। मैं मिस्टर फ्लैश हूँ, अगर मेरे कैमरे की आंख किसी पर पड़ी कि समझो वो चल बसा।
2: चल बसा?
0: मतलब चल निकला। यदि चल गया तो बस जाएगा ना, इसलिए चल बसा ही कहता हूं शॉर्टकट में।

0: लगता है कोई मुर्गा फंसा, मैं देखता हूँ।
1: इतनी फुर्ती मत दिखा, जरा आराम से जा वरना उसे लगेगा हम फुर्सत में थे। और हाँ, ट्रेनिंग तो याद है ना?
0: एकदम परफेक्ट, तो जाऊं? आइए आइए, मोस्ट वेलकम।
2: जी, मशहूर स्टूडियो यही है क्या, मिस्टर फ्लैश वाला?
0: बिल्कुल नहीं, अब मशहूर स्टूडियो मिस्टर स्टैंड वाला कहिए।
2: क्यों, मिस्टर फ्लैश ने आपको बेच दिया क्या?
0: नहीं नहीं, बेचने वाले हैं, मुझे मिस्टर स्टैंड कहते हैं। हेलो।
2: और मिस्टर फ्लैश वो क्या कर रहे हैं?
0: जी, वो मशहूर अभिनेता श्री कुमार है ना, वो अपने फिल्म वाले, उन्हीं का फोन आया है, आधे घंटे से बात कर रहे हैं।
1: स्टैंड, कौन आया है, यहाँ ले आओ। बेवकूफ लगता है, वही बकवास शुरू कर दिया। स्टैंड नाम क्या रख दिया, बस एक जगह स्टैंड की तरह खड़ा हो जाता है।
0: मिस्टर फ्लैश, आपसे मिलने कोई खूबसूरत सी महिला आई हैं। आइए आइए, अंदर आइए।
1: वाह, क्या फोटोजेनिक फेस है, बस जरा मुस्कुरा दीजिए, कयामत आ जाएगी।
2: मुझे कयामत नहीं लाना है, बल्कि फोटो खिंचवानी है।
1: अजी, फोटो तो और स्टूडियो वाले भी खींचते हैं, हम तो आप जैसों को बॉलीवुड में नंबर वन बनाते हैं।
0: जैसे हम खुद हैं नंबर वन।
2: जी, मुझे अपनी बेबी की फोटो खिंचवानी है।
0: उसकी भी खींच लेंगे, बस वो बॉलीवुड की नंबर टू कहलाएगी, क्योंकि नंबर वन तो आप रहेंगी ना।
2: देखिए, आपको बस मेरी बेबी की अच्छी सी तस्वीर खींचनी है, नंबर नहीं देना है।
0: मिस्टर फ्लैश सब समझते हैं, पर क्या करें, आपको देखते ही जी वो वो। वैसे आपकी बेबी कहाँ है?
1: लगता है वो अपने डैड यानी कि आपके पतिदेव के साथ बाहर खड़ी है। स्टैंड, जाओ उन्हें बाइज्जत लाओ।
2: आपको गलत फहमी है
1: स्टैंड, तुम कुछ समझते ही नहीं, बेबी तो बेबी है, तस्वीर खिंचवाना चाहती है तो हम खींच देते हैं।
2: पर वो यहाँ नहीं, घर पर आराम कर रही है, आज उसका हैप्पी बर्थडे जो है।
1: हैप्पी बर्थडे है, कोई बात नहीं, आउटडोर फोटो खींचने का मजा ही कुछ और है। वैसे वो कितनी बड़ी है?
0: मिस्टर फ्लैश कह रहे हैं कि आपकी बेटी की उम्र क्या होगी।
1: स्टैंड, तुम्हें जरा भी समझ नहीं, कहीं लड़कियों की भी उम्र पूछी जाती है?
2: देखिए,

0: आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद।
1: लगता है मैडम नाराज हो गई। मैं कुछ ठंडा लेके आता हूँ।
2: अच्छा तो मिस मम्मी जी, आपकी बेबी का ड्रेस क्या रहेगा? उसी प्रकार के बैकग्राउंड हमें देने पड़ेंगे
0: जी। उसे ड्रेस तो पहनानी ही नहीं है, बेबी वैसे ही रहती है।
2: ड्रेस नहीं पहनती है? अच्छा अच्छा, तो उसकी हेयर स्टाइल क्या है ताकि वैसी ही लाइटिंग।
0: अब लाइटिंग से उसे घबराहट होती है, इसलिए हेयर स्टाइल तो बस यूं समझिए कि बिल्कुल व्हाइट हेयर है बेबी के।
2: ये बेटी है या 60 साल की बुढ़िया? चलिए ये बताइए कि वो मुस्कुराती है तो किस तरफ के गाल में ज्यादा डिम्पल पड़ते हैं?
0: वो मुस्कुराती नहीं, बस प्यार से दुम हिलाती है।
2: समझ गया मैडम। देखिए यहाँ इंसानों की फोटो ली जाती है, जानवरों की नहीं।
0: वो जानवर नहीं है, वो तो मेरी बेबी है, पूसी, माय पूसी कैट। जब आपको मुझसे बात करने की तमीज नहीं तो फिर आप पूसी के सामने कैसे आ सकते हैं? मुझे नहीं खिंचवानी फोटो।
1: ओ मिस, आ गया, लीजिए ठंडा।
0: इसे मिस्टर फ्लैश के खोपड़ी पर डाल दो।
1: कीमत देकर लाया हूँ इसलिए ऐसा नहीं करूँगा। चलिए मैं ही पी लेता हूँ।
3: मैंने पिछले हफ्ते जो फोटो खिंचवाई थी वो दे दीजिए प्लीज।
1: जी अभी लीजिए। जरा अपना नाम तो बताइए।
3: नाम? वो किस लिए?
1: उससे जरा आसानी होगी ढूंढने में, आखिर आपके नाम से ही तो मैं आपको पहचानूंगा।
3: लगता है नए आए हो। चांदनी नाम है मेरा, चांदनी, मैं हूँ चांदनी।
2: स्टैंड, ये गाना वाना बंद करो, मुझे आराम करने दो।
1: मिस्टर फ्लैश, गाना मैं नहीं, चांदनी जी गा रही हैं। इन्हें अपनी फोटो चाहिए थी, नाम पूछा तो गाने लगी।
2: वाह वाह, क्या आवाज है। मैं सोच रहा था इतना मीठा स्वर भला छंगू मतलब स्टैंड का कैसे हो सकता है। अरे इनकी फोटो नहीं पहचानता, वो देख वो सामने रखी हुई है।
3: ये तो किसी काली मोटी की तस्वीर है। मैं तो
1: जी नहीं, आप ही की तस्वीर है। ये देखिए, ये वही ड्रेस है ना जैसे आप पिछले हफ्ते और ना जाने कब से पहनी हुई है।
3: पर इस फोटो में तो मैं बिल्कुल काली लग रही हूँ।
2: पर चांदनी जी, आपका जो कलर है वही तो दिख रहा है।
3: लगता है आपका कैमरा खराब है, भला फोटो भी कभी ऐसी आती है?
1: तो फिर कैसी आती है चांदनी जी?
3: जी मुझे तो ऐसी फोटो खिंचवानी थी कि लगे कोई उसने खिंचवाई हो। मैं वो न लगूं जो मैं हूँ, बल्कि मैं वो लगूं जो मैं नहीं हूँ।
1: समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप बदसूरत हैं तो लगे खूबसूरत, और खूबसूरत है तो बदसूरत लगे, यही ना?
3: बिल्कुल यही।
2: यही तो हमने कर दिखाया, आपकी खूबसूरती को मेरा मतलब है कि वो बना कर रख दिया। आप ऐसी लग रही हैं कि आप चांदनी नहीं बल्कि काली घटा हैं।
1: मिस्टर फ्लैश, बड़ा अजीब कारोबार है ये स्टूडियो का। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, उसकी खूबसूरती फोटो में झलके, लोग देखते ही अश अश करने लगे।
2: हाँ स्टैंड, ये सब ग्लैमर ही तो हमारे स्टूडियो को जिंदा रखते हैं। जो खूबसूरत होते हैं वो भी और खूबसूरत नजर आना चाहते हैं।
1: पता नहीं लोग अपने आप को बिल्कुल वैसा ही क्यों नहीं देखना चाहते जैसा वे आईने में दिखते हैं।
2: कैमरा भी तो एक तरह का आईना है, पर इसमें व्यक्ति अपनी उस दबी हुई छवि को देखना चाहता है जो कुदरत ने भी उसे नहीं दी।
1: मिस्टर फ्लैश, आप तो बस सीरियस हो गए। देखिए वो एक और असंतुष्ट, मेरा मतलब फोटोटॉनिक आ रहा है।
2: फोटोटॉनिक नहीं, फोटोजेनिक कहते हैं। तुम भी स्टैंड, अंग्रेजी बोलने से बाज नहीं आते।
1: आखिर संगत का असर तो पड़ता ही है ना। देखें ये जनाब क्या चाहते हैं, किस हीरो के फैन हैं।
2: फैन हो या ना हो, पर हीरो बनने के लिए भागा हुआ लगता है। आओ प्यारे आओ।
4: क्या अभी मिस्टर फ्लैश हैं?
1: जी नहीं, मैं मिस्टर स्टैंड हूँ, असिस्टेंट फोटोग्राफर ऑफ मशहूर स्टूडियो।
4: तो मिस्टर फ्लैश से मेरी मुलाकात करवाइए, मुझे जरा स्टाइलिश फोटो खिंचवानी है।
2: जी फरमाइए, मैं हूँ फ्लैश, यहाँ का मशहूर फोटोग्राफर।
4: ओ मिस्टर फ्लैश, बस आप जल्दी से मेरी कुछ स्टाइलिश फोटो खींच लीजिए जिसे देखते ही फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो जाएं।

0: और मैं अपने नाम की तरह फिल्म के पर्दे पर चमक सकूं।
1: आपका नाम क्या है?
0: स्टार कुमार। कैसा लगा?
1: दिल में तारे नजर आ गए। वाह वाह, क्या नाम है।
0: ठीक है ठीक है, देखिए मुझे ऐसी तस्वीरें चाहिए जिसमें हीरो की तरह लंबा लगूं, विलन की तरह ताकतवर लगूं, कभी ट्रेजेडी किंग लगूं तो कभी डांसर दिखूं।
1: और जो हूं वही ना लगूं, उसके सिवाय सब लगूं, यही ना?
0: लगता है आप काफी समझदार हैं।
1: और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका?
0: मत पूछिए मत पूछिए, कुछ भी मत पूछिए। आप तो स्टार बनाने वालों के असिस्टेंट लगते हैं। मुझे सुपरस्टार बनने दीजिए, बस आपको मैं अपना असिस्टेंट रख लूंगा।
1: वैसे कौन सी पिक्चर में आप हीरो हैं?
0: दिवालिये पिटते रह जाएंगे।
1: बाय द वे, ये पिक्चर का नाम है या बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट?
2: छंगू,
1: सुधारिए सुधारिए, छंगू नहीं, मिस्टर स्टैंड।
2: हाँ हाँ स्टैंड, ऐसा करो मिस्टर स्टार का कुछ अर्जेंट फोटोग्राफ बनाओ, शायद इनका स्क्रीन टेस्ट है।
0: मिस्टर फ्लैश, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको भी ऊपर भिजवाने की कोशिश करूंगा।
2: इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे यही दुनिया पसंद है।

0: वाह, क्या फोटोग्राफ्स हैं। कहाँ हैं आपके हाथ, लाइए उन्हें चूम लो। वाह,
1: अब चेहरा पोंछ लो, क्योंकि मेरे हाथों में काला रंग लगा हुआ था, वो तुम्हारे चेहरे पर भी आ चुका है। और ये तस्वीरें आपकी नहीं, हमारे दूसरे ग्राहकों की हैं।
0: ओह नो, ये मेरी तस्वीरें नहीं हो सकती, मैं आप पर केस कर दूंगा। आप चेहरों से छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें बदसूरत बनाते हैं।
2: चीखिए मत।
0: तो क्या करूं,
2: चिल्लाइए, रोइए। भाई स्टार कुमार, ये तस्वीर तुम्हारी ही है।
0: अरे पर लोग तो कहते हैं मैं बिल्कुल फिल्म स्टार लगता हूँ, मुझे फिल्मों में चांस मिल सकता है, लेकिन आपने तो।
2: मिस्टर स्टार कुमार, पिक्चर हॉल में बैठने वाला हर दर्शक अपने आप को हीरो और हीरोइन ही समझता है, पर यहाँ कैमरा सारी पोल खोल देता है, ये तो झूठा नहीं हो सकता।
0: लेकिन आपको बनाना चाहिए कि आदमी एकदम स्मार्ट लगे, खूबसूरत लगे।
1: जो वो हो वो ना लगे, यही ना। अरे स्टार जी, आप भी कहां बॉलीवुड की पिक्चर में भाग्य आजमाने आ रहे हैं, ये चेहरा तो बिल्कुल हॉलीवुड के हीरो बनने लायक है।
0: पर मुझे तो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, मुझे भला कौन पिक्चर में काम मिलेगा।
2: नेशनल पार्क पार्ट टू में।
0: आप मजाक तो नहीं कर रहे? ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
1: आप भी मिस्टर फ्लैश, उसे बॉलीवुड के बजाय हॉलीवुड भेज दिए।
2: सपनों में जीने वाले को नींद से जगाओ तो वो बुरा मान जाता है, इसलिए मैंने उसे थपथपाकर और गहरी नींद में सुला दिया, समझे बेटा। छिंगू
1: सुधारिए, छिंगू नहीं, मिस्टर स्टैन।

0: अरे ये आप कैमरे को उल्टा सीधा उलट पलट कर क्या कर रहे हैं? सारे फोटोग्राफ्स आड़े तिरछे आएंगे।
1: वही तो मैं चाहता हूँ, सीधे साधे फोटोग्राफ तो लोगों को भाते नहीं है, इसलिए अब ऊट पटांग तस्वीरें खींचेंगे हम लोग।
0: और उन्हें क्या अपने घर में टांगेंगे?
1: नहीं, उनका पोस्टर बनाएंगे, फिर मुंबई, पेरिस, लंदन में प्रदर्शनी लगवाएंगे। फिर देखना, जब किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो लोग मन चाहत तारीफ करेंगे, मुंह मांगा दाम देंगे।
0: समझ गया, फिर नोटों की बारिश, इनामों के ढेर। वाह, ये बात आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई?
1: आखिरी वाले खाने में नीचे दबी थी ना। अब ऐसा कर, जाके अपनी ड्रेस भी ऊट पटांग सिलवा ले, और हाँ, हेयर स्टाइल भी।
0: हाँ, अब हमारा नाम भी क्या उभरेगा, हम कैमरा किंग कहलाएंगे।
1: इंटरनेशनल सुपर कैमरा किंग बोल, जानता नहीं कि हम इंटरनेशनल फोटोग्राफर हो गए?
0: लगता है मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मिस्टर फ्लैश का तो माथा फिर गया है, नई नौकरी, नया नाम।
1: अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है? ये सामान तो उठाता जा।
0: सामान उठाने के लिए मकान मालिक खुद आ रहा है। मैं चला।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक झलकी। शीर्षक था कैमरे की आंख। लेखक थे अजय श्रीवास्तव। प्रतिभागी थे वसीम अख्तर, दानिश रहीम, एम ए रहीम, रीना दत्ता, इंदिरा एसाई, और निर्देशक थे के परेश।
1: दोस्तों, आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। गीत रचना है यंगवीर का, संगीत से पिरोया है मनदीप पंघाल ने, और मीठी आवाज है साज भट्ट का। लीजिए सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: विस्थापित नक्सलियों को रोजगार देने की योजना है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिका के असर से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण आने वाले 2-3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग में लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज की स्थिति में एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक विस्तारित है और सीजनल ट्रक जो है पंजाब से लेकर बिहार तक विस्तारित है। इस प्रभाव से प्रदेश में आज मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री अधिक है। इस प्रभाव से आज से लेकर आगामी 3 दिन तक रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों के लिए ग्रीष्म लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
0: मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार कल 22 से 26 जून तक सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करेगी। इसके तहत 1000 श्रद्धालुओं को गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोरिया जिले के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 जून की रात आपसी रंजिश के चलते चारपहिया वाहन में आग लगाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेनदेन में उपयोग किए गए म्यूल अकाउंट मामले में एक आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते से 14 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनः परीक्षा आयोजित की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दिया प्रशिक्षण। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग संभाग में लू के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ राम राम जिनकी, राम राम
1: राम राम राम राम ढोया भाई राम राम। और इसी संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाए गाँव करे दादी दी सियान सजन और संग जबरिया संगवारी मन के मैं झुनकी
0: और मैं ढोया
1: हम दोनों करूँ से राम राम और नैन नैनी पीला बन के हम दोनों से बाटले खूबे खूबे
0: माया
1: माया। तो ढोया भाई
0: हाँ
1: देख हमी नहीं जिदल दा नानी नैनी रेलू नहीं
0: हाँ
1: उदल दाए हम जो आजा काय सुंदर कहनी मन के सांग तो रहे
0: हाँ।
1: हमके हम कहनी मन के सुन मन नहीं असन लागे जीवता असन लागे हमके
0: अच्छा
1: बोलो ने हम सो एता बस्तर हिसाब में कितरो असन लोक कथा मनासे कहनी मनासे ठसा मनासे जेके हमें नानी बराली सुनते हूँ से
0: हाँ।
1: है कि नहीं
0: हाँ।

0: ये जो लोक कथा बना से लोक कथा बोल लो ने लोक मंच बना लो बीती कहनी में
1: नहीं
0: होता बोल कहे कसन ज्ञान ध्यान से गोट आम के जानक मिलते रहे सीखो मिलते रहे है कि नहीं और जे की आजी बोले मैं ये भी हम इदलो बड़े होलो मन तरे भी बोल सुन लो नसन लागे से कि नहीं हाँ हुन मन जो सांग तरे लो पक्की गोट रहे बोले
1: उदिन आज गोट मन के कहा कि लिटलो नहीं रहे
0: लिटलो नहीं रहे सुनते कहानी कथा बनते गई है कि नहीं तो उसने कहे कसन कहानी बना से जे की जन बस्तर से जन आदिवासी संस्कृति ने बोले हुन घटली से होली से होलो कारण ने हुन के जो नए लोक कथा सामने हम सुनू से और जानू से
1: जानू से और उनने जान माते नाम सीकुन से बोले और दूसरा लोग के बोले तो लोग के बोल सामते रहे से ने
0: हां तो काहे की कोनी बोल लोक कथा जन होय से होता हुन बेरा चो जोन बोले घटना घटन रहे नहीं हुन के बारे में हुन सांगे सोत और हुन के सुन भाती हुन के आमी अपनो ध्यान में संगन भाती अपनो आगे चो जीवन के नंग संगा तो काजे कसन आम के काय करत रहे के आम के विचार करुक लागे है कि नहीं तो ये तो होली बस्तर चलो कसा चो गोट मैं बोलते राम चलो गया और बोले झाला बना से तो के बोले सुनाम दे
1: पहले सुना
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तो

0: 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अध 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपुर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 8% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता
1: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असल ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे
2: हाँ तो ढोया भाई
3: हाँ,
2: ये तो होली जा हला
3: हाँ,
2: की नहीं
3: हाँ,
2: और आमी आज धर्म बिल्लू से कानून की बात नहीं
3: हाँ,
2: तो ये केवल हम चो दादी दी बन लगे अमराम देव
3: अले हमरा

0: कानून की बात आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, महेंद्र साहू की ओर से। साथियों, आज हमने आमंत्रित किया है गरियाबंद की अधिवक्ता श्रीमती अर्चना नरेंद्र मोहन खरे जी को, और इनसे हम चर्चा करेंगे महिला उत्पीड़न के संबंध में क्या कानूनी जानकारी है, ये जानकारी देंगी। आपका स्वागत है अर्चना जी आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और आपसे जानना चाहेंगे महिला उत्पीड़न के बारे में, क्या है ये?
1: जी जी, महिला उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज में व्याप्त है। महिला उत्पीड़न हर स्तर पर अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। ये समस्या न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है बल्कि उनके जीवन को भी प्रभावित करती है, और हमारे समाज के लिए ये बड़ी चुनौती है।
0: महिला उत्पीड़न की बात हम कर रहे हैं तो क्या इसकी शुरुआत अभी हुई है या मध्यकाल से हुई है, या अगर हम और प्राचीन काल में जाएं तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी?
1: प्राचीन काल में महिलाओं को बहुत अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा, धर्म, समाज में सक्रिय थी। उस समय पुरुष और महिलाओं में कोई भेद नहीं था। वेदों का अध्ययन करने का, पढ़ने का अधिकार था, और यज्ञों में भाग लेने का भी अधिकार था। संपत्ति में भी महिलाएं समान अधिकार प्राप्त करती थी। महिलाएं साथ मिलकर व्यवसाय भी किया करती थी। पुरुष और महिलाओं में उस समय कोई भेद नहीं था। समय जितने पुरुषों को अधिकार थे उतने महिलाओं को भी अधिकार थे। उपनिषद काल में भी महिलाएं गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करती थी। वे विद्वान दार्शनिक थी, राजनीतिज्ञ थी, हर सामाजिक पदों पर भी वे बेहतर करती थी। और फिर जब मध्ययुगीन काल जब आया, मध्ययुगीन काल से समय बदलता गया और मध्ययुगीन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और शिक्षा और संपत्ति और पढ़ाई के अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाने लगा और सामाजिक और राजकीय पदों से भी दूर रखा जाने लगा, और धीरे धीरे यहीं से महिलाओं के उत्पीड़न की शुरुआत हुई जो अभी काफी भयानक हो गई है।
0: जी, अभी की स्थिति में हम चर्चा करें तो किस तरह से देखती हैं आप?
1: महिला उत्पीड़न की आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसमें घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा है। जिस प्रतिशत अगर घरेलू हिंसा की हम बात करेंगे तो घरेलू हिंसा का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। फिर रेप, छेड़छाड़ और हत्या शामिल है। मानसिक प्रताड़ना, धमकी देना, जबरदस्ती करना, स्वतंत्रता का हनन करना, ये सारी चीजें शामिल है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, माइक्रो एग्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ी है। तो आज की स्थिति में महिलाओं के उत्पीड़न में बढ़ोतरी हुई है जिसमें कमी नहीं है।
0: जी, हम महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण करें तो आप क्या क्या है इसमें?
1: अगर वर्गीकरण की बात करेंगे सर तो इसमें है कि इसको हमें बांटना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहला, जैसे मैंने अभी कहा, तो घरेलू हिंसा इसका मुख्य कारण है। अगर हम इसके वर्गीकरण, इसको प्रकार में बांटेंगे कि कितने प्रकार के हैं, तो इसमें वर्गीकरण में सबसे पहला कारण घरेलू हिंसा है, और फिर रेप है, छेड़छाड़ है, और साइबर क्राइम, जो आज बच्चियां भी साइबर से जुड़ रही हैं, मतलब सोशल मीडिया में जुड़ी हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी एक बड़ा प्रकार है, मतलब एक वर्गीकरण के हिसाब से करेंगे तो साइबर और मोबाइल भी एक अपराध का और महिला उत्पीड़न का एक कारण बन रहा है।
0: और कारण भी आपने बता दिया है ना। अब हम चर्चा करें कि महिला उत्पीड़न को अगर रोकना है तो क्या क्या काम किया जा सकता है?
1: महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर देना चाहूंगी तो एजुकेशन पर देना चाहूंगी। महिलाएं एजुकेटेड होंगी तो इसमें कमी आएगी, महिला उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। तो शिक्षा और जागरूकता भी बेहद जरूरी है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, एजुकेटेड हो, उच्च शिक्षा प्राप्त होंगी, महिलाएं डॉक्टर होंगी, इंजीनियरिंग होंगी, तो उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। महिलाएं कानून का पालन करना जरूरी है, कानून की जानकारी महिलाओं को जरूरी है। महिला संगठनों से महिलाएं मतलब उस पर समर्थन लेंगी, हेल्प लेना चाहेंगी, तो भी इसको रोका जा सकेगा। और महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब बहुत बड़ी चीज है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, उनकी शक्ति का उनको जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना होगा तब इसे रोका जा सकेगा। महिलाओं के प्रति सामाजिक दबाव करना, उन्हें कारों को लड़ने के लिए प्रेरित करना होगा तब महिला उत्पीड़न को

0: में रोका जा सकेगा।
1: अगर कोई महिला उत्पीड़ित हो रही है और कोई उसको प्रताड़ित कर रहा है
0: जी,
1: तो महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं कानूनी रूप से जिसकी जानकारी होनी चाहिए और लोगों को पता चले कि ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत हमारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है।
0: जी जी, तो महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए आईपीसी की धाराएं हैं, भारतीय दंड संहिता जो है ना, उसकी है धारा 354 जो महिला का शील भंग करने की इच्छा से किया जाता है तो वो महिला उस पे मतलब कानूनी ये आईपीसी की जो धाराएं हैं वो ले सकती है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है तो इसका भी महिलाएं उपयोग कर सकती हैं। बीएनएस की धाराएं हैं, धारा 354 है, यौन उत्पीड़न है, ये इसमें भी अगर मतलब किसी भी महिला के साथ कोई इस तरीके का ऑफेंस होता है तो महिलाएं इस तरह से उसका जानकारी लेकर जा सकती है। 376 है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा है, सजा का प्रावधान है, तो महिलाओं को अवेयरनेस जानकारी जागरूक होकर अगर कोई अपराध होता है तो जागरूक होकर कानून मतलब कानून का कोर्ट का सहारा लेकर धाराओं का ज्ञान लेकर है ना उससे अपना बचाव करना चाहिए। 376 और 498 है क्रूरता की जो धाराएं हैं है ना, ये सारी धाराएं हैं।
1: अगर क्रूरता की जो धारा बता रही है उसमें किस तरह की बातें होती हैं?
0: इसमें ये खासकर विवाहित महिलाओं के साथ होता है, तो जो विवाहित महिलाएं हैं जो घर में ही रहती हैं उन्हीं के साथ उन्हीं के परिवार के जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वही उनके साथ क्रुएल्टी करते हैं, मारपीट करना ये सब करना, तो विवाहित महिलाओं के साथ होता है और वो इतनी उसको सहती रहती हैं, जागरूक नहीं होती, वो कोर्ट नहीं जाना चाहती, उनको लगता है कि मैं जाऊंगी लोगों को पता चलेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी है ना, तो वो सहती रहती हैं। तो 498 जो कि अगर किसी भी विवाहित महिला के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो वो 498 के थ्रू कोर्ट जा सकती है, पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, महिला संगठन में जा सकती है, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस यहाँ जाकर वो इससे बचाव कर सकती है। बीएनएस की धाराएं हैं, फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड था तो उसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता किया है, तो इसकी धाराएं हैं, धारा 64 है, 64, 65, 66, 67 से लेकर 70, 71, 74 तक के हैं जो महिलाओं को
1: किस तरह की बातें होंगी
0: क्यों जो अत्याचार महिलाओं के साथ होते हैं उसको रोका जा सकेगा, बट उसके लिए महिलाओं को उसका जागरूक होना और कानून की जानकारी लेकर बाहर निकलना होगा, जाना होगा कोर्ट, जाना होगा पुलिस स्टेशन, जाना होगा
1: जी।
0: तो ये सारी धाराएं के इससे महिला उत्पीड़न रोका जा सकेगा।
1: एक आम नागरिक थाना या कोर्ट जाने से डरता है
0: जी।
1: फिर एक महिला है
0: जी।
1: और जिस तरह से वो पीड़ित हो रही है तो उनको हिम्मत जुटाना तो उनके लिए कहीं लगता नहीं कि रास्ता उनको दिखेगा, तो आप जैसी जो कानून के जानकार हैं
0: जी।
1: आप चूंकि एक महिला हैं और एक जो महिला उत्पीड़ित हो रही है
0: जी,
1: उनके दुख दर्द को आप समझ सकती
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: तो आपके माध्यम से वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि वो कानूनी अधिकार को जाने और उसका सही उपयोग करें?
0: किसी भी महिला के साथ अगर कुछ भी कोई भी अत्याचार हो रहा है तो मैं तो कहूंगी कि उसको वो सहन नहीं करे है ना, उसको वो निकले वहां से। अगर उसके जानकारी में जो भी है या उसके कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है तो वो उसको बताए, वहां वो बताएंगी, कहीं से वो रास्ता ढूंढेगी है। और जो एक डर मन में होता है महिलाओं के कि मैं जाऊंगी तो लोग जानेंगे तो बदनामी होगी, पारिवारिक स्थिति खराब होगी है, लोग ताने बाने देंगे, तो इससे विचारधारा को चेंज करना पड़ेगा, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी चेंज करना पड़ेगा, महिलाओं को भी अपनी विचारधारा को चेंज करना पड़ेगा और विचारधारा को चेंज करते हुए वहां से निकलकर इन धाराओं का कानून का सहारा लेकर ही वो आगे निकल सकती है।
1: महिला उत्पीड़न को रोकना है इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, एक तो जन जागरूकता की बात आपने कही, और ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिसके माध्यम से महिला उत्पीड़न को रोका जा सकता है?
0: सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगी सर कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक होता है कि वो पारिवारिक स्थिति इसमें इतनी रहती है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है ना, कहीं होता है कि गांव की महिलाओं में करेंगे तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं पढ़ी लिखी है तो वो सहन कर रही है, अगर एजुकेटेड होंगी, स्ट्रांगली पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने आप को साबित कर पाएंगी।
1: और क्या उपाय हो सकते हैं रोकने के?
0: और
1: शिक्षा के साथ साथ
0: हैं सर कि कानून का पालन करेंगी, कानून की जानकारी लेंगी और महिला सशक्तिकरण की बात है, फिर महिला सामाजिक परिवर्तन अपनी विचारधाराओं में चेंज लाएंगी।
1: तो वो कैसे ला सकती हैं अपने विचारों में परिवर्तन?
0: जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीजें हैं, तो अभी भी है कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं तो उनको जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उन्हीं का पालन करना होगा, तो इससे बाहर निकलना होगा कि ये तो
1: परंपरा है उसको भी निभाना है लेकिन उसको निभाते हुए आगे भी बढ़ना है
0: क्योंकि
1: हमारी जो जड़ है वो भी रहे और उसके साथ साथ हम अपने विचार को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करें कि कोई महिला को प्रताड़ित न कर सके।
0: जी, जी, जी।
1: एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कानूनी प्रावधान की भी चर्चा हो गई, अब लोक अदालत की चर्चा करते हैं।
0: जी सर।
1: ठीक है, समय समय पर लोक अदालत हम सुनते हैं कि आयोजित हुआ और इतने प्रकरण का निपटारा किया गया।
0: जी,
1: हम आपसे जानना चाहेंगे लोक अदालत के बारे में।
0: जी, जी सर, जी।
1: जो राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: लोक अदालत सर एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में जो लंबित मुकदमे होते हैं, जो पूर्व विवादों में आपसी सहमति में सौहार्दपूर्ण तरीके से उनको निपटाया जाता है, जिसे जन अदालत या लोगों की अदालत भी कहते हैं, ये भारत के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक वैधानिक दर्जा प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है जो त्वरित सुलभ न्याय प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषता है कि आपसी समझौता जो लंबे समय से जैसे चले आ रहे हैं, तो जो केस का निपटारा नहीं हो रहा है, उसके डिसीजन नहीं हो रहे, तो आपसी समझौते से उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। निष्पक्ष और त्वरित न्याय होता है, जैसे पेंडेंसी चलती रहती है कि लंबे चलते हैं केसेस, तो लोक अदालत के जरिए वो तुरंत उसमें डिसीजन देते हैं और वो तुरंत उसको सॉल्व कर दिया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के केसेस भी होते हैं, किसी एक विषय पर भी लोक अदालत आधारित किया जाता है जिसमें एक ही तरीके के मामले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई अलग अलग केसेस हैं उसको लेकर एक लोक अदालत होती है, एक राष्ट्रीय लोक अदालत भी होती है जिस किसी एक तारीख को नियुक्त किया जाता है जो पूरे देश भर में फिर लोक अदालत होती है, उसमें भी इस तरीके के मामले सुलझाए जाते हैं जिसमें जो पीड़ित है उनको न्याय मिलता है।
1: अच्छा, लोक अदालत से जो न्याय मिलता है लोगों को, उसके क्या फायदे हैं?
0: इसके फायदे कि वो निष्पक्ष न्याय होता है उसका, है ना, और लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। किसी का अगर कोई केस है तो वो उसमें परेशान रहता है, तो जल्दी उसमें निपटारा होता है, तो वो एक मेंटल टेंशन जो होता है, मानसिक टेंशन, वो भी नहीं होता, उनको बेनिफिट्स होते हैं उसके, और कुछ पारिवारिक विवाद है, संपत्ति अधिग्रहण है, ये सारी चीजें उसमें मतलब सॉल्व कर दी जाती है, तो उससे उनको राहत मिलती है।
1: कुल मिला के कि लोक अदालत में अगर लोग अगर पहुंचे जो समाधान योग्य, जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, तो उनका समय और पैसा दोनों का बचत है, और उस समय और पैसा का उपयोग वो अपने परिवार के लिए, खेती बाड़ी के लिए, या जो भी जीवन यापन के लिए काम करते हैं उसमें लगा सकते हैं। ये आप कहना चाहती हैं। श्रीमती अर्चना नरेंद्र मोहन खरे जी, आप आज स्टूडियो में आई और महिला उत्पीड़न के संबंध में कानूनी जानकारी दी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही कानून की बात के आज के इस अंक से मुझे यही अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो मैं बोलते रहे ये तो होली कानून चौबट
3: हाँ,
2: नहीं
3: हाँ,
2: और के अर्चना खरे संगते रहला
3: हाँ,
2: अभ्योट करते रहला हरेंद्र साहू
3: हाँ,
2: चंचो जातो समय बोलो से तो विदा धरू। बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनते सब गाँव के दादी दीदी मन के मैं झुनकी
3: और मैं डोहे
2: हम दिन करूँ से राम राम, राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार जिनकी जुहार।
1: जोहार मैं भाई जोहार। और इसी संगे संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सपाए गांव करे अदा दीदी उनके मैं झुनकी
0: और मैं डोया
1: हम दोनों करू से
0: जोहार।
1: और नन नन्ही पीला मन के हम दोनों से बाटले खुबे खुबे
0: माया
1: माया नया भाई।
0: हाँ
1: देख आमी नहीं भेड़घाट तो होलो।
0: हाँ।
1: और आजकल हम देखू से कि आमचो जन्म बोले हेले भले से लोग मना से।
0: हाँ।
1: नहीं।
0: हाँ।
1: आगे जो उतर पढ़ते नहीं रहा
0: नहीं रहा
1: मानतर एवे जो समय ने भी देखो से सपाए घर जो माए बाप आप लोग पीला झीला मन के हम लेका हो कि लेकी हो।
0: हाँ।
1: सब को पढ़ा तो हिसाब नाला से स्कूल बाटे।
0: हाँ।
1: नहीं।
0: हाँ।
1: और सपाए स्कूल बोल पढ़ा तो।
0: हाँ।
1: नहीं मानतर का है कि स्कूल पढ़ा लो ने हम मन चो जो शिक्षा दीक्षा हो से तो हूँ आजकल जो जो नवी नया शिक्षा नीति 2020 जो मिली से उन हिसाब में देख लो नहीं कहा है कि आगे आम चो नन नन रलो बेरा नहीं बोलते रहे नौकरी का जो पढ़ते रहे।
0: हाँ।
1: और ज्यादा पढ़ने नौकरी मिल रहा है मानता एवे जो समय बदल दी से एवे जो समय ने शिक्षा बोलो ने हूँ शिक्षा आसान हुए से जो था ने पीला मन के काफी पुस्तक चो पढ़ाई लिखे संगे संगे पीला मन चो ध्यान हिसाब ने हूँ चो हुनर हिसाब ने हूँ चो रुचि हिसाब ने हूँ उनके काय काय अच्छा लागे से उनके लेख करूँ भाती हम जो गुरुजी बेनजी मना तुम पढ़ा सोत जैसे कि कोनी कोनी पीला मन गाँव तो बाटे खूबे नंगत ध्यान दे सोत कोनी कोनी जो ना कई मूर्ति बनाते का जो उन खरीक लागे से बल तो गोटे आए कि एवी चो जो शिक्षा आसे हुन जो ना एवी चो नुआ नुआ जो जुआ जुआ लेका लेके बना सोत हुन उनके जो हुन सपना दख सोत।
0: हाँ।
1: हुन पूरा होक सके मानतर का है तो जानिस कि आम आजकल हम देखो से कि पढ़ा लिखा जो जुगे कॉलेज पढ़ला से और कई कई डिग्री मन धरला से हुन मन नानी सुनी काम कर तो का तैयार नहीं हो।
0: नहीं हो।
1: हाँ। अंतर का है कि हम के एक उठ के भुलक तो रो है कि सफाई लोग नौकरी कर लो ने बाकी जो दूसरा ठान मना से ने।
0: हाँ।
1: जैसे कि हम सिनेमा लाइन होली।
0: हाँ।
1: कि हम कई बोलो ने कल मशीन बना तो लाइन होली।
0: हाँ।
1: कि कई जैसे ये भी हम कुर्सी टेबल में बसू से।
0: हाँ।
1: हम तो कौन बना दे
0: कौन बना दे
1: बोल तो गोटे। हाँ। है कि सपना दफ्तर सबके अच्छा ऐसे डॉक्टर आए कि मैं फलाना काम करें दे बोलूं मानतर का है कि जैसे बोलूं से मैं डॉक्टर बनूं चाहे मानतर डॉक्टर बन तो का जे जितरो पढ़ाई करतो रहे उतरो आम चलक दिमाग न तो बनूं दे।
0: हाँ। उन बोलो ऐसा उन चुका जो मन परिचय है ने।
1: हाँ।
0: उन मन बोला उनके पास ऊपर।
1: हाँ, हाँ। तो बल तो गोटे आए दादी दी मन कि आप लोग पीला झीला मन के असल ज्ञान दिया तुमन कि हनुमान पढ़ाई संगे संगे और जैसे नौकरी चाकरी नहीं मिली बनलो ने का और दूसर हनुमान चो रुचि चो अनुसार हनुमान के काय चीज अच्छा लागे से उन हिसाब ने उन काम धंधा के बोले हनुमान करुक सको।
0: हाँ।
1: असन कर लो ने कहा है कि हम शिक्षा चो सही कीमत मिले दे।
0: हाँ। है कि नहीं। और आजकल का है कि आम मन चो जो न हो कि सपाई लोग की तो नौकरी मिलते मतलब संभव नहीं हो नहीं सके
1: नहीं सके
0: तो आम के पढ़ाई संग संग असन कई कौशल बल सर ने कौशल शिक्षा हो जन स्वरोजगार बाट जाते रहे तो असन इतने और उनके ध्यान दे ऊपर
1: सत्य बल्ली सुनी आए मैं जो ने भी बल्ले ने नई शिक्षा नीति जो बनली से 2020 हो तो कौशल शिक्षा ने जुगे करुन जोर दिलो रासे कि तुम्ही पढ़ाई जैसन करो निकर लास बल्लो ने नौकरी जरूरी नहीं है नौकरी नहीं मिल लोन बोले तुमसे हाथे गोटक रोजगार होते जरूरी है ये गोट के ध्यान दिन वाती ये भी चो जो मनुआ जवान जवान लेका लेकी बना थोन मन पढ़ाई लिखाई करो और शिक्षा से सही उपयोग करो।
0: हाँ।
1: हाँ। तो ये तो होली गोट।
0: हाँ।
1: हम चला गया और बोले जहाला बना से तो के बोले सुनो
0: आल सुन
1: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को

0: घटा कर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा किप्त की, सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस, इंजे 18% की सिक्ता। टैक्स तगा कमी किप्ता, आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे। लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़। ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता। इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
4: तो भाई हाँ, ये तो होली जा हला
5: हाँ,
4: और जे दिन असन आज हमें भेंट वार्ता धरु मिलु से
5: हाँ,
4: नहीं तो ये भेंट वार्ता ने जो ना हमें हाक दिलो से बजातो लोग के
5: हाँ,
4: नहीं
5: हाँ,
4: तो कसन बजातो रहा है कसन उनके सीख तो रहा है। ये गोट के धरु मिला से संतोष संदेल और भेंट करे सत बलि सिंह का से तो एवं जो गोट बात के सुनू
5: हाल सुन
4: हाले।
6: गांवकारी भाई बहन मन, आज मैं भेंट घाट करने से बजाओ कलाकार भाई श्री संतोष चंदेल संगे
7: नमस्ते।
6: तो चंदेल भाई, सबसे पहले मैं आप से मैं ये जानना चाहूं
7: जी
6: कि आप जैसे वादन के जो क्षेत्र में हैं
7: जी
6: कैसे आना हुए, कब आए?
7: हाँ, ये ऐसा है, जब मोर यहाँ पिताजी बचपना में गांव में हमारे यहाँ पंडित लोकेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो रहने वो बहुत बढ़िया नाटक और लीला मंडली के और भजन कीर्तन के कलाकार ही ने, तो उकर संग में हमारे यहाँ पिताजी पहले ढोला तबला बजाए।
6: अच्छा,
7: तो मैं भी साथ ही साथ में उकर साथ साथ में रहा। तो अब धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे वो लोग गाना बजाना करें तो मोरो जो मन है वही तरफ से फिर ललक बढ़ गए और फिर वो बस वहीं से फिर गुरु जी मन के शरण में आना शुरू हुए और फिर हमारे यहाँ पिताजी हैं और वो अपने गुरु जी पंडित लोकेश्वर प्रसाद शर्मा जी, ये दोनों के सानिध्य में आए बाद में फिर ढोलक वादन शुरू हुई।
6: अच्छा, तो संतोष भाई
7: जी
6: ये बताओ कि जैसे आप शुरू में जैसे ढोलक
7: जी
6: में ही आरंभ किए
7: जी,
6: तो उस समय आप मतलब आपका उम्र जो है
7: जी
6: कितना?
7: हाँ, वो समय मैं 7 साल के रहा हूँ।
6: अच्छा,
7: तो उसी समय से ही ये ललक हो गई रही से।
6: अच्छा,
7: गांव में जैसे राम सत्ता है और नाचा मंडली है तो मैं बाजा बाजा बजाए बर जाए बाबूजी हमारे यहाँ पिताजी।
6: अच्छा,
7: पनवानी वगैरह में तो मैं भी साथ में रहा, तो उसी समय से फिर थोड़ा थोड़ा हाथ में टोप टाप मतलब थाप बजाना शुरू हो गई ने, तो धीरे धीरे करके फिर जब देखे न कि पिताजी कह रही ये तो थोड़ा बहुत हाथ पर चलाना शुरू कर दिए हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा हाथ रखवाना शुरू करे।
6: अच्छा,
7: और रखवाए के बाद में फिर बजाना शुरू हो गए।
6: अच्छा
7: हाँ,
6: तो ये जैसे कोई भी कला हो
7: जी
6: जब तक हम अभ्यास नहीं करो
7: जी
6: हाँ, तब तक तो
7: हाँ,
6: मुश्किल है आगे।
7: जी जी, अभ्यास जरूरी जी,
6: जरूरी है कि नहीं?
7: जी हाँ।
6: तो जैसे छोटे समय से ऐसे आप अभ्यास घर में करते रहे हो?
7: जी जी, वो अभ्यास जो है साथ में आप घर में ढोलक तबला रहे तो धीरे धीरे करके फिर वो खाली समय में गुनगुनाना और गुनगुनाते हुए फिर हाथ पैर अभ्यास तो करते थे हाँ, करते रहे ना वो वैसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके हो

0: ऐसा
1: जी।
0: अच्छा तो संतोष भाई हम बात तो करवो
1: जी,
0: आप जैसे सबसे पहले जैसे आप बोले
1: जी
0: कि कहीं रामायण में
1: जी
0: वहाँ बजाए होंगे
1: जी जी,
0: तो उस समय का एकाध कैसे बजाए, कैसे सीखे, उस समय का कोई हाँ, बजा के सुना
1: जी। जैसे उस समय एक राम सत्ता वगैरह जैसे कि बोलते थे वो लोग, तो उस समय वो गाना में वो राम सत्ता नाचते थे, तो उस समय ऐसी ये गाते थे, तो उस समय वो बाजा जो है पहले बजाते थे वो वाला बाजा बजाना है ना।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: वही
1: हाँ, तो उसमें ये जैसे बोलते थे पांव में घूर।

0: ऐसे ढंग से ये पुराना वो पहले चलता था जी।
1: अच्छा
0: जी हाँ।
1: तो चंदेल भाई आप ये बताओ, जैसे कि आप शुरू शुरू में सीखे होंगे
0: जी,
1: फिर पढ़ाई लिखाई किए होंगे।
0: हाँ पढ़ाई की।
1: आप तो सर्विस भी कर रहे हैं
0: जी। हाँ।
1: तो उसके बाद सीखने के बाद जैसे इस कला में हैं
0: जी,
1: तो आप कुछ मतलब कोर्स भी किए होंगे
0: जी। हाँ ये में कोर्स जो है लोक संगीत में कोर्स करें।
1: अच्छा।
0: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से 2 साल के द्विवार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम करें, तो उसमें ये जो है ढोलक जो है ये लोक संगीत के खास करके ये प्रमुख वाद्य में गिनती आते हैं। जैसे मादर है और तुड़बुड़ी है और बांसुरी है ना, वो और आपके कहते थे मृदंग है, तो उस ढंग से येहू जो है ढोलक जो है ना अच्छा एक लय वाद्य में आते हैं, तो ये जो है बढ़िया अच्छा लगे।
1: तो आप ये बताओगे जैसे कि उसमें कोर्स में तो कुछ उसका कोई मात्रा या कोई ताल?
0: हाँ ये ताल तो है, हर जो ताल जो है हर लोकगीत में कोई ना कोई ताल बसते है, तो है ही। जैसे अब हम लोकगीत में जमारा गाथन है, तो जमारा में 8 मात्रा के कहरवा ताल बसते हैं, है ना।
1: अच्छा।
0: और जैसे हम कोई कर्मा गाथन, कर्मा में 6 मात्रा के दादरा ताल बसते हैं। ऐसे ढंग से हर लोकगीत में ताल जो है बिल्कुल फिक्स रहते हैं।
1: अच्छा। अच्छा संतोष भाई ये बताओ, जैसे कोई कोई भी जैसे गीत है
0: जी,
1: कोई भी हमारे पारंपरिक गीत है
0: जी,
1: हमारे गांव के लोग तो जानते नहीं
0: जी
1: कि केवल बजाते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन उसमें एक कौन सा ताल है?
0: हाँ,
1: है?
0: जी
1: कौन सा राय तो पता नहीं होता
0: है ना, है ना।
1: तो आप कोई भी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत के
0: जी
1: जो वाद्य है
0: जी,
1: वो बजा के आप बताओ कि वो कौन से ताल में बज रहा है।
0: हाँ ये बात है ना।
1: हाँ,
0: हाँ जैसे कि

0: ये जो अभी बजाए हवन, ये जो है जमारा पार बोलते हैं गांव में।
1: अच्छा,
0: तो ये है आठ मात्रा के बोल में है।
1: अच्छा, आठ मात्रा के बोल में है।
0: ये आठ मात्रा के धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, ऐसे ये जो है ताल में बसते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वैसे ही ये जो अपन कर्मा में है, कोई भी जैसे कर्मा जो गाथन अपन, तो वो में दादरा ताल बसते हैं।
1: तो संतोष जी ये बताओ, जैसे कि अभी आप वो गा के सुना है
0: जी,
1: और बजाए भी, और उसमें बोले कि मात्रा कौन सा बोले,
0: ये कहरवा है,
1: कहरवा आठ मात्रा
0: जी।
1: तो जैसे आठ मात्रा है, उसको बजा के कैसे गिनते हैं आप, बजा के थोड़ा बजा के उसको गिन के बताइए कैसे आठ मात्रा
0: जी।

0: अच्छा ऐसे मात्रा
1: जी जी
0: हाँ। क्या जैसे आपके कोर्स में जब पढ़ाई किए होंगे
1: जी
0: तो मतलब ऐसा ही मतलब सीखते होंगे?
1: हाँ वहाँ तो अब ढोलक वादन नहीं सीखा हुए, लेकिन ये जो है ना ये लोकगीत पारंपरिक, ये पारंपरिक लोकगीत में ये जो जब कोई व्यक्ति शास्त्रीय संगीत जब सीखते हैं जैसे तबला वगैरह जैसे तबला वादन जब सीखते हैं गुरुजी के पास में तो पता चलते कि हाँ ये जो है
0: इस मात्रा
1: हाँ इस

0: मात्रा में बज रहा था ये लोकगीत, ऐसा है।
1: अच्छा,
0: और गांव में तो ऐसे कोई भी लोकगीत में कोई मालूम नहीं रहता नहीं, कि ये कौन से ये जी कौन से ताल में बजा रहे हैं, हम ऐसे कहे को कोई पता नहीं रहा।
1: अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जैसे शास्त्रीय संगीत में अगर कोई आप वादन कला सीखते हैं
0: जी,
1: तो अगर कोई भी गांव के कोई भी पारंपरिक गीत अगर बजाते हैं सुनते हैं
0: जी,
1: तो जो कोर्स किया हुआ आदमी वो बता सकते हैं,
0: बिल्कुल बता सकते हैं कि ये अमुक ताल में बजत
1: है। हाँ। अच्छा चंदेल भाई, मैं एक हमारे बस्तर के गीत गाता हूँ
0: जी। हाँ।
1: वो के बजा के आप ये बताओ कि ये कौन से ताल कौन से मात्रा में बजा
0: जी, जी जी जी
1: ले जा ले जा ले जा।

0: मैं जो गाना गाया तो इसमें कौन सा मात्रा मजा कौन सा?
1: ये में 6 मात्रा के दादरा ताल बजा त्री लाएगा।
0: अच्छा
1: हाँ, ले जा ले जा ले जा ले जा पापा ले जा बैकुटी, ये जो गाना गाया हो मैं गा के एक बार और करो तो मैं बता देता हूँ।
0: ऐसा हाँ, तो इसको आप जैसे मात्रा में जैसे बजाए उसको हाँ, फिर गिन के आप बता के बताइए।
1: हाँ, आप गाना गायो गाओ ना मैं तो फिर गिन के बता देता हूँ।
0: ले जा ले

0: ज्यादा ये जो है ना अभी जो बजा रहे हैं ये है आठ मात्रा में आ है।
1: अच्छा।
0: और एक जो लग्गी बजाते रहे छह मात्रा करके ओकर जो है ना पूर्ति करत रहे।
1: अच्छा।
0: छह गुणित चार
1: चार
0: छह चौक चौबीस और आरती है चौबीस ऐसे करके आठ मतलब कहरवा के आठ मात्रा के तीन आवर्तन और दादरा के चार आवर्तन।
1: अच्छा।
0: छह गुना चार छह चौक चौबीस
1: चौबीस
0: ऐसे करके ये जो है ना ये बजत रहने।
1: अच्छा। तो हाँ। तो संतोष भाई ये जैसे बताओ कि ये सब तो बिना अभ्यास के
0: बड़ा संभव नहीं है भाई, अब कठिन चीज है।
1: हाँ। हाँ। तो जैसे अभ्यास के लिए
0: जी
1: मतलब कितना टाइम आप देते थे? कब कब अभ्यास करते थे?
0: अभ्यास के लिए मैं कम से कम अगर हम एक शास्त्रीय संगीत के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कम से कम पांच घंटा तो जरूरी रियाज होवे।
1: अच्छा। चौबीस घंटा में पांच घंटा?
0: बिल्कुल पांच घंटा कैसी भी करके होवे और एकर बिना ये सब चीज संभव नहीं रही सब है। हल्का पुल्का और बड़े बड़े उस्ताद गुरु जी मन तो फिर वो आठों घंटा करते हैं, मन बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, लेकिन सिंपल से सिंपल जो है वो पांच घंटा तो जरूरी है।
1: अच्छा।
0: है ना। और बाकी जो ना लोक संगीत है तो लोक संगीत में सबसे ज्यादा सुंदर माध्यम होते जैसे कि कोई सार्वजनिक काम होते जैसे कि मान लो जाए कोई तीज पर्व होते हैं तो वो जगह में ग्रुप में जो चिल्ला के गाते बजाते हैं तो वो में बहुत जल्दी सीखते हैं और वो में घंटा या मिनट के सवाल पता नहीं चलते तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो गांव में जो पर्व भी होते तो कम से कम चार पांच घंटा हो जाते
1: होते
0: हैं। तो वो में अगर कोई धुन में लगे हैं तो वो अगर मन में है तो वो चार पांच घंटा बिताते हैं, मतलब ये मान के चलते हम कि कम से कम चार पांच घंटा का अभ्यास हुआ त्री।
1: तो ऐसे जैसे जगह में हम जाके अभ्यास करवो
0: जी
1: तो मतलब समय के पता नहीं चले।
0: जी जी
1: है कि नहीं?
0: हाँ, चार घंटा पांच घंटा ज्यादा भी हो सकते हैं। है ना। जी।
1: और जैसे अभ्यास जो करे के मतलब टाइम है
0: जी
1: मतलब अगर सही टाइम मतलब हम शास्त्रीय संगीत में करें तो कौन सा टाइम ठीक रहता
0: है? हाँ, वो शास्त्रीय संगीत में जैसे कि समय जो है जी वो में जैसे सुबह अपन ब्रह्म मुहूर्त में जो है समय सुबह सुबह के समय।
1: अच्छा।
0: मतलब पांच बजे से लेकर के छह सात बजे वाला जो समय है वो बहुत बढ़िया रहते हैं।
1: अच्छा।
0: वो समय में बढ़िया मन एकदम शांत रहते हैं और कोई भी जो चीज है वो बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वो समय अच्छा होते हैं एक। और दूसरा जो समय है अपन शाम के समय है, शाम के अपन कहीं भी अपन घूम फिर के आए छह बजे से कम सात आठ बजे साढ़े आठ नौ बजे तक के अपन वो में भी अभ्यास किए जा सकते हैं और बढ़िया रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और दूसरा ये तो नियम के बात हो गए, लेकिन संगीत जो है एक ऐसा माध्यम है जिसमें नियम के कोई बंधन नहीं हो। जब मन अच्छा लगिस
1: तब
0: और मन जमगे सुर जमगे कि हाँ चलो थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो वही समय ही अच्छा रियाज हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: ऐसे है।
1: मतलब समय का कोई
0: कोई बंधन नहीं है जी।
1: जब
0: मन लगे तो मन लगे। हाँ जी।
1: हाँ जी। तो संतोष भाई आप ये बताओ कि जैसे अभी आप भी जो आपका अभ्यास है
0: जी
1: अभी भी निरंतर होते?
0: हाँ होते जी बिल्कुल। अच्छा। ना अभ्यास होते जी।
1: अच्छा
0: जी।
1: हाँ जैसे शास्त्रीय संगीत के लिए अभ्यास जो करे बर है
0: जी
1: तो उसके लिए ऐसे संगत की भी जरूरत पड़ते कि ऐसी
0: ओ में जब ना रियाज करे में संगतकार की कोई जरूरत नहीं पड़े जी।
1: अच्छा।
0: संगतकार की जरूरत एकर सती नहीं पड़े काबर की बोल मात्रा जो है बोल मात्रा एक एक ठो निकालने में अभ्यास करे में थोड़ा से व्यक्तिगत मेहनत करना पड़ते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जब बोल मात्रा जो है अच्छा हाथ में बैठ जाते हैं तब फिर ओला ताल में बिठाए बार फिर लहरा वाला की जरूरत पड़ते हैं।
1: अच्छा।
0: ऐसे हैं। अब जैसे मान लो जाए एक ठो तबला के बोल है धतिन धा तिरकिट धाती धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा ये हरे तबला के बोल। अब एला हम जिसे अभ्यास करबो तो अभ्यास में ये में एक साथ शुरू करबो तो एक साथ तो गुरुजी बताई वो तो तुरंत हाथ में नहीं बैठे तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा जैसे धतिन धा तिरकिट धाती धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक एक एक मात्र कर करके निकालते हैं, उकर बाद में जैसे कि फास्ट करे बार अभ्यास है तो एक एक अक्षर फिर ओला घिसना पड़ते हैं,
1: अच्छा।
0: अभ्यास करना पड़ते हैं, जैसे धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाति धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाति धा तिर फिर यही स्पीड धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाति धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाति धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाति धात ऐसे करके ये लय पकड़ते हैं जी।
1: अच्छा
0: जी,
1: यानी एक प्रकार से संतोष जी कहें तो बहुत बारीकी चीज है,
0: जी
1: बारीकी चीज है कि नहीं, मतलब इसमें एक शांत से बैठने की
0: जी जी
1: आवश्यकता है।
0: हाँ, कहे का मतलब वही है कि जब पहली बोल घिसा जाते हैं, बैठ जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, हाँ अब पूरा ये कोई भी ताल के लायक ये मात्रा बन चुके हैं, तब फिर थोड़ा बहुत वो लहरा में फिर बजाय बनते जी।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो संतोष भाई जैसे आप तो इतने अभ्यास के बारे में, चलिए हम आपसे अभ्यास करते हुए मतलब आज की जो बातचीत
0: जी
1: खत्म करते हैं
0: जी।
1: चलिए आप कोई चीज अभ्यास करते हुए बताइए
0: जी। इसमें ये अभ्यास है दादरा के।

0: तो उठवा भाई
1: हाँ।
0: कितनो बढ़िया ये सांगला संतोष चंदल भाई
1: हाँ।
0: ये बजने रहला ने तबला
1: हाँ।
0: वादक
1: हाँ।
0: और एमन संग भेट करते रहला बलवीर सिंह कच्छ तो एमन जो गोड बात के सुन जो बोले नुआ कलाकार भाई में तबला सीखुक चाहसो तो हम उनके बोले सीख तो काजे होता सांगला ने
1: हाँ।
0: तो ये खूब निगत गोट रहे और असने हम चला गए समय बोले आसे
1: तो गीत मन
0: वाला
1: तो हाँ तो इस समय ने गीत तो हम बजाऊ दे ची मैं तो और गीत कुरिया मुझे ना के पाँच साल में तो हाले गीत आसे हाले गीत के सुन
0: हाले तेरे

0: तो ये गीत रहे बलवीर सिंह का चरण मंच संगवारी मंच गालोगे तो है भाई गीत तो खूब नमत लागली
1: लागली हां
0: असने अंच लगे और बल गीत मना से तो एक बलि सुन
1: अल सुन

0: तोर है भाई
1: हाँ
0: इमन के सीता निस्का
1: हाँ इमन के गाँव रोड राजश्री देव और उन मंचो संगवारी मन
0: हाँ मानता राम चला के गोटक छत्तीसगढ़ी गीत वाले आस
1: हाले हे गीत के वाले हलम सुनने
0: हाले

0: तो ये तो होली छत्तीसगढ़ गीत
1: हाँ।
0: अरे के गाँव तेरा ममता चंद्राकर और मंजू संगवारी में तो ढोया भाई
1: हाँ।
0: देख मोटा लोटरा के मैं सकने से अले तू विदा धर
1: जत पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतोर सपा गांव करिया दादा दीदी सियान सजन औ संगजोरिया संगवारी मन के मैं ढोया
0: और मैं झुनकी
1: हम दोनों करुण से
0: जुहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मांचो गांव। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे है। कार्यक्रम बालीफुल में प्रस्तुत है जलधर और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

कार्यक्रम बालीपुर में आप सुन रहे थे जलधर और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम का रेडियो रिपोर्ट। संचालन व संपादन होगा दुर्वासी ठाकुर का। प्रस्तुति होगी चंद्रजीत ठाकुर की।

0: आज दिनांक 21 जून 2026 को विश्व योग दिवस के अवसर पर जगदलपुर के विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास किया गया। इसी क्रम में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री किरण सिंह देव शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में महापौर जगदलपुर श्री संजय पांडे, अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, आईजी बस्तर श्री सुंदर राज, पीजी आईएफएस सुश्री स्टालियो मंडावी, कलेक्टर बस्तर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस विभाग और नगर सेना के जवान एवं बहुसंख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य वर्धक योगासन, प्राणायाम एवं विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर हमने योग प्रशिक्षकों से बात की।
1: तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं योग प्रशिक्षक मंजू लुक्कर जी। तो मंजू लुक्कर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग दिवस 21 जून को मनाने का क्या महत्व है या फिर क्या उद्देश्य है?
2: देखिए, आप मैं बताना चाहूंगी कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। आज के दिन बहुत बड़ा होता है, इसलिए यह योग दिवस के लिए निश्चित किया गया है। और योग सभी चाहेंगे कि एक बड़े दिन की शुरुआत स्वस्थ तन मन और धन के साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में इस दिन को बहुत प्रमुखता से माने, सभी लोग मना रहे हैं। और यदि सभी लोग निरंतर योगाभ्यास करते रहेंगे, योग से जुड़े रहेंगे, तो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के मालिक जरूर बनेंगे।
1: जी, और आज तो हमारे जगदलपुर में भी धूमधाम से योग दिवस मनाया जा रहा है। और
2: मैं अभी बटालियन से योग करा के आ रही हूँ, 5वीं बटालियन में योग करा के आ रही हूँ और बादल में भी योग करा के आ रही हूँ अभी।
1: जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा था?
2: बहुत ही बढ़िया, और इतनी जागरूकता है। अभी तो पतंजलि परिवार के द्वारा भी इतनी लगातार इतनी मेहनत की जा रही है जगदलपुर शहर में। हमारे यहाँ आज कम से कम 70-80 प्रशिक्षक हैं जो अलग अलग जगह बैठ के आज योग करा रहे हैं। महिला पतंजलि के भी बहुत सारी साधिकाएं अलग अलग जगह योग कराने गई है।
1: तो आप भी पतंजलि से जुड़ी हुई है?
2: हाँ जी, मैं पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ।
1: तो जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं उनको, सभी हमारे श्रोतागण को सबसे पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगी, निरंतर योग करें, निरोग रहें, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन को यदि सुंदर रखना है, सजाना है, तो योग नियमित रूप से करें। कहते ना, योग जीवन का सुंदर आकार बनाता है, ना समझ को समझदार बनाता है। प्राणायाम से रिदम में चलती है सांसें, योग मनुष्य को स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराता है। इसलिए योग करेंगे, रोज करेंगे।
1: जी, योग, मुझे तो योग के ऊपर इतनी बड़ी बातें बोलनी तो नहीं आती, बस मुझे आता है योग करे, योग रहे निरोग,
2: रहे निरोग। हाँ।
1: जी, तो इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया।
2: धन्यवाद, धन्यवाद
1: जी। अब हमारे साथ एक और योग गुरु जुड़ चुकी हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज योग दिवस कैसे मनाया। तो सबसे पहले रेणु अग्रवाल जी, आपका स्वागत है।
3: मैम, आपका भी स्वागत है और मेरे सभी सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत।
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आपने इस दिवस को किस तरह से मनाया?
3: बहुत खूबसूरती से, सुंदर तरीके से मैंने आज योग दिवस अपने शिक्षक साथियों के साथ, जो मेरे साथ में महिलाएं और लड़कियां का योग कर रही हैं, उनके साथ मनाया। पूरा जगदलपुर ही योगमय हुआ हुआ है एक तरीके से कहिए। और योग तो एक ऐसी चीज है कि ये जैसे जीवन से जुड़ना है, योग का मतलब ही है एक जुड़ाव। तो हम संस्कारों से जुड़ते हैं, शरीर और आत्मा से जुड़ते हैं। तो हम लोगों ने उसको मन शुद्धि के लिए और मन की शांति के लिए, निगेटिविटी को दूर करने के लिए और कैसे स्वस्थ रहा जा सके, उन सब आसनों का समावेश करके योग दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया है।
1: जी जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि जगदलपुर में विभिन्न जगहों पर भी प्रशिक्षण देती हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा है, जगदलपुर में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, क्या वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या फिर थोड़ी उदासीनता रहती है?
3: मोस्टली तो मैं जो अनुभव करती हूँ, आजकल सभी योग के प्रति बहुत ही जागरूक है। योग के प्रति जागरूक होने का मतलब है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को जन्म देता है, और स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र का एक प्रभावशाली बंदा बनता है। तो आजकल सब समझ गए हैं योग की महत्ता को, उसकी गुणवत्ता को, तो बहुत लोग बढ़ चढ़ करके ही योग में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं कि लोगों को योग के प्रति उदासीनता है।
1: जी, मतलब जगदलपुर में भी अच्छा रिस्पांस रहता है लोगों का।
3: बहुत बहुत सुंदर रिस्पांस है।
1: जैसे कि कुछ श्रोता, हमारे श्रोता जो है जो आपको सुन रहे हैं, उनमें से कुछ श्रोता योग के प्रति जागरूक हैं और कुछ श्रोता योग के प्रति उतने जागरूक नहीं है, योग को उतने सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो जो गंभीरता से नहीं लेते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा योग के महत्व को बताएं और बताएं कि वो क्या लाभ ले सकते हैं योग से।
3: देखिए, वो लोग उदासीन हैं क्योंकि वो अभी उसमें शामिल नहीं हुए। एक बार वो शामिल हो जाएंगे ना तो उनको एक डिफरेंट ही आयाम मिलेगा, ऊर्जा का, एनर्जी का, हेल्थ केयर के बारे में जागरूकता, उनका डाइजेशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मानसिक संतुलन। योगा बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लोगों से आचार व्यवहार करने के में भी उनमें एक प्रबल उत्सुकता रहती है। तो शारीरिक, मानसिक सभी तरीके से योग का बहुत बड़ा योगदान है। एक प्रकार से ऐसे

0: समझिए कि घर में लाइटें लगी हुई हैं लेकिन बिजली के तार भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें जब तक करंट का प्रवाह नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं जलेगी, ऐसे ही जब तक ये उदासीन हमारे बहन भाई योग में नहीं शामिल होंगे, उसके करंट का स्वाद नहीं लेंगे, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा कि योग क्या चीज है।
1: जी जी, तो इसी संदेश के साथ हम यहाँ पे आपसे जो मुलाकात हुई है उसको समाप्त करते हैं। और आपने अपना समय दिया रेणु जी, क्योंकि आज व्यस्तता बहुत ज्यादा है आपकी, प्रशिक्षण देना है और योग दिवस सेलिब्रेट भी करना है, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच
1: जी।
2: इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक श्री किरण सिंह देव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने नियमित योगाभ्यास से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को निरोगी जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्ति का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम से पहले विधायक श्री किरण सिंह देव और महापौर श्री संजय पांडे ने स्टेडियम परिसर में एक पेड़ माँ के नाम पर पौधारोपण भी किया। इस दौरान हमने कुछ प्रतिभागियों से भी बातचीत की।
1: तो अब हमारे साथ एक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आपका नाम?
3: भूपेश गावड़े हैं।
1: भूपेश गावड़े हैं, तो आप बताइए, आप यहाँ योगाभ्यास में भाग लिए हैं, आपको कैसा लगा?
3: मेरे को बहुत अच्छा लगा योगाभ्यास में भाग लेके।
1: और आप कब से योगा कर रहे हैं?
3: मैं तो जब से स्कूल समय से ही था तब से योगा कर रहा हूँ। मेरे स्कूल में सिखाया जाता था तब से नियमित रूप से मैं योगा कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो योगा करके आपको कैसा महसूस होता है? कुछ आपको अपने शरीर में लाभ महसूस होता है?
3: हाँ, योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है और तंदुरुस्त रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। बहुत लाभ मिला मुझे योगा करके।
1: अच्छा, और जो श्रोता हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी को योगा करना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ और सेहत रखता है और जीवन को बढ़ाता है थोड़ा।
1: जी, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया। अब हमारे साथ एक और प्रतिभागी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो योगाभ्यास कर रहे हैं। आपका नाम क्या है?
4: जी, मेरा नाम राजेश साहू है।
1: और आप कब से योग कर रहे हैं?
4: जी, जब मैं अपने कॉलेज समय में था, जब हमारे कॉलेज में योगा सेशन होता था, उस समय से मेरा योगा करना शुरू हुआ था, तो अभी तक कर रहा हूँ।
1: अभी तक कर रहे हैं, तो आज का योगाभ्यास कैसा था?
4: जी, बहुत अच्छा था। यहाँ के जो योगा टीचर थे वो अच्छे से कराए और करने के बाद सुबह सुबह अच्छी तंदुरुस्त महसूस हुई।
1: जी, तो कुछ हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी को योगा करना चाहिए, क्योंकि करे योग रहे निरोग।
1: इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया।
2: तो यह थी आज दिनांक 21 जून 2026 को इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रेडियो रिपोर्ट। संचालन संपादन था दुर्वशी ठाकुर का, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या एवं न्यूज 8:09 क्रमशः हम कुछ पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पे

0: बेतिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में

अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए अब सुनते हैं कुदरत फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल मजरू के हैं और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत है जगदीप सिंह एवं चित्रा सिंह की आवाज में, फिल्म साथ साथ से। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: और शीश अनी ने जो अपने पहले दो ओवर किए थे, उन्होंने 2 रन देके 2 विकेट्स जो अर्जित करी थी, उसका प्रेशर अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर दिखती हुई है। कैप ने अभी तक 4 रन बनाए हैं 10 गेंदे खेलने के बाद, और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही है अगली बॉल और मारने की कोशिश, लेकिन फिर नाकामयाब रही। स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपने अपने छोर बदलने का। ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका।

0: के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है, क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा,
0: अभी 3 हफ्ते हैं। और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
3: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
1: कितने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को?
4: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
1: यहाँ

0: मैच के नीचे भैया ना दूसरे गाय के नीचे
1: हम समझ गए तुम गेहूं बेचना ही नहीं चाहते यहाँ बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो
2: बेचना न होता तो इसे साथ ये गांव गांव न घूमता
3: अरे लाला छोड़ गाय को भैया मुझे थमा ये ले 30 रुपए नगद है ला रस्सी दे अरे खाटा क्या सोचा ला
2: रस्सी गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई
3: पैसे दे रहे हैं
1: मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ बोल कह जाता है तुम चुप रहो
4: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है
1: आइए आइए मुख्तार साहब सलाम
3: सलाम
4: सलाम
1: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है मैंने 32 रुपए दाम लगाया लेकिन ये हामी नहीं भरता
3: हुजूर 34 तो मैं दे दूं ये बेचने वाला तो बने
4: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है
3: हुजूर ये देखिए
4: गर्दन
3: भारी पुट्ठे और दूसरे भरे हुए थन हुजूर
4: बाबा पर बछड़ा भी सुंदर है
3: हुजूर दाम लगाएं गाय आपकी
4: क्या नाम है तुम्हारा कहाँ से आए हो
3: रहमान हुजूर पचौली में रहता हूँ पास के गांव में
4: दूध देती है
3: हाँ हुजूर एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे
4: क्या दाम मांगते हो
3: 50 रुपए हुजूर
4: हमें तो 35 का माल जचता है
3: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर
4: देखो अब सौदा तय करने की बात करो हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे बोलो हाँ या नहीं
3: क्या कहे हुजूर चलिए गाय आपकी हुई आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता
4: हूँ
3: चलिए
4: रहमान एक बात बताओ तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी
3: हुजूर आप हिंदू हैं इसे लेकर आप पालेंगे इसकी सेवा करेंगे ये सब कसाई हैं इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता आप बड़े मौके से आ गए हुजूर नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर
4: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी
3: थी सरकार बड़ी विपत में पड़ गया हूं रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर
4: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे
3: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता
4: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है
3: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता सरकार
4: तुम फिक्र मत करो इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी
3: हुजूर एक कर्ज और है
4: क्या
3: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा इसे मारे पीटे नहीं हुजूर
4: अरे तुमसे कहा ना है तुम अब फिकर मत करो हाँ
3: जी सरकार
4: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है
3: जी सरकार
4: आ जाओ
3: जी
4: ये गोशी इस सामने वाली गौ का घर है आ जाओ आ जाओ
3: जी
4: बस यही बांधो खूंटे से हैं और देखो इस खूंटे से बच गए हो
3: जी बहुत अच्छा बहुत साफ कोठरी है हुजूर मच्छर कीड़ा भी नहीं है
4: ये लो रुपए गिन लो
3: जी 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 ठीक है सरकार ठीक है
2: अच्छा अब चलो सलाम हुजूर
4: अजी सुनती हो

0: कहाँ हो?
1: आई। हाँ कहो।
0: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
1: क्या?
0: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
1: सच?
0: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय सादे की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
1: वो कैसे?
0: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
1: ओ।
0: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
1: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
1: गौ गाय घर में बंधी है ना।
0: आओ चलो दिखाते।
1: चलो।
0: अरे आओ
1: चलो चल कर देखे।
0: मुसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
1: अच्छा चलो।
2: सलाम हुजूर।
0: सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
2: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
0: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
2: बजा फरमाया हुजूर।
0: कैसे आना हुआ?
2: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी है, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
0: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
2: जी हुजूर,
0: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
2: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
0: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
2: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
0: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
2: ठीक है सरकार, ठीक है।
0: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
2: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
2: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
2: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 है।
2: 180?
0: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली के, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
2: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
3: छोड़ मुझे। चल
4: क्या चल
3: क्या
4: बना रहा है? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है चल।
3: चल रहा हूँ भाई, थके तो ना दो।
4: अरे अच्छा अच्छा जट।
5: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
0: लाओ रुपए कहाँ है?
3: हुजूर पूरी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ है? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
0: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
0: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उद्र कर रहे हो कि
3: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
0: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
3: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
0: ठीक, अब तुम जा सकते हो
3: हुजूर। भाई

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, ये समझ जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी

0: हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत ही पड़ती। हुजूर
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो?
0: हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैसूर की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान, बकलम खुद। ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम
0: सलाम।

0: हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
1: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
0: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
1: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
0: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
1: सुनो।
0: हाँ बोलो।
1: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
0: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
1: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
0: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
1: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
0: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मुहलत मांग लूंगा।
1: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
0: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
1: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती
0: और
1: है।
0: खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
1: बस ये समझ लो कि इतनी दुश्मनों से बची तो फसल,
0: नहीं तो
1: फैसला।

0: Μάτια πρασιάδα. Όποια όγα, χούντα, του εις που σημερκώ αθάνκας. Γιατί την καλή έννοια την έλεγε. Για με ρε Αλλά. Κάτσου τζο.
1: Κάτσου. Όχι. Ρουπέλε κατένα ρε ίτσαντε.
0: Ναι.
1: Μιάτ καλ γουδαρ γαϊ. जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना
1: भैया। अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया, मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा हूँ।
1: चलता है या मैं? चल चल चल सरकार बुला। चल
0: चल हुजूर, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
2: क्या सब ऊख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता।
2: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिशी कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
2: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
2: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहां ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
2: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
2: हाँ रहमान, हाँ।
0: दिल्ली सरकार? नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
2: कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
2: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
2: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर
2: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार
2: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
2: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
2: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहली मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर।

मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज,

एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआर पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। कार्यक्रम दौना में प्रस्तुत है कलेश्वरी जैन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

सुंदर पांव में खड़ा हुआ जट कला में गटर माला हाथ में कमंडल लेके प्रगट हो गए वो जगह सुंदर देखे वेद व्यासला और सुंदर आसन में बैठा रहे बहु विधि से पूजा करे और चरण ल धो के पीवे और सब बने बने बेटा का बने बने महाराज मोर दुख ला तो ते जाना थसते तो अंतर्यामी यश प्रभु 12 वर्ष के वनवास ला काट डरे हम 1 साल के अज्ञात वनवास सब बाँचे हवे और कहाँ जावाऊ और कहाँ काटाऊ कई के सुंदर वेद व्यास ला बतावा थे जी बतावे तो वेद व्यास कहे ब्रह्म नगर में जावे धर्मराज वो हतोला आसरा दीर वहाँ के राजा बड़ा

0: सारी चीज ला बता डरिस और बता के कथे नाम लगला रख देता हूँ। धर्मराज ते हाँ तोर नाम लकंक ऋषि के नाम दे दे और ऋषि भेष में जाबे और जोन तोर नाम ब्रह्मनला रही
1: अच्छा
0: भीमसान तोर नाम जयंत रही ते रसोईया बन के जाबे ते अंत जगह काम नियाश रसोईया बन के जाबे तक खाए पी ला भक्कम मिलही कथे नकुल लसेनी बताईस सहदेव ला बाहुक बताईस द्रौपदी ला शैलेंद्री बताईस और ऐसे जाओ कहे काका यार मोला विदा देव कहे यार अंत

0: नगर में वहाँ बताइश काका देखे आओ आओ महाराज आओ आओ कह के और सुंदर आसन में बैठा थे नाम काहे कहे कंक ऋषि काम काहे कहे तो मैं धर्मराज लज्जुआ खेले बर सिखा
1: पासा खेल
0: घुट वाले धोती पहरे बांधे है पागा या हाथ में सब्जी काटे के चक्कू धार के चले गए भीमसन
1: जी
0: और जाके वो बताते कि मैं पांडव घर के रसोईया हरम बनवास हुए है तब महाराज ते मोला आसरा दे दे कहे काका

0: हूँ।
1: हाँ।
0: पांडव के घर में देख रहे हैं हाँ। बनवास हो है तो मैं यहाँ आये हूँ महाराज कहे।
1: हाँ।
0: सहदेव ला पूछते ते मैं गैया चरा था
1: हाँ।
0: मैं बांझ गैया लगला दूध दूह के दिखा दे था वैसन ग्वाला
1: हाँ।
0: वो हुलर रख लीस पांडव घर के कई के काका
1: हाँ।
0: अब द्रौपदी बिचारी हाँ। रानी सुदेशना के घर में जावे
1: जावते
0: रानी निवास में जावे रानी देखते
1: हाँ।
0: बड़ा सुंदर द्रौपदी ला
1: हाँ।
0: पूछते तो नाम शैलेंद्री काम का एक में द्रौपदी के श्रृंगार करत रहे
1: हाँ।
0: वैसने वहू बताइस काका
1: हाँ।
0: वहू ला रानी हर रख ली।

0: वासना मनात रहे राजा हाँ। एक ठन आवे मल दानव
1: अच्छा
0: और दानव आके
1: हाँ।
0: हाथ गोड़ला पीटत बड़ा गर्रोच सनसिन सनसिन सनसिन आए और कोई मोर से युद्ध करने वाला हो तो आ जाओ सामने
1: हाँ।
0: जब गर्राज के वो बोलते
1: हाँ।
0: नगर में मोर चिल्लाते
1: हाँ।
0: और राजा के दरबार में चले गए महाराज कोई तो सभा में मोर से लायक युद्ध करने वाला हो ही
1: हाँ।
0: तो भेजे
1: भेज।
0: जब गरज गरज के बोले काका
1: हाँ।
0: वो समय में राजा विराटलब बताए रहा है कि मैं
1: हाँ।
0: कभी कभी भीमसेन के साथ में कुश्ती घलो लड़ा
1: हाँ।
0: ये बात ला सुने रहा है
1: हाँ।
0: वो तो सुनच रहा है लेकिन कंक ऋषि कथे
1: हाँ।
0: भीमसेन ल टेका देते हैं बड़ा अच्छा होती कथे
1: हाँ।
0: दांत लपीसा थे
1: अच्छा।
0: महाराज महाराज
1: हाँ।
0: ये मलदानों के संग में जयंत हवाई जला टेका देते ते अच्छा होती सोहा कभी कभी भीमसेन के साथ में कुश्ती लड़े
1: हाँ। मल युद्ध करत रही
0: हाँ। ते अच्छा बताए ऋषि महाराज
1: हाँ।
0: जा तो बोला के ले लान हो कहे और जयंत महाराज ला भेजे काका बोलाए पर और दूत जाते और फिर ये जयंत
1: हाँ।
0: काया जी

राक्षस आए हवे और चिल्ला थे मल युद्ध बा कोई नहीं है जैन तब तोला याद करे है कि ये राक्षस ला पकड़ती कई के है जैन थे कहे काका हरदी मिर्च पिसत रहा है या लोटो पोटो हाथ हो रहा है दिन ले हाथ खजवात रहिस रे आज मिल ही मोला लड़े बर कहे हरदी मिर्च लाया और शान डारिस काका रगर

0: खातिर तोर 5,000 थे मैं आगे वहाँ लड़ बे है काका
1: हाँ।
0: दोनों के दोनों खड़े हो गए ते मोर का कर सकबे यार ते मोर का कर सकबे चल हो जा तैयार है
1: अच्छा
0: काका
1: हाँ।
0: वो समय दोनों के दोनों मोल युद्ध भर कुदिन दोनों मैदान में
1: हाँ।
0: और एक दूसरे ला मोर

0: ऐसे दोनों बीच में लड़ाई हो गई के कहा ऐसे अवसर ला पा के राक्षस ला धर के ऊपर उठाई से।
1: अच्छा।

ऐसे काम ला करिस त वहाँ के नगरवासी मन हा। जय हो जयंत महाराज के, जय हो जयंत महाराज के। और बोला ऊंचा कुर्सी और बने आखे आगे मोह मोह नमस्कार भैया कहे, वही राम राम भैया कहे काका। मान सम्मान बढ़ गए ओकर इज्जत राजा के आखी में। और भीमसन बड़ा चले जाते है। अब एक हानि लखावे ते हद्दू हानि लखाही। अब तो

है और हाथी आए है कोई हाथी ल पकड़ ही कई के अब्बड़ राजा देख डारिस कोई खड़े नहीं हुई जैंत ल बलाइस त आधा जन का कहते अब तो राजा के मूड में बैठी है। अब हाथी घला आके अभी चल बिटाई पर ही से अब भीमसेन ला फिर बुलावा भेजिस काका भीमसेन या इसका करना है महाराज ये ला पकड़ के कोई बांध दे ही ते अच्छा होती इस बेका मोर नगर वासी है बांध जाती ये तो कोनो ला घला मारा थे काका भीमसेन फिर चले गए पर के

0: पंद्रह के रावत हम थे ला तो मैं पटक डारे हम ते तो रसम लकोन पूछा है। चुप चाप चल मोर सान, नहीं तो ऐसे मरे मार हूँ तो दांत मात फेकात ले कहे। जब ऐसे बात ला सुन थे तहन हाथी डर गए। वहाँ दे वो का खर रहे थे हाथी ला जुमा डोरी में बांध के।
1: अच्छा
0: भीमे का कैसे भीम

0: के वारे भीमसेन ल कहे जयंत वारे जयंत कहे लान के महाराज का रखूटम बांधिस किसका महाराज हाँ बेटा अच्छा करे कहे और बड़ा सब्बासी देवे का
1: अच्छा
0: और बड़ा सुंदर वही जगह गुजर।

0: शैलेंद्री लेकर थे शैलेंद्री पानी लान दे तो चाय लान दे तो ये ला दे सोला दे मोर भाई आए थे जब शैलेंद्री के ऊपर नजर पड़ी कता की चक्के ते देखते देखते देखते रही गए आँख खुला गे खुला रही गए और कथे शैलेंद्री लनोनी यह कहाँ के हरे सुदेशना
1: कब के आहे
0: कब के आहे नोनी यह बड़ा छुप छुप ले दिखा थे भैया ये है ना द्रौपदी के दासी अवै और वोला बनवास होए हवे त इहा मोर कर भेजे है ये ला अपन बेटी जैसे रखे हैं ये तोर बेटी बेटी ला छोड़ सुदेश ना मोला दे तोर दासी ला यह दासी ला इकनी दिखे
1: नहीं दिखे
0: यह रानी जैसे दिखते हैं भैया ते कैसे कहा था ऐसे बात मत कर ये ला बेटी जैसे रखे हैं ये कर ऊपर छोटे नियत मत कर
1: मत कर
0: तका कथे कका
1: हाँ
0: आदि ते नहीं दे बे ते का कर हूँ बताओ ते जाना थस मोर ताकत लाना मोला ये चाहिए मतलब चाहिए का कहे कका शैलेंद्री ला देख के ऐसे बात ला करते ना तो सुदेशना कथे

0: जिसने की नास कतका होई हाँ। पूरा सोना के लंका माटी में मिल गए भैया
1: आगे में जर गए।
0: ये प्रक्रिया माता समाने ऐसे हाँ। मत कहा
1: हाँ।
0: शैलेंद्री ते मैं तोला में कहा था ये होना ये मतलब होना है
1: हाँ।
0: नहीं तो तोर देश में खलबल करते हूँ इधर के उधर करते हूँ
1: हाँ।
0: राजा एक झन का कर ही पूरा सेना के सेनापति
1: हाँ।
0: वो नगर के वो देश के किच्चा खरे काका
1: हाँ।
0: डर गिस तय भेज दे सदा दिन ब नहीं देवस ते एक राती ब भेज दे नो
1: भेज दे कथे
0: बलि दे दिस बलि
1: हाँ।
0: और चले गए किच्चा खा तब हाँ। वो शाम के बेला में काका
1: हाँ।
0: ये शैलेंद्री तय जाइए थारी के व्यंजन न धर के वो मोर हाँ। भाई की चक के पास में जा
1: हाँ।
0: काका
1: हाँ।
0: सुन के गा ऐसा
1: हाँ।
0: बात ला सुनते बड़ा घबरा जाते
1: हाँ जी
0: वही समय का रबेरा

0: प्रतिशत में तो थारी व्यंजन धरा दे रहे काका अब नी जाहू तेहू नी बने जाहू तेहू नी बने आधा डरा था बल
1: रानी डर के मारे
0: रानी के डर के मारे वो व्यंजन धर के चले गए की चक के भवन में बोला यतका डर रहा है यतका डर रहा है पूछ मत काका
1: अच्छा
0: नाम तो रहा वो मोह

0: फरियाद करते हुए चले गए और किचक देखा देखा था कि नहीं आई कह के गुटी मुटी होके सो रही
1: सूत गए।
0: अब ये सुतलो देख के थारी के व्यंजन लमढ़ा दी से लग उठा हूँ कि नहीं उठाऊ उठाऊ कि नहीं उठाऊ सोचा धपका ये महाराज एक कच का नहीं ऐसे कह दी थारी में व्यंजन लमढ़ा दी कका निकल के दौड़ी से। अब ये दौड़ी लकर धकर रेंगिस बिचारी भागिस अब वहाँ ले अब बेचे महाराज कह के बोली से यार कहाँ जाई सलेंद्री कस लागिस कह के टूंग ले उठ के देखते किचक राजा देखते काका

0: महाराज भागा थस
1: महाराज मैं हयाऊआ हूँ काली अभी मैं कोनल बताए कि नहीं आए हूँ मोर रक्षक पर पांच छन गंधर्व मन रथे आदि कोई गलत दृष्टि से मोला देखते राजा ओला जान से मार देते
0: दे
1: समझ ले निश्चित होकर मौत आगे है करके ऐसे मोर स्थिति है मोर गंधर्वा मला में ठग ठुगा के मैं कालिया हूँ और मैं यहाँ नहीं आया हूँ

उदासी के लायक नहीं हस, तुम रानी बना के रखू ते मोर बात ला मान जहा।

0: जाके दिन काटिस ओकर बिहान दिन फिर वही शाम के होते तहन सफो छरपति मला पूछा थे मोर करे ऐसे ऐसे संकट के घड़ी आए है कहे काका वो संकट के घड़ी ला बता थे कोई कुछ कर नहीं सकेगा कोई कुछ कर नहीं सके सब कहा थे कि बड़े भैया आज्ञा दे देते इस ते कहा बताए रे कुचल डालते मार डालते हैं सब के सब ऐसे कहे भीम कर बड़ा आशा लेके जाइस
1: अच्छा
0: भीमसेन कहे दिखा थस के मोर रक्षा करे के लायक कोई नहीं सुनिन बात मैं बहुत दुखी हूँ चिरो बोरो आंसू में रहे काका भीमसेन कहे काबर रो था से पगली बोला बता काबर रो था
1: का संकट पड़े है
0: सब बात ला बता थे काका तो मना कहा कि इन कोई नहीं करें बड़ा भैया के आज्ञा ताकत है और वो आज्ञा नहीं दे वो कथे कि दो महीना दम धर रहा तान हमन मन जाबो
1: अच्छा
0: हमला झगड़ा झंझट यहाँ नहीं चाहिए हम भेष बदल के हमन बोला थे अब कैसे कर बे
1: भेद खुल जाही तहन नहीं बने कथे
0: फिर वही बनवा सोही कथे भीमसन काका ये तो वैसन में नहीं बने एला कहीं ना कहीं करे चला पढ़ी लोलिया के आँखी कान लाल हो गए मैं जाऊँ तो रक्षा करे बरकत है
1: देखे जाही
0: रात जस जस सोवा थे और कहा थे तले न जा अरे जाऊँ ना एक कनी रात हो वंदे से तकत कबे जाबे अरे जाऊँ ना मैं

0: थे और बड़ा सुंदर चला थे तो घर में ना तेल लो बने के तेल ला दे थे तो ये दे माटी तेल था माटी तेल ला धरिस काका और जाए भीमसेन खन्नर खन्नर खन्नर
1: झमक झमक झमक
0: रेंगिस महाराज करा किचक करा किचक सो रहा है काका
1: अच्छा
0: और मुड़ी ला ढाके है
1: हाँ।
0: और किचक ला उठा थे महाराज
1: हाँ।
0: उठाओ
1: खाना लाने हाँ कथे
0: हाँ अमर के सलेंद्री हाँ,
1: हाँ।
0: ले बैठ एक कच करे गोठियाई
1: हाँ।
0: जानदार ही कह के
1: हाँ।
0: और ले बैठ कहे
1: हाँ।
0: और ले का सेवा करो महाराज मोर हाँ

0: सेरा चंडरा चंडा थे टोंगले उठिस काका और टोंगले उठिस तहने कैसे मुड़ी मिला न्यू घाड़ा से वो एक कनी तो घाड़ते कथे
1: चेहरा तो देखन दे कथे
0: तहन मुड़ी ल खोल दिस काका
1: हाँ
0: खोल दिल तया हाथ तो हाथ में मार तो लुगल पहन रहा है कहना गुड़िया ल पहने रहा है और दाढ़ी में छलनी बनाए रहा है
1: बना रहा
0: तो आ कर्री कर्री में छा
1: हाँ
0: देखा है कि चखा

0: बदल के एती ओती छटकाईस और किचक मर जिस।
1: ओहो
0: शैलेंद्री
1: हा
0: दौड़ के आथे,
1: हाँ
0: दौड़ के आके काका

0: विषय ले जान किच्चा केरे गेरे ताकतवान निर्हिस कका शाह हाथी के ताकतो कर भुजा ये किच्चा खरे और नान मुन आदमी नो है वो किच्चा का कौन ले जी कौन ले जी कहे कका ये जयंते ले जी चीता जलाए हंसे दहन जलाए बार नदिया रहन तो जयंत लबला थे और तो चलाए ते घिरलात ले छोरे
1: कोपरात ले
0: तब मैं एक कनी खा लेते महाराज तब मैं सखू
1: खाले
0: रात भर के लड़ाई पेठा हो गए है खाली तो वाला खवाइश कका और खाना खवाइश पानी पिलाइश तब नदिया दहन लकड़ी वकड़ी ला सब 101 भाई है ते में एक भाई मरे है और सब भाई है जिया थे सब भाई चले के चीता जलाए बरोधा तब महाराज महाराज ये तो ऐसे बोल नहीं बना थे तो कैसे कराऊं ये ला तीरत ले गाऊं अरे जो भी ले भैया पर ले छे
1: एकर मूल टार कर थे
0: पर ले जी ला काका ऐसे करे जियत के प्रहात ले सब बने बने यानी मानी के लगा ले और मर जावे ना दो तीन घंटा रहे बरनी देवा ले जो ले जो ले जो ये संसार के नियम है
1: हाँ।
0: भीमसान खींचत

चीता में डाल दिस की चकला और डाल दिस तब मोर काम नहीं बना थे। अब मैं का करूं कह के फिर सोचते और सोचा सोचा सोचते अब एक तीर में जाके का कथे अपन।

0: स्मरण करीश तो पवन देव कैसे करीश।
1: हाँ।
0: बड़ा जोर से हवा तूफान गरजना चालू कर दीस।
1: हाँ।
0: ऐसे हवा आई, ऐसे हवा आई, उठा उठा के गोल घुमा घुमा के आँखी कान में छीतीस। नगरवासी जाय रहे कका।
1: हाँ।
0: आँखी कान मुदा गए, आँखी आँखी बा रेती भर गए।
1: हाँ।
0: ये काम पवन देव करीस।
1: हाँ।
0: ते रहा भैया, ते रहा भैया यारे महू जाहू यार कहते भीमसन है।
1: हाँ।
0: ते रहा तब काम जमी जति गांव के नगरवासी जाय रहे कका, वो सब चले गए भगा गए।
1: हाँ।
0: नाऊ ठाकुर लते रही जा भाई।
1: हाँ।
0: तोर अभी काम है कहीं वोला रोकी नाखी का लमुन मुदा के।
1: हाँ।
0: और ओकर सब भाई मन रुकिन कका।
1: हाँ।
0: और रुके के बाद में।
1: हाँ।
0: अब ले रे दादा सब तो चले गए, ये डर हवा छोड़ दी तो ले जी अब अग्नि अग्नि देव।
1: हाँ।
0: लेकिन ऐसे करके अग्नि देहो।
1: हाँ।
0: ऐसे करके सौ भाई हवा 101 भाई हवा 101 में एक झन मर गए।
1: हाँ।
0: सौ झन जिया था सौ भावर घूमे

0: दे साव होइस हे अग्नि देवता, एक जन ला पहली डारे रहे हो, 101 जन होइस। आई बिनती है प्रभु, तोला में कह रहे हो ते लयाज में दे दे
1: देवा था।
0: जब काका लक्ष्य भवन में आगे लगे रही सर, कदल अमरे पर नहीं सकी सितरा अग्नि देवा, भरत गे रहे काका, तब कह रही सब भी खावे ते मुला एक के झन खावे। हे अग्नि देवता, तोला एक दिन 101 झन दे हो, आज मोर वचन पूरा हो गए जो तोला कह रहे हो तेला। अब ये नाऊ ठाकुर हम बताही कि ही सावधारी सा जीव ल निकाल के मुसण दिस।
1: अच्छा,
0: और ये अपन ये के झन काका महाराज करे आगिस। नाऊ ठाकुर बता थे कोंदा हो गए रहे, कुछ बोल नहीं सका।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि को 11 बजने को ही समाचार क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे

परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।